मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 23, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है चिंतन।
1: एक ढेले को आसमान में उछालते हैं। मिट्टी का वो टुकड़ा तब तक चंचल अस्थिर बना रहता है जब तक वो पुनः पृथ्वी पर ना आए। यही बात मन के साथ है। ये अपनी मूल सत्ता के संपर्क में आने पर स्थिर हो सकता है। मन ही है जो समूचे कार्यतंत्र पर अपना आधिपत्य रखता है। मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। मन में वो असीम शक्ति है जो स्वर्ग को नरक में परिवर्तित कर दे और नरक को स्वर्ग बना दे। मन यदि जीत गया तो बाजी मार गया, यदि हार गया तो परास्त हो गया। हमें स्वयं विचार करना होगा कि इसे ईश्वरोन्मुखी बनाया जाए या विश्वरूप विषय की ओर छोड़ दिया जाए। इसे वश में करना असंभव नहीं, कठिन अवश्य है, क्योंकि मन बराबर जगत के प्रपंचों में फंसता रहता है। ये मलिन मन मूल प्रवृत्तियों को त्यागना नहीं चाहता। संतों के विचार कुछ इस प्रकार हैं। वे कहते हैं, मन रूपी घोड़ा बहुत जोर करता है, धीर नहीं मानता, विषयों की ओर से भागता है। हे सच्चे साधक, इस घोड़े को विचार और साधनाभ्यास की कड़ी लगाम देकर जोर से पकड़ो, मन को मारो, यानी मन के वशीभूत न होकर मन को वश करो। आराधना, प्रार्थना, नाम, जप, स्मरण, ध्यान तथा योग के द्वारा योगी जन भटकते मन की वृत्तियों को संयत करते हैं, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाते हैं। इसे हम मनोविज्ञान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन वचन कर्म से अपने हृदय में सच्चे बने रहो, दिन रात श्याम का सुमिरन करो, यश गाओ और पंच विषय रस में लीनता को

0: श्याम के प्रेम में लगाकर मिटा डालो। पंच विषय यानी रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। आंख सुंदरता की ओर भाग रही है, जिह्वा रस यानी स्वाद के पीछे पड़ी है। ये कर्ण शब्द से लाभान्वित हैं, नासिका गंध सुगंध में लीन है और चर्म सुखद स्पर्श चाहता है। पांच ज्ञानेंद्रियों के ये पंच विषय भरमाने वाले हैं। शास्त्रों का निर्देश है कि ज्ञानेंद्रियों में मन की पांच वृत्तियां रूपी पक्षी यदि विषयाकाश में नहीं उड़े तो जीव निर्विषय रूप फलदार वृक्ष का अमृत फल प्राप्त करे। कहने का अर्थ है कि मन इंद्रियों के कुचाल से दूर रहे। संत साहित्य में दो प्रकार के मन का वर्णन मिलता है, एक पिंडी मन, दूसरा ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब वो सिमट कर अपने केंद्र में केंद्रित होता है तब आत्मबोध का उदय होता है। साधकों संतों का कथन है कि दृष्टिधारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में मिलकर रहता है। इच्छा, चिंता, भय का नाश होने लगता है तथा पिंडी मन का चक्र भी टूटने लगता है। चूंकि पिंडी मन से डर और चिंता का जन्म हुआ है और ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है, डर पिंडी मन का पुत्र और चिंता पुत्री है। बोध और चिंता का विवाह हुआ अर्थात चिंता बोध के वश हो गई। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उससे मिला यानी समधि के घर समधि गया। मन की इन अवस्थाओं को समझकर हम अपने आप को भक्ति में रमा सकते हैं, अपने आप को ईश्वर की ओर अभिमुख कर सकते हैं, अपने आप को संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर महसूस कर सकते हैं। आइए अपने मन को इस दिशा में लगाएं, सोचें, विचार करें।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है शंकर कुमार चौधरी की वार्ता, मछली के संक्रामक रोग एवं निदान।
1: आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमरा लोकन माछक पोस क चिकन आमदनी क सकै छी, कारण एकर मांग सदत बाजार में बनल रहित अछि। एखन माछक संक्रामक बीमारी ओ एकर निदान के प्रसंग में चर्चा क रहल छी। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, माछ में जे संक्रामक बीमारी होइत अछि ओ पसरै वाला बीमारी होइत अछि, तैं एहिसँ माछ के बचेबाक चाही, कारण ई जानलेवा होइत अछि। माछक संक्रामक बीमारी एकटा होइत अछि गिलरॉट। ई बीमारी के माछक गलफरक सरब बीमारी के रूप में हमरा लोकनि सेहो जानैत छी। एहि बीमारीक लक्षण शुरुआत में गल्फर पर लाल रंगक दाग बनबा से होइत अछि, जे धीरे धीरे कत्थक रंगक होमय लगैत अछि। एकरा बाद गल्फरक खूनक नस सब नष्ट होमय लगैत अछि, जे अंत में सरय लगैत अछि, ओ काज करब बंद कऽ दैत अछि आ एहि प्रकारे माछक मृत्यु भऽ जाइत अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, गिलरॉट बीमारी कारणे माछ सब पानिक सतह पर आबि कऽ पानि पीबाक क्रम में मरि जाइत अछि। एहिसँ बचावक लेल मिझायल चून के 100 सँ 150 किलोग्राम मात्रा के प्रति हेक्टेयर

0: के दर सँ पोखरि मे छिटबाक चाही। माछ के एकटा संक्रामक बीमारी होइत अछि इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम अथवा चेचक के बीमारी, सेहो माछ के लेल संक्रामक ओ जानलेवा होइत अछि। एकर लक्षण के रूप में माछक देह पर लाल घाव होमय लगैत अछि, जे पहिने तँ छोट छोट फुंसी जकाँ होइत अछि, ओ बादमे ई घाव में परिवर्तित भऽ जाइत अछि, जाहिसँ माछ मरि जाइत अछि। इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम नामक संक्रामक बीमारीक शुरुआत पोखरिक निचला सतह पर रहनिहार माछ सबसँ होइत अछि, जेना गरै, सिंगी, मांगुर, पोठिया इत्यादि, और बाद में ई पैघ कार्प माछ जेना कतरा, रोहु, नैनी जकरा मृगल कहैत छी इत्यादि के संक्रमित कऽ दैत अछि। ई बीमारी प्रायः बरसातक बाद पसरैत अछि। ओ ई ततेक जल्दी सँ पोखरि मे पसरैत अछि जे जाधरि बुझबा मे आवत ताधरि पोखरिक सब माछ मरि जाइत अछि। इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम नामक जानलेवा संक्रामक बीमारी के निदान लेल हमरा लोकनि के बरसातक तुरंत बाद पोखरि मे चूनक व्यवहार 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ करबाक चाही, जाहिसँ ई बीमारी के होयबाक संभावना कम भऽ जाइत अछि। एहि प्रकारे हमरा लोकनि ध्यान दऽ कऽ माछ के होमय वाला संक्रामक ओ जानलेवा बीमारी सबसँ रक्षा कऽ सकब, तखनहि लाभ होयत आ आर्थिक दृष्टिसँ हमरा लोकनि सम्पन्न भऽ सकत। अहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल, चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा के कार्यक्रम में अभी आप शंकर कुमार चौधरी की वार्ता मछली के संक्रामक रोग एवं निदान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास

0: पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फूकवोक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर एजाज आलम की भेंट वार्ता, ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय है ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एजाज आलम, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर एजाज आलम साहब नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: ये ब्रेन ट्यूमर है क्या?
3: ब्रेन ट्यूमर एबनॉर्मल टिश्यूज का एक कलेक्शन है, जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसके बिना जो कुछ एबनॉर्मल कलेक्शन बनके गांठ जैसा बन जाता है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं आम भाषा में अगर हम बोले तो।
2: क्या ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकने वाली बीमारी है?
3: जी, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जब ये मस्तिष्क के अंदर होता है तो उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं।
2: इसके क्या कारण है?
3: इसका एग्जैक्ट कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी, जिसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल, जैसे केमिकल या रेडिएशन एक्सपोजर, जीन म्यूटेशन, प्लस जो आपका लाइफ स्टाइल है, अगर किसी को तंबाकू का सेवन है या अल्कोहल का सेवन है, ये सब चीज़ें एक रिस्क फैक्टर होती है जिससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है।
2: क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग में जब ये बढ़ाव होता है गांठ का, तो क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं?
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। कुछ हिस्सा होता है जिससे हम बात करते हैं, कुछ हिस्सा होता है जिससे हमारा याददाश्त कंट्रोल होता है, हाथ पैर का अलग सेंटर है, देखने का अलग सेंटर है। तो जिस भी हिस्सा पे ब्रेन ट्यूमर अटैक करता है वहाँ का सिम्टम आता है। बट कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, मिर्गी का दौरा आना, आँख की रोशनी में थोड़ी कमी आना, ये सब एक कॉमन सिम्टम होते हैं जो ब्रेन में ट्यूमर होने का एक संकेत देता है।
2: क्या लकवे वाले लक्षण भी आते हैं?
3: जी बिल्कुल, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ से हाथ पैर का पावर

0: कंट्रोल होता है तो उससे हमें पैरालिसिस या लकवा भी हो सकता है।
1: क्या बहुत दिनों तक रहने वाला जो सर दर्द है, क्या उसकी जड़ में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है?
0: जी, बहुत सारे सरदर्द की बीमारी जो कई सालों से है, या फिर ऐसा सरदर्द जिसके साथ बहुत तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी, देखने में दिक्कत आता है, ये एक ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है।
1: कौन से वैसे लक्षण हैं जिस पर आदमी को एकदम से सचेत हो जाना चाहिए?
0: मिर्गी का दौरा आना, अचानक से आंख की रोशनी का चला जाना, आवाज में लड़खड़ाहट आना, याददाश्त में कमी होना, या फिर खाने पीने निगलने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपका जो ब्रेन का नर्व है वो सब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें जल्दी सचेत हो जाना चाहिए।
1: आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं?
0: दो प्रकार हम जो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, एक बिनाइन होते हैं जिसको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट जिसको आम भाषा में कैंसर भी बोलते हैं। ऐसे तो ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, 100 से ज़्यादा टाइप हैं, लेकिन आम भाषा में जानना ये ज़रूरी होता है कि ये बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है।
1: बिना कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है वो, और कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है, क्या उनके लक्षण में भी फ़र्क होता है?
0: लक्षण में फ़र्क होता है, जो कैंसर वाला है उसमें जो लक्षण होता है वो बहुत तेज़ी से आते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, और जो बिना कैंसर वाला बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से सर में दर्द होना, आँख की रोशनी कमज़ोर होना, तो उसमें जो सिम्टम का ड्यूरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, काफ़ी लंबा वक्त लेता है।
1: इसकी जाँच कैसे की जाती है?
0: इसकी जाँच जैसे कोई

0: और जो बिना कैंसर वाला बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से सर में दर्द होना, आंख की रोशनी कमजोर होना, तो उसमें जो सिम्टम का ड्यूरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, काफ़ी लंबा वक्त लेता है।
1: इसकी जांच कैसे की जाती है?
0: इसकी जांच जैसे कोई मरीज हम लोगों के पास आता है तो उनसे बीमारी के लक्षण पूछने के बाद फिर हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं मरीज के ऊपर कि हाथ पैर की ताकत कैसी है, आँख की रोशनी कैसी है। वो सब करने के बाद अगर हम लोग को डाउट होता है कि नहीं दिमाग में ट्यूमर के लक्षण सब आ रहे हैं तो इमेजिंग मॉडलिटीज पर जाया जाता है, कॉमन आर, MRI, CT स्कैन, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि दिमाग में गांठ है या नहीं है।
1: हर गांठ कैंसर नहीं होता है लेकिन कैंसर हो भी सकता है।
0: जी, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं होते हैं और जिसका अच्छे से इलाज किया जाए तो वो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो ये ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कैंसर हो गया अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक गलत धारणा है।
1: इलाज के क्या तरीके हैं?
0: पहला इलाज होता है वो ऑपरेशन होता है। 90% से ज़्यादा ट्यूमर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन करके निकालना होता है। कुछ 1-2% ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे पिट्यूटरी या फंक्शनल ट्यूमर जो दवा से भी काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर मैलिग्नेंसी आती है जैसे कैंसर आते हैं तो फिर रेडिएशन दिया जाता है, रेडियोथेरेपी प्लस उसकी कुछ दवाइयां भी आती हैं जिनको कीमोथेरेपी वगैरह कहते हैं।
1: ब्रेन ट्यूमर को लेकर के अगर सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आम लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है, आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब आजकल न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस लेवल पर जा चुका है, अच्छी अच्छी मशीनें, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप आ चुके हैं, सर्जरी आसान हो गई है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और चूंकि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो ब्रेन ट्यूमर वक्त के साथ बढ़ेगा और फिर वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो ऑपरेशन अगर कोई डॉक्टर सलाह देते हैं और ये बताते हैं कि ऑपरेशन से आपकी बीमारी ठीक होने के अच्छे चांसेस हैं तो हमेशा ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। इसमें दवा का ज़्यादा ट्रायल लेके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर एजाज आलम साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले संवेद स्वर में ये देश वंदना।

अभी आप संवेद स्वर में देश वंदना सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं नितिन मुकेश के स्वर में ये भक्ति वंदना।

अभी आप नितिन मुकेश केशवर्मी ये हनुमान भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं हरिहरन केशवर्मी ये राम भजन।

यह स्वर था लता मंगेशकर का। आइए आप सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भजन।

ये स्वर था हरिहरन का। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से ये वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया।

तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्त रेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इस सभा में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे बज्जी का कार्यक्रम अंगना। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन के 12:30 पर आप सुनेंगे हेलो जिंदगी कार्यक्रम का प्रसारण। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दिन के 1:10 पर और दिन के 1:15 पर पुनः आप फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। रोजगार समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर।

0: दोपहर 2:30 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे। बज्जी का लोकगीत दोपहर 3:00, संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी के अंतर्गत कार्यक्रम तरुण कुसुम, और संध्या 5:40 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। विद्यापति गीत आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत कार्यक्रम नव ऊर्जा का प्रसारण संध्या 6:30 पर, और किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7:00। संध्या 7:52 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। मैथिली साहित्य की कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर। इसे एक बार फिर से सुन ली, रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिंगरहार। रात्रि 9:30 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, डिजिटल युग में अभिनय कला अवसर चुनौतियां और भविष्य, भेंट वार्ताकार होंगे अंजनी कुमार झा और प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद। अंग्रेजी वार्ता सुनेंगे रात्रि 8:45 पर, और एक फनकार का कार्यक्रम प्रसारण होगा रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। 6:55 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायां स्पीडबोट इत्येतस्यां दुर्घटनायां दिवंगतानां 15 भारतीय पर्यटकानां पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम् अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान्, 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्यां दुर्घटनायां 15 पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायां जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां 9 मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। 6 जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम् आहत्य 15 मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुर्घटनाम् आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहाय्य कोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतम परिजनाय 2,00,000 रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणां अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः भारत अमेरिका व्यापार वार्तावाहिनी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9

0: 6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छे मणिकांत झा
1: और साथ ही साथ कायम नैयर।
0: कायम जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार से।
1: ज्ञान ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटाती है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा।
0: और जहन सुविचार सुन ले छी तहन उनटबे छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में उसका तिथि अर्थात 14 जुलाई किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नजर घुमाबी।
1: बात करें आज के दिन के इतिहास के बारे में, तो आज ही के दिन 1942 में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। आज ही के दिन 1779 में फ्रांसीसी क्रांति, पेरिस जनता में बास्टिल के किले पर धावा बोल दिया, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और राजशाही के पतन का प्रतीक है। इस दिन को फ्रांस में राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1850 में मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। आज ही के दिन 1945 में भारतीय IT कंपनी HCL के स्थापक शिव नारद का जन्म हुआ था।
0: तो ये छल आजुक इतिहास, और इतिहास के बाद वर्तमान में आओ तो एखन अषाढ़ मास चल रहा है और वर्षा ऋतु के आनंद हमरा लोकन लऽ रहल छी। मानसून

खून के पदार्पण भ चुकल है। ई अलग बात जे अपेक्षित वर्षा जे हेबाक चाही से नहीं भ रहल है, छिटपुट वर्षा भ रहल है और वर्षा के अभाव एखनो अइ। वर्षा के अभाव के कारण जे धान के रोपण के काज से बहुत गति नहीं पकड़ पेलक है। तथापि वर्षा ऋतु में तो हमरा लोकन छिए और अपेक्षा करी छी जे नीक वर्षा भविष्य में हैत। और देखू श्रोतागण, स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा हमरा लोकन सब दिन करित रहे छी, तो मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण छे। मानसिक स्वास्थ्य अगर अहाँ के ठीक है तखने आंतरिक स्वास्थ्य जे शारीरिक स्वास्थ्य ओकरो ठीक अहाँ राखि सकै छी। जब मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़े तो वो फिर सब चीज पर ओकर असर जे छे से होइत रहै छे। तें मानसिक रूप से निश्चित से अहाँ हरदम स्वस्थ रही, ई सबसे महत्वपूर्ण बात छे। और तकरा लेल अपना मन के मनोबल के बढ़ा कर राखब, कोनो चीज में इच्छा शक्ति जे छे से दीर्घ हेबाक चाही और विश्वास अपना पर कम से कम हरदम अटल हेबाक चाही। ऐ सब विषय पर चर्चा हमरा लोकन कार्यक्रम में आगा करित रहब, लेकिन ताई से पहिने आओ सुनी मैथिली सुगम संगीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये मैथिली सुगम संगीत बिल्कुल पसंद आया होगा।
1: कलाकार छले कुमकुम झा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और समय के साथ हम हर वो चीज़ को आकाशवाणी दरभंगा से समेट कर लेकर आते हैं, और हमें समय के साथ चलते रहना चाहिए। समय के साथ हर वो चीज़ अगर होता रहे तो अच्छा लगता है, चाहे वो समय के साथ बारिश की बात कर लें, समय के साथ मौसम परिवर्तन की बात कर लें, या समय के साथ हम कुछ भी अपने लाइफ में अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तो अच्छा लगता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि हर वो चीज़ को आप तक समेट कर लाएं और समय के साथ आपके रेडियो पर भेजें। अब वक्त हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे मणिकांत झा।
1: नमस्कार। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में काल्हि जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैसार भेल। बैसार में विभिन्न विभाग से संबंधित लंबित मामला के जन शिकायत, विकासात्मक योजना आ सहयोग शिविर के तैयारी के विस्तृत समीक्षा कयल गेल। बैसार के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, RTPS, न्यायालय में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, ACDC बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत से संबंधित मामला विभागवार समीक्षा कयल गेल। उम्हर सभक सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमारक अध्यक्षता में एकटा और समाधान सुनवाई के आयोजन कयल गेल। एहिमे जिलाधिकारी परिवादी लोकन के सम्मान के संग बैसा कऽ बड़ा धैर्य से हुनक समस्या के सुनलनि और समाधान कयलनि। ओ स्वयं अपन मोबाइल के माध्यम से समाधान के लेल अधिकारी के कैटा महत्वपूर्ण निर्देश सेहो दैत रहला। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत TB मुक्त भारत अभियान के मिशन मोड में सफल बनेबाक उद्देश्य से काल्हि दरभंगा में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के संग समीक्षा बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में जिलाधिकारी सब स्वास्थ्य पदाधिकारी के अभियान के मिशन मोड में संचालित करैत निर्धारित लक्ष्य के 100% प्राप्ति सुनिश्चित करबाक निर्देश देलनि। ओ कहलनि जे सब प्रतिदिन 15,000 लोक के गुणवत्तापूर्ण स्क्रीनिंग, 2,000 एक्सरे आ 500 CBNAAT जांच कराओल जाए तथा सब जांच एवं प्रगति प्रतिवेदन के समय पर निक्षय पोर्टल पर अपलोड कयल जाए। वो स्पष्ट कहलनि जे केवल संख्या बढ़ेनाई पर्याप्त नहीं है, अपितु प्रत्येक स्क्रीनिंग गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी हेबाक चाही। दरभंगा जिला में राशन कार्ड निर्गत करक प्रगति के समीक्षा के लऽ कऽ कल बैसार भेल। बैसार में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सब अनुमंडल पदाधिकारी, सब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी लोकन उपस्थित छलाह। बैसार के दौरान जिलाधिकारी सब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश देलनि जे राशन कार्ड निर्गत करैत अधिक से अधिक पात्र एवं वंचित परिवार तक एकर जानकारी पहुँचाओल जाए। वो कहलनि जे जनप्रतिनिधि, विकास मित्र, जनप्रति वितरण प्रणाली, विक्रेता आ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से पात्र लाभार्थी से राशन कार्ड के आवेदन प्राप्त कयल जाए, जैसे कोनो योग्य परिवार

0: योजनाक लाभ सँ वंचित नहि रहि जाथि। दरभंगा जिला में 500 राशन कार्ड नित्य बनेबाक लक्ष्य निर्धारित कयल गेल। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हालचाल में है, पुनः अपने स्वागत है। दरभंगा जिला सैनिक कल्याण अनुश्रवण समिति के बैसार काल आयोजित भेल बैसार में जिलाक सब अनुमंडल एवं भूतपूर्व अनुमंडल के भूतपूर्व सैनिक के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी भाग लेन। बैसार के मध्य समिति के सचिव सह जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी कार्यसूची प्रस्तुत करते सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक के कल्याण से जुड़ल विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी दिलन। पिछला रवि दिन दरभंगा जिलाक आसी गाम में शंभुनाथ मिश्र आसी रचित मैथिली खंड काव्य सिद्धाश्रम केर लोकार्पण समारोह पूर्वक कयल गेल। शशिबोध मिश्र शशि केर अध्यक्षता में आयोजित एहि लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथिक रूप में डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू आ लोकार्पणकर्ताक रूप में डॉक्टर योगानंद झा उपस्थित छलाह। 31 सर्ग में लिखल गेल एहि खंड काव्यक लोकार्पण समारोह में डॉक्टर चंद्रमणि झा, बैद्यनाथ मिश्र विमल, चंद्रेश जीवकांत मिश्र, केदारनाथ कुमार, संजीव कुमार मिश्र, देवचंद्र मिश्र, देवकृष्ण झा, नंदकिशोर साह, सुधीर मिश्र, उदयलाल दास सहित अनेक गणमान्य लोक उपस्थित छलाह। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य 2024-26 सत्र के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम काल्हि घोषित कऽ देल गेल। मुख्यालय के एकमात्र परीक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग में 25 जून तक 2 पाली में एकर परीक्षा लेल गेल छल। करीब 18 दिन के बाद रिजल्ट प्रकाशित कऽ देल गेल। ओम्हर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा योग के माध्यम सँ आरोग्य एवं आनंद भारतीय ज्ञान परम्पराक अंतर्निहित प्रज्ञा विषय पर सेमिनार के आयोजन काल्हिखन कयल गेल। योग हमरा कर्म के धर्म, कर्म और धर्म के मानव सिखबैत है। एकरा अपना कर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकैत है। योग से लोभ, मोह, क्रोध, भय, तनाव एवं उद्विग्नता आदि से नियंत्रण पाओल जा सकैत है। ये बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी काल्हि सेमिनार के संबोधित करैत कहलन। जुबली हॉल में आयोजित एहि सेमिनार में अनेक विद्वान वक्ता लोकनि उपस्थित भेल छलाह। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा हाइब्रिड मोड में प्रायोजित निःशुल्क राष्ट्रीय संगोष्ठीक अध्यक्षता करैत कुलपति योग के संबंध में कहलनि, योग तन मन और आत्मा में समन्वय करयवला आ हमर भारतीय ज्ञान परम्परा बहुत महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी उपहार आ धरोहर थिक। बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी कहलन जे योग के क्षेत्र में बिहार बहुत लंबा समय से सिर मोड़ रहल है। योगाभ्यास से बिहार समृद्ध परंपरा आगू बढ़त। राष्ट्रीय सेमिनार के प्रारंभ दीप प्रज्वलन से भेल छल। प्रारंभ में विश्वविद्यालय के कुलगीत आ अंत में राष्ट्रगान प्रस्तुत कयल गेल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा में नवनिर्मित अधो संरचना के भव्य उद्घाटन समारोह पूर्वक काल्हिखन कयल गेल। शैक्षणिक संस्थान के समग्र विकास, ओकर गुणवत्तापूर्ण अधो संरचना, आधुनिक संसाधन आ उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण पर आधारित ई व्यवस्था कयल गेल। पिछला 12 जुलाई के ऐतिहासिक सौराठ सभा के समापन भऽ गेल। मधुबनी जिलाक सौराठ सभा गाछी में लागयवला एहि सभा के समापन के अवसर पर अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू कहलनि जे एहि वर्ष के सभा में पंजी प्रथा के प्रति समाज में नव जागरूकता देखल गेल, जे आबयवला वर्ष के लेल अत्यंत सकारात्मक संकेत अछि। ओ कहलनि जे ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रदीप झा के नेतृत्व में पंजीकारक सम्मान समारोह सेहो आयोजित कयल गेल। एहि अवसर पर ओहिठाम भव्य कवि सम्मेलन और शास्त्रार्थ के आयोजन सेहो कयल गेल छल। समिति के अध्यक्ष जनौलनि जे एहि वर्ष विभिन्न पंजीकार के ओतय लगभग 30, 35, 40, 50

0: सी एवं 100 सौ के लगपास में वैवाहिक सिद्धांत संपन्न कैल गेल। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: और हालचाल के बाद श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित को शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। वहीं विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: तो लोकल अपडेट और विमान अथवा रेल पकड़वा के लिए जखन अपने लोकन चली तो समय के थोड़े हाथ में लौकर चली। जतेक समय अहाँ के एयरपोर्ट अथवा रेलवे स्टेशन पहुँचा में लगी है वैसे थोड़े फाजिल समय हाथ में लौकर चली, किया तो कत रास्ता में जाम है, देरी है, विलम्ब है। ताहि दुआरे अहाँ के गाड़ी भेटे, अहाँ के विमान भेट जाए, एकर निश्चित रूप से सुनिश्चितता अहाँ के अपना हाथ में, थोड़े हाथ में समय लौकर चलब तो अहाँ समय से पूर्व पहुँचब। एकरा अतिरिक्त जै विमान से या जै रेल से अहाँ यात्रा करा वाला छी ओकर की अद्यतन स्थिति छै सेहो अपना फोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से या संबंधित जे सर्विस प्रदाता छथि तिनका से गप क के सुनिश्चित कर ली जे समय से चल रहा है कि नहीं आ कि विलम्ब से चल रहा है। ओहि मुताबिक अपन यात्रा के जे छै से अहाँ निर्धारित करी तो ओहिमे यात्रा करबा में सुविधा हैत।
1: जी हाँ बिल्कुल। और किसी चीज़ की सुविधा के लिए या आप यात्रा करते हैं तो ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों के लिए पहले हम पता कर लें, उसके बाद हम अपने यात्रा की शुरू करें। ख़ास तौर पे बरसात का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो, उसमें ज़्यादातर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें समय से नहीं होती है क्योंकि वो प्राकृतिक देन है। तो इससे थोड़ा सा विभाग को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम सब पहले इन सब चीज़ों के लिए जानकारी प्राप्त कर लें। मणिकांत जी, हम लोग बातें कर रहे थे कि जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में हम खाते पीते हैं तो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए पौष्टिक आहार लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जो हमारा मन का स्वास्थ्य है वो भी ज़रूरी है। तो मन के स्वास्थ्य के लिए आप लाख बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हट्टे कट्टे हैं, बहुत अच्छे हैं, खान पान से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो बेचैन से रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मन का स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा सही ट्रैक पर नहीं है, रास्ते पर नहीं है। तो थोड़ा सा उसके लिए ज़रूरी होती है, या तो आपने सही समय से नींद नहीं लिया होगा या किस कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आप परेशान होंगे। पहले भी मणिकांत जी ने कहा कि आपको आत्मविश्वास होना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो होना ज़रूरी है, कि अपने आप पे यकीन रखना ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों के लिए, जिन मुद्दों के लिए अपने मन में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने मन से, या तो उस मन को हल्का करने के लिए हम अपने कलीग से, अपने मिलने जुलने वालों से, या कुछ ऐसे लोग जिनसे हमें बात करने में, मिलने में, उनसे उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने में, गुजारने में, वक्त गुजारने में अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ हम बैठकर दो पल बातें कर सकते हैं, समय गुजार सकते हैं।
0: जै चीज में अहाँ के मन लागे, अहाँ के एकाग्रता जै चीज में आवे, ध्यान करवा में आवे, योग करवा में आवे या पढ़ाई लिखाई में आवे, जैसे अहाँ के मानसिक शांति भेटे, वो काज अहाँ अवश्य करू। हर व्यक्ति के लिए ई अलग अलग चीज के होइ छै, जे ककरो गप करब में मन लगै छै, ककरो किताब पढ़ब में मन लगै छै, ककरो सिनेमा देखब में मन लगै छै, ककरो गीत सुनब में मन लगै छै। तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रवृत्ति होइ छै। तो अहाँ के जै चीज में नीक लगैए ओहि के तरफ अहाँ आकर्षित हो और अपना मन के शांति दियो, किया तो मन विचलित भेला सँ कोनो काज अहाँ के जे छै से स्थिर नहीं रह सकैए। जहन मने विचलित भऽ जेतै तहन तऽ मन चुकी पा

0: पावर हाउस छे मने शरीर के पावर एकदम कहूँ ओता से कंट्रोल रूम छे वो पावर हाउस नहीं ओकरा कहेगा कंट्रोल रूम कह सकै छी ते कंट्रोल जहन मोन करै छी संपूर्ण वातावरण के अपना शरीर के या व्यवस्था के तो वो अगर विचलित रहते वो अगर स्थिर नहीं रहते तो फिर सब चीज जे छै से गड़बड़ी होइत चलि जेतै ते मोन के स्थिर राखब जे छै से बहुत आवश्यक छै और तकरा लेल जे नींद वाला बात एकटा कहलूं है अहाँ के हम जी ई बहुत महत्वपूर्ण चीज छै अगर अहाँ के नींद में गड़बड़ी भ रहा है तो अहाँ मानसिक रूप से जे छै से स्थिर नहीं रह सकै छी अहाँ के विचलन अहाँ में आबि जात तो नींद पूरा हुए तकरा लेल जे उपाय करो पड़े से करी और निश्चित रूप से अहाँ नीक निद्रा 8 घंटा जे वैज्ञानिक कहै छथि डॉक्टर कहै छथि 7 घंटा 8 घंटा के नींद हेबाक चाही प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन तो ओइ के लेल जे करो पड़े काज करो पड़े थोड़े मेहनत करो पड़े शारीरिक श्रम जे छै से हो नींद आना में जे छै से सहायक होइ छै तो से सब पर ध्यान अवश्य देबाक चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, जब भी तनाव महसूस हो तो कुछ मिनट के लिए गहरी सांस ले, मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ता है इससे और तुरंत मन में शांति मिलता है। कभी कभी होता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं, गुस्सा इंसान का स्वभाव ही है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है। कभी कभी आप परिवार में हैं, गुस्सा आपको आ रहा है ज़्यादा, किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लग रही है आपको कि नहीं आपके मन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो ऐसी जगह पर से ऐसे टॉपिक को या तो आप बदल दें या तो फिर आप घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, उसके बाद वापस आपका मन थोड़ा बहल जाएगा, फिर अपने घर में जाएं या जहां पर से प्रॉब्लम हो रही थी आपको उसको हल करने की कोशिश करें, या फिर मन की शांति के लिए आप उस टॉपिक को ही बदल दें। ये ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अगर नहीं आती है तो कोशिश एकाक चीज़ ये भी होती है कि कुछ चीज़ों को परिवर्तन लाकर आपको अच्छी नींद आ सकती है, जैसे कि आप जब रात को सोने के समय बिस्तर पर जाएं तो उससे पहले अपने मुंह हाथ को अच्छे से धो लें और उसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी। आप ऐसा करके देखें, छोटे छोटे बदलाव के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो नींद का आना बिल्कुल तय है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बात बात पे उनको गुस्सा आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके सामने होती रहती है, आपको हर वो छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता रहता है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमने पहले भी कहा कि आपको उस जगह पर से थोड़ी देर के लिए हट जाना है, या हर वो चीज़ को कोशिश करें कि हम बर्दाश्त कर सके। बात बात पर क्रोधित होना ये अच्छी चीज़ नहीं है, जो हमारे मन की शांति के लिए ठीक नहीं होता।
0: शास्त्रीय आधार पर से हो अगर कही तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब से बचा के लिए जैसे से कहल गया है। क्रोध जे छै से अहाँ के लिए स्वतः के लिए बहुत हानिकारक है। अहाँ क्रोध में अनका जे हानि पहुँचबै छी लेकिन अहाँ के स्वतः पर अपना शरीर पर अपना मानसिक स्थिति पर में जे छै से बहुत ओकर असर पड़े। तो क्रोध के तो नियंत्रित क के राखब जे छै से बहुत आवश्यक छै। अगर अहाँ तामसी छी, तामसी प्रवृत्ति के लोग छी, तो अहाँ के लिए वो बहुत हानिकारक है। अहाँ कखनो जे छै से ओहिसँ नीक प्रतिफल नहीं पाबि सकै छी क्रोधसँ। अहाँ मन के शांत कऽ कऽ राखू, स्थिर भऽ कऽ राखू, स्थिर से सोचू, कोनो विचार के गंभीरतासँ सोचू। जै चीज पर मे क्रोध अहाँ के आयल है तुरते कनी कालक बाद अहाँ के लागत अपने पश्चाताप हुअ लागत जे ओह बेकार हमरा ई क्रोध आबि गेल छलए, एहिमे तो हमरा नहीं एना करक चाहे छलए। तो से नियंत्रण अगर अहाँ अपना पर कऽ लै छी, अपन मन पर कऽ लै छी, तऽ अहाँ क्रोध नहि करै छी तऽ मानसिक रूपसँ अहाँ बहुत संपन्न भ सकै छी।
1: जी बिल्कुल, और परिवार में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। गुस्सा वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और पहले भी मणिकांत जी ने कहा कि धर्म के शास्त्र के हिसाब से भी कि वो चीज़ गलत है, और बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, खुद में भी उलझन में उलझे रहते हैं, परिवार के लोगों को भी उलझाते हैं, इससे जो रिश्ते हैं वो आपके ख़राब होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हाँ जब हम रात को सोते समय जाएं तो इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ा सा सोचें, मन पे ज़्यादा बोझ ना ले और सोचें कि हाँ गुस्सा हमें क्यों आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर नींद नहीं आ रही है इन सब के बावजूद भी, तो आप ये कोशिश करें या तो ईश्वर को याद करें, कुछ ऐसी ईश्वर की आराधनाएँ हैं उसको पढ़कर याद करके आप सो जाएं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जीवन में जिनकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है, उसकी बातों को सुनकर याद करके आप अगर आँख बंद करके कोशिश कोशिश करेंगे नींद लाने की तो भी नींद आ जाएगी। तो नींद का आना बहुत ज़रूरी है, गुस्सा से हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है।

0: छोटी छोटी चीज़ों पर हम परिवार में यूं ही झगड़ते रहते हैं, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। हर वो मुद्दे जिससे कुछ होना नहीं है उसके लिए हम लड़ाई झगड़े इधर उधर करते हैं, बार बार पे अपने आप को गुस्सा करते हैं, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है।
1: कयाम जी, अब हम ये नहीं चाहब जे अपना श्रोता के तामस उठा के कारण हम सब भ जाए से उन्हें हेबाक चाहिए, किया तो बहुत रास गप सुनला पर में छे से बहुत श्रोता हमारे एहन छे जे तमसाइत हता जे नहीं अब गीतक बेर छे आ ई सब खाली गप में लागल छे, त से नहीं आओ सुने छी सुंदर सनक फिल्म
0: सा उनके गुस्सा को थोड़ा सा कम करते हुए उनके रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।
1: हाँ।

0: बाजीगर ओ बाजीगर बहुत सुंदर ये गीत एखन हमरा लोकन सुन रहा छो हमरा उम्मीद है जे हमरा श्रोता लोकन के सेहो ई नीक लागल हेतन। देखू कयाम जी, अपना सब जाई देश में निवास करी छी, अनेकता में एकता हमर सबक ओ विशेषता है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग एहिठाम हमसब एक ठाम एक संग रहै छी और आपस में हिलमिल कर रहै छी, कोनो भेदभाव नहि। अपन जे संविधान है सेहो कहैए जे सबके ओ समानता के अधिकार दैए संविधान, एक रंग एक भाव सँ जे छै से हमसब एतऽ रहै छी, निवास करै छी। तऽ ई हमरा सबक जे विशेषता है तकरा बरकरार राखब हर आदमी के कर्तव्य छै। हम सब अनेकता में एकता बना कर राखी और सबके समान अवसर दिए, ओ जे समाज हेतै ओ समान अवसर वाला जे समाज से एकटा अद्भुत अपन जे छै से उदाहरण प्रस्तुत करै छै, जत सबके समान भाव सँ समभाव सँ देखल जाइ छै। वहाँ विद्यालय में जाए या कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी में जाए कतौ, सबके एक रंग भाव, एक रंग यूनिफॉर्म ओकरा जे छै से अहाँ कहि सकै छी। तऽ ई समभाव वाला जे स्थिति छै से बहुत उत्तम स्थिति बनै छै कि नहि?
1: जी हाँ बिल्कुल, और जो समाज है हमारा, हमारा समाज तभी मजबूत होगा जब हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा, जिस जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सभ्यता कल्चर में रहते हैं, उस जगह के जो

0: जितने लोग हैं उसे हम परिवार समझकर, अपना परिवार समझकर काम करते हो। हमारा परिवार ही हमारी जिम्मेदारी है ज़रूर, लेकिन हमारा जो हमारा समाज है वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें जो कुछ कमी बेशी है, जो भी घटना दुर्घटनाएं होती है, जो भी दुख मुसीबत है, वहाँ हम साथ खड़े होते हैं तो फिर हमारा समाज आगे बढ़ता है। समाज के लोगों को हिम्मत मिलती है। एक आदर्श समाज वो है जहाँ व्यक्ति को अपनी क्षमता साबित करने का समान मौका मिले, चाहे जैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सभी की लिंग गुणवत्ता शिक्षा तथा समान उनके समान उन्हें अवसर मिल सके, ताकि गरीब अमीर का बच्चा, दोनों का बच्चा सही बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके। नौकरियों और तरक्की में जाति धर्म लिंग या उम्र के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सभी नागरिकों को आपात स्थितियों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा मिले, ताकि किसी की मजबूरी उसके विकास में बाधा ना हो। जो कोई भी इंसान ऐसा हो जिनकी मजबूरी हो तो वो विकास में बाधा हो जाता है, तो ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य भी इस समावेशी समाज के निर्माण पर जोर देता है। श्रोताओं, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपनी सोच को सरकार की सोच के साथ मिलाएंगे, जोड़ेंगे। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लाया तो ज़रूर है, घोषणा तो ज़रूर किए हैं, चाहे वो कागजी स्तर पे हो, ज़मीनी स्तर पे हो। बहुत सारी योजनाएं ज़मीनी स्तर पे होने के बावजूद भी वो धराशाही हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हम समाज के लोग सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते नहीं हैं, तो इसलिए वो चीज़ समाज के उन वर्गों तक नहीं पहुँच पाती है जहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि हम समाज में मिलकर रहें, समाज में जितने भी भेदभाव हैं उसको छोड़कर हम इंसानियत धर्म को का पालन करें तो ही हमारा समाज आगे बढ़े।
1: मानवीय गुण अगर अहाँ में आए तो वही काल में फिर अहाँ एक कोनो चीज़ के ध्यान अहाँ में नहीं आयत, कोनो जात, कोनो धर्म, कोनो संप्रदाय, अइ सब के तरफ अहाँ के ध्यान नहीं जायत। और हर मानव है ई प्रवृत्ति जो अहाँ में आबि जाइए, अहाँ में मतलब अहाँ के समाज में, तो वो समाज जो छे से बहुत आगा बढ़ी छे और वो समाज के विकास जो छे से बहुत तीव्र गति से हुई छे और ओहिठाम कोनो द्वेष के भाव नहीं रह जाए छे। एक दूसरा से हिल मिल कर जहाँ लोग रह लगे सबके संभाव आबि जाए छे, तो ओहिठाम जो छे से स्वतः विकास हुआ लगे छे और स्वतः एक हिसाब से कही तो उन्नति के मार्ग प्रशस्त देखबा में लाग लगे छे। तो कुल मिलाकर हमरा सबक गपक जे आशय से यह जे संभाव से एक नजर से समाज के हर वर्ग के देखबाक चाही और जकरा जे अवसर भेट रही है उसमें एक दूसरा के सहयोग करबाक चाही, ओकरा अवसर के प्राप्त करेबा में, तो से जखन भ जाए तो समाज में समरसता जे छे से कायम भ जाए और समाज में समरसता बनल रहत तो एक दोसर से हिलमिल के रह सके छी और कोनो अहाँ के द्वेष अंतर कलह इस सब से बचल रहब तो अहाँ स्वतः विकास के मार्ग पर जे छे से अग्रसर होते रहब। कि नहीं
0: जी, हाँ बिल्कुल। और अगर आप किसी को समाज में मदद करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं या आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो आप यकीन माने श्रोताओं कि आपके मन को बहुत सुकून मिलता है। मन की शांति की बातें हम लोगों ने पहले भी किया कि ये भी एक तरीका है कि हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है कि जब हम किसी ऐसे आदमी का, समाज के ऐसे इंसान का, हम कोई ऐसी चीज़ों के साथ मदद करते हैं, चाहे वो अपने शरीर से ही आपने कुछ मदद कर दिया हो या आपने कुछ धन से ही मदद कर दिया हो, तो ये भी समाज की एक ज़रूरी चीज़ें होती है कि हम समाज में ऐसे वर्गों की थोड़ी बहुत मदद करते रहें। और
1: जिनका लग में जे है वह लोग से अगर अहाँ मदद करी छे तो क्यों श्रम से करी छे, क्यों अर्थ से करी छे, तो अहाँ लग में अर्थ है तो अर्थ से करूँ, श्रम है तो श्रम से करूँ, मौन है तो मौन से करूँ, लेकिन एक दूसरा के प्रति अगर सहयोगक भावना अहाँ के बनल है तो बहुत बढ़िया रहत। तो हमरा लगे कायम जी फिर गप सप बेसी भ रहा है, तो गप सप जखने बेसी हुआ लागे तो तुरंत जो से गीत दिस चली कि नहीं, और अपना श्रोता के सुंदर सुंदर गीत से आनंदित करते रहिए। तो आओ सुनी फिर से एक फिल्म संगीत।

0: 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के रूप में चुनाव अभियान शुरू किया। अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए। पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली नाव पलटी, 9 मछुआरों की मौत, 6 लापता। असम के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई, आज और कल तेज बारिश होने के अनुमान। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज 3:30 बजे बर्मिंघम में खेला जाएगा।
1: तो इछल समसामयिक घटना पर एक नजर आ आव एक संग आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक सेहो समय संपन्न भ रहल है। तो आजुक एक कार्यक्रम से मणिकांत के
0: और कयाम नैयर को दीजिए आज्ञा।
1: नमस्कार मिथिला।

0: हो गया है तुमको प्यार सजना। बहुत सुंदर गीत आ मौसम के संग ये गीत जे छै से आनंद दऽ रहल है, जहन फुहार पड़ी छै तै में एहन सुंदर गीत जे छै से बड़ा निक लगी छै। और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला के समय सेहो धीरे धीरे लग जा रहल है, तो चलबा से पूर्व हमरा लोकन जे छै से समसामयिक गतिविधि पर एक नजर दऽ दी, कतौ देश दुनिया में कतौ की भऽ रहल है।
1: भारत ने

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

0: स्वच्छते सेवा लेल देश तैयार अछि। एक दिन एक घंटा एक संग।
1: साथियों, इन खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहे, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है।
2: आज की दुनिया में जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम 2047 तक तो पूर्ण विकसित राष्ट्र होंगे, तो इसके जो पैमाने हैं उसमें स्वच्छता एक प्रमुख पैमाना है। इसीलिए हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा ऑफिस, हमारी सड़कें, जहाँ कहीं भी संभव हो स्वच्छता एक प्रमुख विषय होना चाहिए, जीवनचर्या के केंद्र में होना चाहिए।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात।
4: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
6: Peacekeeping has been a crucial element of
7: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
6: Across 10 of the 11 active missions.
5: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति

0: टीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एसपी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन

0: समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये

0: खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी। वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
2: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies

0: remarkable quality in Sinner's journey to a fifth Grand Slam in the final. And finally, Amar Chitra Katha, set to launch Hindustan Aeronautics Limited, HAL, comic book, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India skipped history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाई हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कयाम अमन मिशंस में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ कयाम अमन मिशंस में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सलामती काउंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकॉक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मैलुकीन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राब्ते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजामात में तावुन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में तावुन के लिए

0: वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेरे इलाज है। मगरबी बंगाल के साहिल से दूर रवा माह के अवाइल में लापता होने वाली मछली पकड़ने वाली एक कश्ती के बारे में मालूम हुआ है कि वो खलीज बंगाल में उलट गई थी, जिसमें 9 माहीगीरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 दीगर अब भी लापता हैं। ये कश्ती 2 जुलाई को 15 माहीगीरों के साथ शंकरपुर बंदरगाह से रवाना हुई थी। इस कश्ती से आखिरी बार राबता 5 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतवार के रोज कोस्ट गार्ड, भारतीय बहरिया और रियासती एजेंसियों की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान खलीज बंगाल में इस उल्टी हुई कश्ती का पता चला। कश्ती के कैबिन से 9 बोसीदा लाशें बरामद की गईं, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। इन लाशों को जनूबी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है और शिनाख्त के लिए कटापुकुर मुर्दा खाने में रखा गया है। लाशों की शिनाख्त के मकसद से DNA मिलाप के लिए अहले खाना के खून के नमूने भी लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मछली पकड़ने वाली ये कश्ती FB माँ काली मशरकी मिदनीपुर के दीघा शंकरपुर माहीगीरी बंदरगाह से 2 जुलाई को 15 माहीगीरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई को इस कश्ती से राबता मुनक़ता हो गया था। भारतीय कोस्ट गार्ड, बहरिया और रियासती एजेंसियों की जानिब से कई दिनों तक मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई गई। बिलाखिर शनिचर की दोपहर को जनूबी 24 परगना के कापद्वीप साहिल के करीब इसका पता लगा लिया गया। इमदादी टीमों ने कश्ती के कैबिन से 9 फरसुदा लाशें बरामद कर ली हैं, जबकि 6 माहीगीर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आसपास के पानी में तलाशी की कार्रवाई ताहाल जारी है। मगरबी बंगाल के माहीगीरी के वजीर राजेश महतो ने सोगवार खानदानों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। DNA की तस्दीक और कानूनी जब्ते मुकम्मल होने के बाद लाशें उनके मुतालिका लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। कोलकाता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन से मुतासिर भारत टेक्स 2026 का मकसद इस कारोबार, सरमायाकारी, खाम माल की फराहमी, इख्तराज, पॉलिसी साजी की बातचीत और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इश्तराक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए एक आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये 4 रोजा प्रोग्राम टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तराज, सरमायाकारी और बैनुल अक्वामी तिजारत में आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई क़यादत को उजागर करेगा। इस नुमाइश में सनतकार, बरामद कुनंदगान, आलमी खरीदार, सरमायाकार, पॉलिसी साज, बैनुल अक्वामी वफूद, दस्तकार, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे एक जगह इकट्ठा होंगे। इस तकरीब में हजारों नुमाइश कुनंदगान, 7,000 से ज्यादा खरीदार और मंदोबीन और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें अमरीका, बरतानिया, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। हुकूमत के तआवुन को नुमाया करते हुए इस साल 8 रियासतें इस तकरीब की शराकत दार हैं, जबकि 9 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके नुमाइश कुनिंदगान के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमान के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आबनाए हुरमुज में बेगुनाह

0: ये बुनियाद बन चुकी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल 30 रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
4: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
3: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित

0: आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है, और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया, और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए NDA की ओर से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की ओर से रेखा गुप्ता, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने नामांकन किया है। वहीं जनशक्ति जनता दल की ओर से वीणा मांडवी प्रत्याशी हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। राज्य सरकार ने नगर निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में 30 अगस्त तक विभिन्न जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दो या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि 2025 में भी ऐसे प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमा के बदलाव पर रोक लगाई गई थी। प्रदेश में इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने पटना में आयोजित इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस सेल के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं और स्वीकृतियां दी जाएंगी। श्री किशोर ने बताया कि यह सेल विभाग के मुख्यालय में कार्य करेगा। जलकुंभी शिल्प विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस पहल से जलाशयों में फैलने वाली जलकुंभी को मूल्य वर्धित शिल्प उत्पादों में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे आय के अवसर बढ़ने के साथ ही महिलाओं और युवाओं को टिकाऊ रोजगार मिलेगा। वही विभाग के सचिव कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत अगले 8 महीने में सहरसा और वैशाली के 200 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चयनित घरों में सोलर प्लेट लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 55,000 से अधिक लाभार्थियों के रिकॉर्ड ULA पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। श्री अमृत ने अधिकारियों को इस कार्य में लगी एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित

0: आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दो सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि युवक द्वारा सोशल मीडिया चैट और ऑडियो कॉल के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियां, संवेदनशील स्थलों की जानकारी साझा करने तथा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सामग्री का आदान प्रदान किया जा रहा था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी और गंडक समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कल दोपहर कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
4: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।

0: बागमती नदी रून्नी सैदपुर के कटौझा में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बैरगनिया के बोहाबाड़ी में लाल निशान के ऊपर बह रही है। इधर गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। राजगीर स्थित खेल अकादमी में 25 और 26 जुलाई को राज्य स्तरीय तैराकी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 42वीं सब जूनियर और 52वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकर ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर इस ओपन चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इच्छुक खिलाड़ी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
1: सब जूनियर एवं जूनियर स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल कराने का, ये सिलेक्शन ट्रायल प्रॉपर 50 मीटर स्विमिंग पूल में और सारे TSR के साथ आयोजित किया जाएगा। जो भी बच्चे इस स्विमिंग सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेना चाहते हैं वो खुद एक गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर पहले अपने आप को कर लें।
0: अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला गली से पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में पहले से ही निलंबित चल रहे थे। किशनगंज के तेरापंथ भवन में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता की अपील की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया, कहा गंगा पथ से हरिहरनाथ मंदिर तक रोप वे की तैयारी। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, भाजपा से नीरज, जन सुराज से पीके ने भरा पर्चा, नामांकन के बाद जेजेडी प्रत्याशी गिरफ्तार, 4 घंटे बाद मिली जमानत। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दहेज हत्या में जमानत देने में सतर्कता बरतें निचली अदालत। दैनिक जागरण लिखता है, लॉर्ड्स पर भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास, पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। आज अखबार ने लिखा है, अगस्त से सरकारी अस्पतालों की सफाई संभालेंगी जीविका दीदियां। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, मुंगेर में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3,792 करोड़ रुपए से बनी 4 लेन सड़क, NHAI ने गठित की जांच टीम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच, कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स छम छम केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: हे कता छी यौ?
4: की बात, की कहै छी?
3: हे ध्यान नहीं अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गांव घर कार्यक्रम छूट जायत।
4: ठीके कहलौ, हमरा त हे ध्याने नै छल। गांव घर कार्यक्रम में नीक नीक जानकारी के बात सब भाई बहिन लोकन सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
3: से त हमरा बुझले नै छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलो पर सुन सकै छी।
4: हाँ, ये रेडियो सेट नहीं है तो आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सकै छी। हे अकर ऐप नोट करी, न्यूज ऑन AIR, एकरा डाउनलोड करी आ कतौ बैस कर अपन मोबाइल पर आकाशवाणी दरभंगा सुनैत रहू, अपन काज करैत रहू।

0: कहब जे सुनैत रही कार्यक्रम गाम घर।
1: अहे आकाशवाणी हरदम सुनैत रहू गाम घर कार्यक्रम निक निक जानकारी के लेल, बुझलौ ने। अहे अपना संगे संगे आनो के कहब।
2: घर घर केर वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केर वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

0: हुआ जाता है। आज की खास पेशकश समाप्त करने का रुख करते हैं। आज की खास पेशकश की जानिब समाप्त कीजिए, मुज़ाकरा उन्वान है हिंदुस्तानी आइन की खूबियाँ। आदाब सामीन, आज के मुज़ाकरे के साथ शगुफ्ता हाजिर है और आज हमारी गुफ्तगू में शामिल होने वाले मेहमान खसूसी का आप सबसे तारुफ कराती चलूँ। आज हमारे साथ मशहूर यूनिवर्सिटी मौलाना मजरुल हक के प्रो वाइस चांसलर रह चुके प्रोफेसर तौकीर आलम और मशहूर सहाफ़ी जावेद अख्तर साहब हमारे इस मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे हैं। हम आपसे मुखातिब हों उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा हुए हैं वह हमारी और हमारे मुल्क के वजूद के लिए बेहद अहम है। वह है हमारे मुल्क का आईन, जिसका पहला लफ्ज ही हम से शुरू होता है। हम आज के मुजाकरे का आगाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका इस्तकबाल है हमारे इस आज के मुजाकरे में। सबसे पहले तो प्रोफेसर तौकीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा ये जो आईन है वो क्या है।
1: देखिए, आईन हम उसे कहते हैं जिससे कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा या किसी तरह की कोई भी संस्था जिससे चलता है उसको चलाने के लिए एक हम आईन लॉ कर लें वो बनाते हैं, उसी के तहत वो इदारा चलता है। तो हमारा भी जो आईन है ये हिंदुस्तान का आईन है, तो हिंदुस्तान का जो भी नज्म व नस्क है या यहाँ जो भी कुछ होना उसी आईन के दायरे में रह करके करना है। तो आईन के दायरे में जो रह के हम जो काम करते हैं उसे हम आईन करते हैं।
0: जावेद साहब, यही सवाल आपसे भी है और इसे थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये आईन किसे कहते हैं।
2: दरअसल हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसे एक ऐसे रहनुमाए उसूल की ज़रूरत थी जिसके पेश नज़र एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस पर सब अमल दरामद हों, हिंदुस्तान का हर शहरी उस पर अमल करे। और यही हमारे सामने एक ऐसा आईना था जो इसको बनाया गया, जिसकी तश्कील की गई और जिसे नाफिज किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये बनाने के लिए जो अमल था वो पहले 2 साल पहले से शुरू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन बी.आर. अंबेडकर थे। और इन लोगों की कोशिशों से जो आईन हमारा वजूद में आया ये एक तहरीरी दस्तावेज़ है, एक ऐसा दस्तावेज़ जिसमें हिंदुस्तान के जो मुतनव जो समाज है जिसमें हर मज़हब ज़ात और हर फ़िरक़े के लोग अपने आप को बराबर समझें, उनको बराबर का हक़ दिया जाए, ये हमें जमहूरियत का हक़ देता है। और ये हमारे लिए एक रहनुमाए उसूल जो हमारे सामने पेश करता है जिसके खाके की बुनियाद पर हर शहरी अपना जो काम अंजाम देता है।
0: अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी को एक बैलेंस में जीने के लिए जो एक तरीका है वो कहीं ना कहीं हमारे आईन के जरिए हमें यहाँ हासिल होता है।
2: जी बिल्कुल।
0: इसी से एक बात निकल करके आती है कि जो हम जब बात करते हैं हम से जब शुरुआत होती है हमारे इस आईन की, सबसे पहले तो आप ये बताइए तौकीर साहब कि ये लफ्ज हम, नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम ही बोलते हैं, खास करके अगर बात की जाए हम बिहारियों की, लेकिन हमारे आईन में जब ये बात आई बिल्कुल हम से ही शुरुआत होती है, तो ये लफ्ज जो पहला हम है इसकी शुरुआत हम से ही क्यों की गई।
1: देखिए, दो लफ्ज है
0: जी,
1: एक मैं और एक हम
0: जी।
1: तो जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ उससे तौकीर आलम मुराद होगा, और जब हम बोलते हैं तो मेरे साथ और भी लोग मुराद होते हैं। मैं और हम में यह बुनियादी फर्क तो ये है। और आईन का पहला लफ्ज है हम, यानी प्रियम्बुल जिसको हम तमहीद कहते हैं, तो हम से ही शुरू होता। तो उसका मकसद ये है कि हम मीन्स पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उससे मुराद लिया जाता है। और इसीलिए प्रियम्बुल में पहला लफ्ज हम डाला गया, मैं नहीं डाला गया। मैं डाला जाता तो वो शायद फिर वो कानून नहीं बन पाता, वो मैं का एक स्टेटमेंट हो सकता।
0: हाँ, फिर ये होता कि मैं मतलब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मैं,
1: ये हो जाता
0: इस तरह से बात।
1: और इसीलिए प्रियम्बुल में तमहीद में कहा गया हम भारत के अवाम, हम बिल्कुल, मैं प्रियम्बुल को आपको सुनाता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हम भारत के अवाम, देखिए अब यहाँ हम भारत के अवाम हो गया, ये बिल्कुल प्रियम्बुल है, मैं प्रियम्बुल ही पढ़ता था। हम भारत के अवाम मतानत संजीदगी से अज़्म करते हैं, यानी पूरा वादा कि भारत को एक मुक्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे इंसाफ, समाजी माशी और सियासी आज़ादी, ख्याल इजहार, अकीदत, दीन और इबादत, یعنی تمام چیزوں کی وضاحت ہے اس میں، دین کی، عبادت کی، مذہب کی، آزادی کی، سماجواد کی، ساری چیزوں کی سہولت اس میں رکھی گئی ہے
0: تو نہیں چھوڑا گیا،
1: یہ ہمارا

0: आईन है, इसीलिए हम इसको हम कहते। अब जैसे मसावात, बराबरी का हक, मसावात में बराबरी का हक, सब यहाँ बराबर है हिंदुस्तान में, आईन में बराबर हैं, भले ही सियासी तौर पे कुछ आगे पीछे होता रहता लेकिन आईन में बराबर है। मसावात बैत वाले हैसियत और मौका, यानी आपकी हैसियत और मौका के लिहाज से सब के सब हमारे यहाँ बराबर हैं, और इन सब से अखुवत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद, यानी फ़र्द को भी लखा, फ़र्द की अजमत भी हो और कौम का इत्तेहाद, कौम से मुराद यहाँ पूरा हिंदुस्तानी,
1: हिंदुस्तानी कौम,
0: हिंदुस्तानी कौम, ये कोई ज़ात और मजहब के लिहाज से नहीं, हिंदुस्तानी कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। तभी जब इत्तेहाद होगा, सालमियत होगी, तभी तयक्कुन होगा, और सालमियत के बाद अपनी आइन साज असेंबली ने इसे इख्तियार किया, यानी माना, वजा किया, ये हमारा प्रियम्बुल है। तो जब हमारा प्रियम्बुल इस तरह से बनाया गया, जब हमारा आइन कानून से बनाया गया जो हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, तो जाहिर है इसमें हम लफ्ज़ आना ही था जो आया। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, दो आदमी को ले लीजिए, एक तो पूरी संविधान सभा जिसमें 299 लोग थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी चीजें मशहूर हैं कि एग्जामिनर ने लिख दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये एग्जामिनर की रिपोर्टिंग है, राजेंद्र प्रसाद की कॉपी इवेलुएट नहीं हुई, एग्जामिनर ने ये बात लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो वो आदमी इसका चेयरमैन है। और अब आइए अंबेडकर जी, अंबेडकर जी के बारे उस वक्त कहा जाता था कि हिंदुस्तान में एक उम्दा सोच और समझ रखने वाला इनसे ज्यादा लोग कोई भी आदमी सामने नहीं है, हो सकता कुछ होंगे तो सामने नहीं थे, सबसे ज्यादा अकलमंद माने जाने वाले उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया, तो ये बड़ी बात थी। तो जाहिर है जहां पर राजेंद्र प्रसाद हों और जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, तो वहां पर हम लफ्ज आना ही था, ये सब के सब इत्तेहाद और अमन के जो पुजारी लोग थे, तो जाहिर ऐसी जगह पर अगर हम नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा, हमसे मुराद हिंदुस्तान।
2: मैं हम का मतलब एक और भी था, चूंकि हमारा समाज इतना मुतनव है, डाइवर्सिटीज इसमें इतने हैं, इसमें कई मजाहिब, कई जात पात के लोग रहते हैं, तो वो हर शहरी खुद को शामिल समझे कि साहब हमारे लिए भी है, हमारे हाँ। लिए भी है, कि बिला किसी मजहब जात और नस्ल की तफरीक के सब अपने आप को बराबर समझे। और ये बराबर मसावात का जो हक देता है कानून, ये दरअसल इंट्रोडक्शन है उस दस्तावेज का, जो कानून जो बनाया गया, आईन का इंट्रोडक्शन है, और ये निचोड़ है, इसमें ज्यादातर चीजें बहुत ही मुख्तसर तमहीद में शामिल कर ली गई हैं।
1: मतलब कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी प्रेमुल की वजह कर ही देखा जाए तो हमारे अंदर वो जज्बा भी पैदा होता है कि हम कहीं भी रहते
2: होता है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, वी द पीपल, हम हिंदुस्तान,
1: हम कहीं भी रहते हैं तो बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, एक सवाल और बनता है, सबसे पहले जावेद साहब आप बताएं कि जो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर इतना लंबा है, तो क्या ये इसकी खूबी है या फिर ये इसकी खामी है?
2: ये दस्तावेज आईन बनाया जा रहा था, तो चूंकि हमारा जो मुल्क है इतना बड़ा मुल्क और इतने तरह के लोग, कि ये इनफरादियत है, और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो तवील ये आईन है, इससे बड़ा तवील आईन दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये तहरीर में है, रिटन है। दुनिया के 5-7 मुल्क ऐसे हैं जहां पे आईन नहीं बनाया गया, कोई तहरीरी शक्ल उसको नहीं दी गई, जैसे बर्तानिया है, कनाडा है, सऊदी अरबिया है, या इस तरह न्यूजीलैंड भी है, जहां पे वो तहरीरी आईन नहीं है। लेकिन हमारे यहां इस तवालत की जरूरत इसलिए पड़ी कि मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ नस्ल के लोग यहां पे रहते हैं, और इस तो ताकि इसमें कोई मुख्तलिफ जबान है हमारे यहां, मजाहिब, मरकज और रियासत के ताल्लुकात, और उसके अलावा जो है वो इन चीज़ों को बहुत ही तफसील से पॉइंट टू पॉइंट बयान किया गया, ताकि इसमें कोई इबहाम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि साहब हम तो नहीं समझ पाए, उसको तफसील से समझाया गया है, उसकी बारीकी को, एक एक पॉइंट को उसको तफसील से पेश किया गया है, ताकि कोई ऐसी ना समझने वाली, इबहाम वाली बात ना हो। इसलिए ये उसकी खूबी है, न कि खामी।
1: आप क्या कहना चाहेंगे इस पर ताकिब साहब?
0: देखिए, जाहिर है कि हमारा आईन तो तहरीरी है
1: जी, बिल्कुल।
0: जब भी कोई चीज तहरीर किया जाएगा तो वह तवील होगा, और जब हम बोलेंगे तो वो मुख्तसर होता है,
1: मुख्तसर हो जाता।
0: हम कम बोल के ज्यादा बात आपको समझा सकते हैं, लेकिन लिख करके जब कहेंगे तो

0: ऐसे मुल्क के लिए आइन बनाना तो जाहिर है कि यह तवील होगा, और ये तवील है इसीलिए इस आइन की खूबसूरती है। इसीलिए दुनिया में मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अच्छा कहीं आइन है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान से बेहतर। मैं इस चीज़ को मानने वाला इंसान हूँ कि हमारा आइन सबसे बेहतर है और मुकम्मल है और तहरीरी तौर पर है और हर चीज़ अपनी वजाहत के साथ है, और गुंजाइश भी रखा गया कि अगर आने वाले वक्त में कहीं पर किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ना है, बदल नहीं सकते हम, कहीं पर कोई चीज़ जोड़ना है तो जोड़ने की गुंजाइश भी है। इसीलिए हमारे यहाँ अमेंडमेंट भी हुए, इसीलिए हुआ, और लेकिन सख्ती भी बरती गई। ऐसा नहीं हो कि हर खास व आम जब चाहे बदल दे, इसीलिए आईन में कोई चीज़ अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में 3/4 मेजोरिटी होगा जिस सरकार को बदल सकते, कोई चेंज कर सकते, कोई उसमें जोड़ सकते, वरना दूसरे कोई अख्तियार भी नहीं। तो इससे हमारा आइन बहुत मुकम्मल और बेहतर।
1: आइन जब मुकम्मल किया जा रहा था तो उस टाइम उसके जो आर्टिकल्स थे, बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स थे जो जुड़े और फिर घटे इस तरीके से, और उसके कितने हिस्से थे और कितने आर्टिकल्स थे, तो सबसे पहले जावेद साहब आप हमें इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे।
2: चूंकि उसमें वो सख्ती भी है और वो लचीलापन भी है, तो इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी था। सख्ती जैसे आपने कहा कि बुनियादी ढांचा आपने जिक्र किया था, अगर सख्ती ना हो तो बुनियादी ढांचे को आराम से सिंपल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, एक फुल मेजॉरिटी होता है और एक सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से सभी उसको तब्दील किया जा सकता था, लेकिन बुनियादी ढांचे को सिंपल मेजॉरिटी से बदला नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत ही खास और बहुत ही सारी एक थंपिंग मेजॉरिटी जिसको कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए। बहरहाल ये इसका पस मंजर है। उस वक्त जब ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जो 395 आर्टिकल्स थे, अच्छा। उसमें जो है वो 8 शेड्यूल्ड थी उस वक्त, 22 हिस्से पार्ट्स थे उसके, जो ओरिजिनल जब आइन फॉर्म किया गया, आइन की तश्कील की गई 1949 में, जब नाफिज हुआ 50 में, तो जो है उस वक्त और अब तक उसमें जो तरमीम 107वां तरमीम जो है उसमें हो चुका है। तो इसलिए वो जरूरी था, वो वक्त के साथ हालात के साथ, आज कुछ हालात और हैं, कल को कुछ और हालात होंगे, इसलिए ये जरूरी था कि वो उसमें अमेंडमेंट और तरमीमात होती रहें। इसमें जो बुनियादी तौर पे जो उस वक्त जो बनाया गया, उस वक्त की बात है ये, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई वो फिर 61वें अमेंडमेंट में आर्टिकल 326 28 मार्च 1989 को किया गया, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज 21 से 18 की उम्र।
1: ये सवाल अभी मेरे जहन में आ रहा था कि हमारे आईन में जो एक बहुत अहम चीज है कि वोट का हक हर आवाम को दिया गया है, तो कहते हैं कि ये सबसे पहले जब हमारा आईन बना था तो उस वक्त 21 साल की उम्र के लोगों को ये हक हासिल था, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन फिर इसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो प्रोफेसर तौकीर साहब, आप हमें बताएं हमारी आवाम को कि ये हमारी आवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए इसमें क्या फायदा मिला।
0: देखिए, इसमें 21 साल था और अभी 18 साल, तो जिस वक्त ये बना उस वक्त 21 साल रखा गया। अब वो इसलिए रखा गया था कि उस वक्त हिंदुस्तान के लोग, आवाम स्पेशली, बहुत मैच्योर्ड नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ तालीम की कमी थी। तो जब तालीम कम है तो जाहिर है कि उस आदमी को जिसकी तालीम कम होती है उसको समझने में ज़्यादा देर लगती, तो इसी वजह से मैच्योरिटी कम थी, इसलिए 21 साल रखा गया। अब आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान तो है नहीं जो 1947 का हिंदुस्तान था या 1950 का हिंदुस्तान था, वो नहीं है। हमारा रेशियो बढ़ गया एजुकेशन में, हमारे सोचने और समझने की सलाहियतें और ताकतें भी बदल गई। तो बीच में एक ऐसा वक्त आया कि एक डिमांड भी था हमारे नौजवानों का कि हमें वोट देने का अख्तियार मिलना चाहिए। जब 18 साल का बच्चा और कहीं से बीपीएससी पास करके अगर आ जाए तो वो एसडीओ और बीडीओ तो हो जाएगा, तो एसडीओ हो सकता है लेकिन वोटिंग राइट नहीं रहेगा जो एसडीओ इलेक्शन करा, तो जब वो इलेक्शन करा सकता है तो फिर वोटिंग राइट क्यों नहीं हो। सारी चीजें हमारे यहाँ 18 साल से शुरू होती, नौकरी में आने के लिए 18 साल, शादी करने के लिए 18 साल,
1: ड्राइविंग लाइसेंस
0: के लिए 18 साल, हर जगह जब 18 साल है, तो ये तमाम चीजों पे सोच विचार करने के बाद रखा गया कि ठीक है वोटिंग राइट भी अब 18 साल होगा, और ये बेहतर है, ये बेहतर है कि ताकि नौजवानों को भी अपना अख्तियार हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, तो इसलिए वो ठीक है और मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब है।
2: इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि किसी भी मुल्क की जो बुनियाद होती है, जो तरक्की जो होती है, वो उस नौजवानों को पेश नज़र रखते हुए वो मुल्क काम करता है। दुनिया के सारे मुल्क जहां नौजवान ज्यादा होते हैं वो मुल्क अपने आप को तरक्की की रेस में बहुत तेज तरक्की करता है वो।

0: ना कि हमारी जो जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चों के ऊपर ही है देखा जाए।
1: दूसरी चीज ये है कि उसमें जब कहा गया कि भाई 21 साल में जब मैच्योर हो जाता तो बच्चे जो है आजकल 18 साल में, ऐसा नहीं है कि जो मैच्योरिटी उसकी कम होती है, उसके लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो होता है तो ऐसा नहीं होता 18 साल में बहुत कम हो 21 साल में बहुत पड़ जाए, तो इसलिए वो हुकूमत बनाने में क्यों उसको 21 साल रखा जाए, 18 साल में क्यों नहीं उसको शामिल किया जाए, ताकि वो भी तो देख रहा है, वो भी सारी चीजें जैसे 21 साल वाला देख रहा है वैसे 18 साल, बहुत फर्क नहीं है। लिहाजा और दुनिया के कई ऐसे मुल्कों में जो 18 साल पहले से ये राज था, इसलिए उसको ये सब सारे हालात को पेश नजर रखते हुए ये जो है 18 साल किया गया। हाँ तो अमेंडमेंट तो अलग चीज है, अमेंडमेंट तरमीम जो है वो 106वां 106वां अभी हुआ था थोड़े दिनों पहले, वो औरतों को खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया था 107वें अमेंडमेंट के तहत और उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ है 107।
0: अच्छा अभी जैसे अभी आपने कहा दूसरे किसी मुल्क में भी था कि वो 18 साल की उम्र में अपनी आवाम को वोटिंग का हक दे रहे थे, तो यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि हिंदुस्तानी आइन को कहते हैं कि उधार का थैला, बैग्स ऑफ बोरो कहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो जावेद साहब आप बताइए।
1: जी कोई भी चीज जब नई तश्कील होती है तो जाहिर है उसमें मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ये मुंतखब किया जाता है कि इसमें बेस्ट और सबसे बेस्ट और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कैसे शामिल की जाए, चूंकि ये बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया जाता है जिसके मुताबिक हर शहरी को जिंदगी गुजारना और उस पर अमल करना था, लिहाजा इन चीजों इन जरूरियात इन हालात को देखते हुए देखा गया कि किन मुल्कों के आईन में बेहतरीन चीजें शामिल है, तो उसमें जैसे बरतानिया उसका पार्लियामानी सिस्टम लिया गया, देखा गया भाई पार्लियामेंट, यही वजह कि हिंदुस्तान में अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। उसके बाद जुडिशियरी को देखा गया, अदालतें बड़ी अहम रोल अदा करती हैं, ये देखा गया कि अमेरिका में बहुत अच्छा जुडिशियरी है, तो अमेरिका से वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बिल्कुल आजाद हो, किसी के दबाव में कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम न कर रहा हो, ये चीज देखा गया कि अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका से वो चीज जुडिशरी लिया गया। इसी तरह से जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रियासत के रहनुमायाना उसूल जिसको कहते हैं वो आयरलैंड से लिया गया, ये सारी खूबियां हैं जो ली गई बरतानिया से अमेरिका से आयरलैंड से, ये सारी चीजें लेके जो बेस्ट जो बेहतर से चीजें हो सकती हैं, इसलिए उसको उधार का कहा जाता है कि वहां से उधार लेके हमने अपने आइन में उसको शामिल किया,
0: इसलिए इसको उधार का
1: जी
0: कहते हैं
1: जी, तो इसलिए मुख्तलिफ जराए का ये मजमुआ है।
0: तो प्रोफेसर साहब आप बताएंगे कि इसको उधार का जो थैला कहा जाता है तो इसके पीछे वजह और कुछ आपको लगता है कि कुछ बाकी रह गई तो आप बताइए।
2: देखिए इसमें अब कहने वाले को हम रोक नहीं सकते, लेकिन जब हम हिंदुस्तान का आइन बना रहे थे तो उस वक्त चूंकि हमारे पास पहले से तो कुछ था नहीं, रिटर्न हमारे पास था नहीं, ब्रिटिश की हुकूमत थी वो अपने तौर पर अपने चलाते थे, तो रजवाड़ा एक हिस्सा था, राजतंत्र था, गणतंत्र तो था नहीं। जब बनाने की बात आई, जब हम आजाद हो गए, तो ये बिल्कुल मुत्तफ़िका तौर पर तय किया गया संविधान सभा में कि हम पूरी दुनिया में जो ये कवानीन हैं जहां जहां जो भी हैं पहले हम उन सबों का मुताला करें, तो उन तमाम कानून का पहले मुताला किया गया और मुताला करने के बाद हमें फिर जहां से जो चीजें अच्छी लगी उसको हमने अपने तौर पे अपने हिंदुस्तानी ढांचे में ढालने की मैंने कोशिश की। मिनुअल हमने उनका नहीं लिया, हमने उनको पढ़ लिया और पढ़ने का हमको लगा अच्छा इनका ये चीज अच्छा, तो हमने फिर उसको अपने हिंदुस्तान के सिस्टम में देखा कि हम इस चीज को अपने यहाँ जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो जब हमें लगा कि ठीक है तो हमने उसको अपने हिसाब से अपने कानून में लागू किया। और जाहिर है कहीं से कोई चीज कोई भी आदमी माँ के पेट से पढ़ करके नहीं आता, हम जब हैं हमारा एग्जिस्टेंस है तो फिर हम देखेंगे कि और का एग्जिस्टेंस कैसा, तो हम सबों को देख करके इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आइन सबसे बेहतर, जो मैंने पहले कहा, इसलिए कि हमने पूरी दुनिया के आइन को जहाँ रिटेन आइन था जहाँ जबान ट्रेडिशन के हिसाब से चलता था, जैसे लंदन का कोई आइन नहीं है, उनका कोई रिटेन आइन नहीं है, उनका ट्रेडिशन से चलता, तो हमने उनको भी देखा उनका ट्रेडिशन क्या, तो जो हमें बेहतर लगा सबको लेकर के मैंने अपना आइन बनाया और मेरा आइन सबसे तवील है दुनिया में और इसीलिए मेरा आइन सबसे बेहतर है कि यहाँ पे किसी तरह की ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जिसको हम कहें कि यहाँ पे धोखा हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें छूट रही, सारी चीज़ें हमारे आइन में मौजूद हैं, सिर्फ हम समझना कैसे चाहते हैं, जैसे हम समझना चाहेंगे वैसी समझ मेरी बनेगी और उस हिसाब से हमें काम करना होगा, भागने की गुंजाइश भी नहीं, आइन से आप भाग नहीं सकते इधर उधर, तो इसलिए मेरा आइन सबसे बेहतर है और ये उधार का थैला तो बिल्कुल नहीं है, मेरी अपनी चीज है और वो मेरी चीज है और मेरी ही रहेगी।
0: हमने जो देखा जो पूरी दुनिया में कहाँ पे कौन सी चीज

0: अच्छी, जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको फिर हम लेते हैं और अपने हिसाब से कुछ इसको उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक वही काम किया गया हमारे यहाँ भी, दूसरे के आइन को देखा, सुना, समझा और फिर ये सोचा कि हमारा जो एक जो इतना खूबसूरत सा जो गुलदस्ता है, इतने सारे रंगों से सजे हुए, इतनी जबानों से, तो उसके ऊपर ये परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ हम इसको अगर करेंगे तो हमारी आवाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे? उसके बाद उसको ऐड किया गया, यही चीज़ें हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि हमारी आइन जो है वो सबसे बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात और, कि जो हमारा आईन है इसमें लचक भी है, सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन कब कहां पर इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये जो चीजें होती हैं इससे हमारे समाज और हमारे मुआशरे में और हमारी जो आवाम है उसके ऊपर कैसे असरात होते हैं? जब कुछ नया बदलाव जब होता है तो इसको हमारी आवाम कैसे लेती है?
1: जैसे कोई नई चीज आप लाइएगा, जैसे एक जो आइन मौजूद है हमारे पास, हम उस आइन में वक्त और मौके के लिहाज से कुछ चीज़ें उसको जोड़ते हैं, यानी अमेंड कर देते हैं। तो जब हम अमेंड करेंगे तो जाहिर है वो हिस्सा एक तरह से हमारा नया हो जाता है, आवाम में उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन अमेंडमेंट के लिए हिंदुस्तानी आइन में तरमीम बहुत ज़्यादा सख्त है, और न भी ज़्यादा सख्त हो तो ज़्यादा लचकदार नहीं हो सकता। सख्ती है इसीलिए लचकदार भी है। जैसे अभी हमने बात की 18 साल की और 21 साल की, ये लचकदार हमारा आईन है इसीलिए इसको हम 18 कर सके। मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो शायद आज के दिन में कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है जो बहुत कम जगहों पे, यानी बुनियादी हकूक, शहरियों को आज़ादी, मसावात, इंसाफ जैसे बुनियादी हकूक हमारे यहाँ हासिल हैं जो बहुत कम जगहों पे हैं, सभी जगहों पे नहीं है। जहाँ रजवाड़ा है वहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ बादशाहत है वहाँ बिल्कुल नहीं है। अवाम की जब सरकार बनेगी तभी अवाम के लिए भलाई का रास्ता भी निकलेगा, वरना जहाँ पर भी बादशाहत है वहाँ अवाम के भलाई के लिए नहीं हो सकता, उस खानदान के लिए हो सकता है जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अवाम के लिए सब कुछ है। जैसे हमारे रूल ऑफ लॉ है जो बहुत कम जगहों पर है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता है हर जगह, यानी कानून की हुक्मरानी। जब कानून की हुक्मरानी होगी तभी सब कुछ होगा, यानी अदालतें हमारी बिल्कुल आजाद है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदालत हमारा फैसला कर देता है, एग्जाम्पल मौजूद है पहले से। तो ये अदालतें हमारी इतनी आजाद हैं, और दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कहीं भी नहीं, जहां अदालत इतना फ्री हो। बहुत कम जगहों पे है, बहुत है और भी जगहों पे है, तभी हमने लिया। एक और चीज बताता चलूं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिटीजनशिप बिल्कुल सिंगल है, आपको हिंदुस्तान का शहरी रहना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी चीज है, अपने मुल्क से एक तरह से हम अपनी वफादारी, अपना एक कमिटमेंट हम दिखाते हैं। कम जगहों पे बहुत सारा डबल सिटीजनशिप है, कहीं कहीं तीन तीन जगहों के सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमने मुल्क के लिए वफादार, और जो मुल्क के लिए वफादार नहीं है वो हमारे सिटीजन नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये हमारे आइन की खूबियां हैं जो दूसरे जगहों पे हमें तो बहुत कम देखने को मिलता है। और सुपरमेसी ऑफ लॉ है, एक दफे जो फैसला हो गया तो हो गया, लेकिन वहां भी गुंजाइश रखी गई कि अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला है और उससे अगर एक पार्टी नाखुश है तो उसे अख्तियार है आगे अपील करने का। अपील करते करते हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, और इस बीच में जिसको ग्रीवांस होता है उसे कहीं ना कहीं से उसके मुताबिक एक सही फैसला हो ही जाता है अमूमन, और उससे वो शख्स मुतमईन हो जाता है। यही खूबी है हमारे हिंदुस्तानी आइन की।
0: जावेद साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो जो ढांचा है हमारा, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें जो इतनी सारी जो लचक है, सख्ती है, सारी चीजें हैं, इसके बावजूद जो अवाम है वो अपने आप को यहाँ पर हर हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतरीन भाईचारे के साथ रहते हैं, हम आहंगी है हमारे दरमियान में, हम एक दूसरे को समझते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या कहीं ये हमारी आइन का भी असर है जो हमारी शख्सियतों के ऊपर दिखता है?
2: आइन बनाए ही इसलिए किया गया है ताकि हर शहरी अपने आप को समझे कि हमारा जितना हक है दूसरे शहरी का भी उतना ही है, जिसको हक मसावात कहते हैं। और रही बात सख्ती और लचक की, तो ये दोनों का इम्तिजाज है, आमेजिश है। ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त है, ऐसा नहीं है कि बहुत है। जैसे अमेरिका में बहुत सख्त है, लेकिन उल्टा बर्तानिया में जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकदार है, चूंकि एक तहरीर में नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि हर चीज तहरीरी शक्ल में मौजूद है, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बाकी है तब तक हर शहरी का हक महफूज है। इसलिए इसमें लचक भी होना जरूरी है और सख्ती भी जरूरी है। अगर सख्ती ना हो तो जैसा मैंने अर्ज किया कि बुनियादी ढांचा

0: अच्छे काम अंजाम देती हैं और वो इसकी राह निकालती हैं।
1: इस बीच में एक चीज और भी है
2: जी,
1: जैसे अदलिया के बाद इंटरनेशनल लॉ है, उसके बीच में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से भी अपनी बात अपील कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर उसको फांसी की सजा हो गई तो उसके खिलाफ हम सदर जमहूरिया से अपील कर सकते हैं कि मेरी गलती ने मुझे माफ कर दे, और जब उन्हें अख्तियार हासिल है वो चाहे तो उसे माफ कर दे सकती हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं भी माफ कर सकती हैं। तो ये भी हमारे आइन की खूबसूरती है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक गुंजाइश है कि फांसी की सजा को भी माफ करने का अख्तियार सदर जमहूरिया को हमारे यहाँ है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ वफाकी निदान यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसका मतलब यह है कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट, ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बना रहे। जब तक के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जो चाहे करने लगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि चेक एंड बैलेंस, हमारे कानून में आइन में चेक एंड बैलेंस बहुत है। एक तरफ अदलिया चेक एंड बैलेंस करती रहती है, दूसरी तरफ पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, स्टेट का अलग है और सेंट्रल का अलग है। इसका तो बाकायदा मुजाहरा खासतौर पर इलेक्शन के जमाने में होता रहता है, बाकायदा मुजाहरा होता है। सेंट्रल में अगर किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की सरकार है तो दिक्कत बनता है, तरह से सब कुछ होता रहता है। तो वफाकी निजाम का एक फायदा यह भी है कि जल्दी हमारे यहाँ कोई आदमी डिक्टेटर नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ हमारे ही कानून में है, यानी हिंदुस्तान के आइन में है, ऐसा दूसरी जगहों पर बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन हमारे यहाँ है और अमली तौर पे उसका मुजाहरा भी होता है। ये हमारे आइन की
2: सबसे बड़ी खूबसूरती।
0: प्रोफेसर साहब की बात को मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, उसी में शामिल कर देता हूँ, चूंकि एक तवील भी है हमारा, तो इसमें एक एक प्वाइंट को कोशिश ये की गई है कि वजाहत की जाए इसको, ताकि उसमें इबहाम ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो ये इसलिए वो सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, एक और लिस्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, जिसमें दोनों का पावर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर शादियात, डिवोर्स, ये दोनों में इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कुछ ऐसे पावर हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते। लेकिन इसके बावजूद ये अलबत्ता ये जरूरी भी था कि थोड़ा झुकाव होता है और ये कहा जाए कि अपर हैंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जैसे अगर बाहर से किसी ने हमला कर दिया हमारे मुल्क पर, या कुछ ऐसे नागुजीर हालात पैदा हो गए, इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए, तो इन हालात में वो स्टेट का पावर पूरे तौर पर सीज हो जाता है और वो मरकज की तरफ वो पावर चला जाता है।
2: फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको
0: जैसे प्रेसिडेंट रूल जो कहते हैं हम, कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट रूल को नाफिज करना पड़ता है, तो ऐसे भी है। तो ये सारी चीजें हालात के पेशे नजर रख, अगर ऐसा ना हो तो स्टेट भी डिक्टेटर हो जाएगा।
1: के लिए फेडरल सिस्टम रखा गया,
0: फेडरल सिस्टम
1: चेक एंड बैलेंस होगा, इमरजेंसी का पावर भी है। अब हंगामी हालात में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया सारी चीजें बंद हो गई, आपका फंडामेंटल राइट तक सीज हो जाता है, सारी चीजें हमारी वहीं पे रुक जाती
2: और बहुत सारे फसादात से आवाम जो है।
1: और कंग्रेस लिस्ट में सबसे एक सबसे अहम जो कंग्रेस लिस्ट में वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे दोनों का अख्तियार है, स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। अगर ये दोनों के अख्तियारात नहीं होते तो एजुकेशन सिस्टम हमारा चरमरा जाता। जिस स्टेट में जिसकी हुकूमत होती है अपने हिसाब से एजुकेशन शुरू कर देता, तो इसीलिए सेंटर का भी उस पर कमांड रहता है कि कंग्रेस लिस्ट का सबसे अहम पार्ट है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए मनमानी नहीं चलती, कुछ मिला जुला के चलना पड़ेगा। तो ये हमारे आइन की सब खूबसूरती
2: जी। आज की हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही सामीन हजरात, और आपने समझा होगा कि हमारा जो आइन है सही मायने में बहुत खूबसूरत है। यूं ही नहीं बना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलस्तां हमारा, तो इस गुलस्तां को संभाल करके रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। और मैं आज के हमारे खास मेहमान खसूसी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रोफेसर तौकीर आलम साहब आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, और जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेजबान से गुप्ता को दीजिए इजाजत।
0: शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया कि आपने मौका दिया,
1: हम लोगों को बुलाया।
2: सामीन, हमारी सेहत ता हयात बरकरार रहे उसके लिए हमारी ग़िज़ा मुतवज़्ज़िन होनी ज़रूरी है। ताज़ा फलों सब्जियों के साथ खालिस ग़िज़ा और सही मकदार में पानी का इस्तेमाल करना बेहद अहम है। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहां हमारे पास दुनिया के सारे कामों के लिए वक्त है, पर वर्जिश को हम भूल चुके हैं। जबकि रोज़ाना सुबह की सैर और थोड़ी हल्की फुल्की वर्जिश आपको तरोताज़ा करने के साथ साथ सेहत बरकरार रखने में मदद करती है। अपने जिस्म लिबास, घरों और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना भी सेहतमंद रहने में काफ़ी कारगर साबित

होता है। गंदगी से होने वाली बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। एक अहम चीज जो हमारी जिंदगी से आज खोती जा रही है वह हमारी नींद। दोस्तों, सेहतमंद जिस्म और जहन के लिए 6 से 8 घंटे की मुनासिब और अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है। इस तरह से रह सकते हैं हम और आप सेहतमंद, लेकिन सेहत हमारी तभी हमारे पास रहेगी जब हम उसकी कदर करेंगे। क्योंकि लाख दौलत और ओहदे हों, सेहत नहीं है तो फिर आप उसका फ़ायदा और लुत्फ कभी भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए और इसकी कदर कीजिए। इसके साथ ही वक्त का इशारा है कि आपको कहें अलविदा। चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल, समात कीजिए।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म बरसात में। गीत रचना शैलेंद्र की और धुन शंकर जयकिशन की थी। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आशा का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आशा के गीत सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सावन भादो फिल्म के इस गीत को आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत रचना वर्मा मलिक की है और संगीत रचना सोनिक उमी की।

सबक फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म बैराग का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बज्जिका के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। देखू आज के समय में युवा सबके शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक कौशल सीखना भी जरूरी होइया, जेना कंप्यूटर, संचार, तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व आ समस्या समाधान जैसन कौशल हुनका आत्मनिर्भर बने में मदद करैया। काहे कि ऐसन देखल जाइया कि उचित पढ़ाई लिखाई कैला के बाद भी हर केकरो उ पद प्राप्त नहीं होइया जेकर हुनका अभिलाषा रहैया। आज के समय में ऐसन बहुत कोई हथिन जे बड़का बड़का डिग्री प्राप्त करके भी बेरोजगार हथिन, या जिनका पद प्राप्त हो चुकल है वो अपना सैलरी से खुश नहीं हथिन। तो यह सब कारण से आज के समय में युवा सबके कौशल युक्त शिक्षण की आवश्यकता पड़ैया। कौशल युक्त शिक्षण से युवा सबके रोजगार के बेहतर अवसर मिलैया। आज के समय में कंप्यूटर ज्ञान, तकनीकी ज्ञान जैसन कौशल युक्त शिक्षण के बड़ा महत्व है। इस तरह के शिक्षा प्राप्त कैला के बाद युवा अपन खुद के व्यवसाय भी शुरू कर सकत हथिन आ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकत हथिन। ऐसन युवा आत्मविश्वासी, जिम्मेदार आ नवाचार करे वाला नागरिक बनैया। देखल जाइया आज के समय में कौशल शिक्षा के बढ़ावा देवे के लेल विद्यालय आ महाविद्यालय में भी कौशल आधारित शिक्षा के बढ़ावा दिल जा रहल है, काहे कि ई समय के मांग है। अइला हमरा सबके मिल के युवा सबके कौशल शिक्षा प्राप्त करे के लेल हुनका सबके प्रेरित करे के चाही। देखू अपन देश के जे युवा पीढ़ी है उ अपन देश के भविष्य है, एगो उगता सूरज है जेकरा कल सब नमस्कार करत। ऐसन युवा के लेल कौशल युक्त शिक्षा आ रोजगार बढ़ावे के लेल हुनका अपन पैर पर खड़ा होय के लेल भारत सरकार द्वारा प्रमुख योजना चलायल जा रहल है। जेना एगो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जे युवा सबके निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण आ प्रमाण पत्र देवे थतीन ताकि हुनका रोजगार मिल सके आ उ आत्मनिर्भर बन सके। एगो योजना है स्किल इंडिया मिशन, ई योजना के लाभ उठा के भी युवा रोजगार प्राप्त कर सके थतीन। ऐसे ही एगो जन शिक्षण संस्थान योजना है, एकरा द्वारा ग्रामीण आ वंचित वर्ग के युवा के स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान कैल जाइया। पीएम सेतु योजना, ई योजना के अंतर्गत आईटीआई संस्था के आधुनिक बना के युवा के नया तकनीक आ बेहतर रोजगार योग्य कौशल के प्रशिक्षण देल जाइया, जैसे युवा पीढ़ी बेरोजगार नहीं रहे हुनका रोजगार प्राप्त हो सके आ ऊ भी आत्मनिर्भर बन सके आ देश के नाम रोशन कर सके। देखो जे युवा खुद के पैर पर खड़ा होई चाहत हतीन उ प्रधानमंत्री द्वारा चलायल गेल योजना के लाभ अवश्य उठावे के कोशिश करत हतीन। हमर जे युवा पीढ़ी हतीन हुनका अंदर बहुत जोश रहैया, कुछ करे के क्षमता रहैया। उ आसमान के ऊंचाई के छुए के लेल हर संभव प्रयास करे के लेल तैयार रहत हतीन। आज के युवा पूरे जोश होश के साथ काम करत हतीन आ जे भी क्षेत्र में खुद के आजमावे थतीन वहाँ उनका सफलता प्राप्त होइया। युवा शक्ति के महत्व के संबंध में एगो आदमी के की कहना है, हुनकर की विचार है, आओ सुने थती।
1: हमर देश भारत युवा शक्ति से भरल है, सबसे बड़ा धरोहर युवा है हमर देश में। युवा के सही दिशा निर्देश मिले की नहीं कर सकले है, देश के विकास में, समाज में, हर जगह वो कुरीति के दूर कर सकले। युवा के महत्वपूर्ण भूमिका है देश में, अगर युवा शक्ति के सही से उपयोग करल

0: देश में तो समाज के विकास में, देश के विकास में कहीं कोई अड़चन नहीं आ सकले। आज युवा के अपन सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, लेकिन ओकरा ला युवा के खुद अपन विकास करे के होते, खुद अपन हुनर बनावे के होते, तब जाकर के युवा अपन रोजगार अपने तलाश सकले है, अपन क्षमता के अनुसार अपना रोजगार में दिमाग लगावे के होते कि हमरा की करे के है, नहीं करे के, जो जिस तरह के रोजगार में जा सकले ओकरा खुद अपन हिसाब से रोजगार में जैते, तब बेरोजगारी दूर होते, देश के समस्या कम होते। और युवा चाहे तो ये सब चीज अपन क्षमता से कर सके, अपन बेरोजगारी के अपने दूर कर सके है, देश के आगे बढ़ावे ला युवा ही सबसे बड़ा क्षमता है, युवा ही देश के सबसे आगे बढ़ा सकले है, युवा ही एक ऐसा शक्ति है, राष्ट्र शक्ति, जे देश के समाज के कुरीति के दूर कर सकले है।
1: अखनी अपने युवा शक्ति के महत्व के संबंध में एगो आदमी के विचार सुनित रही। अब बात अपन धरोहर के, आई हम बात करे थती बिहार राज्य के मधुबनी जिला में झंझारपुर में विदेश्वर गांव में स्थित बाबा विदेश्वर नाथ मंदिर के। ई मंदिर झंझारपुर ब्लॉक से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम आ मंडन मिश्र होल्ट से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जे भगवान शिव के समर्पित है। ई मंदिर मिथिला क्षेत्र के बाबा धाम के रूप में भी जानल जाइए। अपन बिहार सरकार द्वारा एकरा आधिकारिक तौर पर एगो प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित कैल गेल है। यहाँ सावन आ महाशिवरात्रि के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लेल आवे थतीन। मछैता सड़क किनारे स्थित विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर भक्त सब के आस्था के प्रमुख केंद्र है। ई मंदिर के ख्याति पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में फैलल है। ई मंदिर में स्थानीय भक्त के साथ साथ यहाँ नेपाल से भी लोग पूजा करे आवे थतीन। देखो ई मंदिर के रहस्य बहुत गूढ़ है। मंदिर के शिलापट पर मिथिलाक्षर से ई ज्ञात होइए कि 1300 ईस्वी में मंदिर के जीर्णोद्धार भेल रहे। ई मंदिर के विषय में अनुमान लगायल जाइए कि राजा विदेह से संबंध होय के कारण मंदिर के नाम विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर पड़ल रहे। यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती आ अन्य देवी देवता के अति प्राचीन मंदिर है। मूर्ति परिसर में होय के कारण भक्त के आस्था के ही बड़का केंद्र बनल है। देखो यहाँ सावन में शिवरात्रि के साथ भाद्र पूर्णिमा पर भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना के लेके भव्य आयोजन होइया। यहाँ एगो लोक कथा भी बहुत प्रसिद्ध है जे भक्त के आस्था से जुड़ल है। वो लोक कथा है कि कालांतर में भगवान शिव के प्रिय भैरवनाथ रुष्ट हो गेल रहे आ मिथिला आ गेल रहे, ता आशीर्वाद के रूप में भगवान शिव हुनका वरदान देले रहतीन कि साल में एक बेर भगवान शिव अपन परिवार समेत यहाँ आयतन अयला। आय भी भादो पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में भोर के 4 बजे से ही भगवान शिव के पूजा अर्चना शुरू कैल जाइया। देखो ई मंदिर पर भक्त के विशेष आस्था है। शादी विवाह में या और दोसर जे भी मांगलिक कार्य होइया उ सब ई स्थान पर संपन्न कैल जाइया। ई स्थान पर भक्त अपन मन्नत पूरा होय पर भगवान शिव के जलाभिषेक आ दर्शन के लेल आवित हतीन। ऐसे में भक्त पर भगवान शिव के असीम कृपा बरसैया। लोग सबके मन के मुराद यहाँ भोलेनाथ के कृपा से खूब पूरा होइया। ई मंदिर के पर्यटन विभाग के द्वारा ई स्वीकृति देल गेल है कि ई मंदिर के निर्माण कार्य प्रगति पर रहे, ताकि श्रद्धालु ई स्थान पर आके बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सके, ऊ परिसर में शांति के कुछ पल के व्यतीत कर सके, वहाँ के मनोरम दृश्य के आनंद उठा सके। देखो वैसे त मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थल बाबा विदेश्वर नाथ के संबंध में और बहुते बात है, पर आए बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ शारदा सिन्हा के गायल ई लोक गीत सुने थती।

0: अखनी अपने शारदा सिन्हा के गायल ई लोक गीत सुनेत रही। अब कार्यक्रम में सुनित हती राम बाबू नीरव के खिस्सा, शीर्षक है अभागिन के भाग्य।
1: प्रस्तुत है अमर बजिका कहानी अभागिन के भाग्य। अपन 7 दिन के बेटी के छाती से चिपकौले शोभा निर्झर के जैसन अपन आँख से आंसू बहा रहा है, मगर ओकर ई आंसू के ओ कसाई सबके आगे कोनो मूल न रहे। आंगन के एगो कोना में खड़ा होके शोभा अपन सास ससुर जेठ आ जेठानी की ओर देखित रहे। ओकर मरद विनोद उनका सबके सामने कोनो अपराधी के जैसन सर झुकौले खड़ा रहे। सास ससुर जेठ आ जेठानी सब शोभा आ विनोद के खिलाफ आग उगलित रहे। विनोद उनकर सबके मिर्चाई से भी तीख बात सुन सुन के हलकान होए लागल आ अपन मरद के हालत देख देख के शोभा के कलेजा फाटे लागल। अब ओकरा कोख से फेरू बेटिए भेल तो ऐ में ओकर चाहे ओकर घर वाला के कौन कसूर। भगवान ओकरा किस्मत में 3-3 गो बेटिए लिख दिलन तो ऊ अपन किस्मत केकरा से बदल लेत। शोभा के अपन सास आ ससुर के बात के ओते दुख न रहे जते कि जेठ आ जेठानी के। ओकर जेठानी 2 गो बेटा के जन्म दे के इतरा रहल है। ई महारानी के बुझाइए जैसे हमर तीनों बेटी के प्रतिपालन अकेले घर वाला करत। आई ओकर घर वाला विनोद के कमाई पर सब गुलछर्रा उड़ा रहा है, ये केकरो न बुझा रहा है, और हमर बेटी के लेके सब हमरे दोनों प्राणी पर भिड़ गया है। हमर घर वाला गाय जैसन सुधा है तो सब इनका पजले जा रहा है। शोभा के मन कहलक कि ऊ ओकरा सब के सामने आके खूब बेइज्जत कर दे, मगर मान मर्यादा के ख्याल करके चुप रहा। जब विनोद से बर्दाश्त न भेल तो ऊ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए लागल, देख गे माई तू सब मिलके रार मत बेसाह, हमर बेटी है हम ओकर प्रतिपालन करब। अपन घर वाला के ऐसन रूप देख के शोभा भौचक रह गेल, कहियो न देखले रहे एकर ऐसन रूप। हाँ हाँ प्रतिपालन करिए तू, विनोद के बाप ओकरा से ज़्यादा तेज आवाज़ में चिल्ला लागल। खाली प्रतिपालन करे से न होइया, ये तीनों के शादी ब्याह भी केना होते सेहो सोचले है तू? केना होते, दुनिया में जना सबकी होइ छै तेना हमरो बेटी के हो जते। न होते तो जमीन जायदाद बेच के कर देबे। खबरदार रे विनोद बा, हमर जमीन के ओर जे आँख उठा के देखले तो हम तोहर आँख फोड़ देबो। अपन बड़का भाई के ऐसन बात सुन के विनोद के देह में आग लग गेल। ई जमीन जायदाद में हमर हिस्सा न है कि? जहिया तोहर हिस्सा होतो तहिया बतेई है, बुझाना अपन बाप के ओर मुड़ के एकदम कसाई जैसन बोले लागल। बाबू हम कहले रहियो न कोनो दवाई खिला के ई छोकरी के पेटे में मार दा, मगर हमर बात के तो कोनो वैल्यू न रहे, अब तब होगा तू सब। विनोद आ शोभा बुझावन के बात सुन के सन रह गेल। कुछ देर के लेल विनोद के बुझाएल जैसे ओकरा शरीर में जाने न है। जब ओकर चेतना लौटल तब वो अपन घर वाली के हाथ पकड़ के बाहर की ओर खींचे लागल, तू अपन बेटी के लेके भाग यहाँ से, न तो ये राक्षस सब मार देते एकरा। शोभा भी एकदम से डर गेल, ओकरा आँख के आगे अंधेरा छा गेल, मुदा इतना होश रहे ओकरा कि वो अब पूरा शक्ति लगा के भागे लागल। आषाढ़ के महीना रहे आ भरल दुपहरी, प्रचंड गर्मी से देह झुलसित रहे, तैयो शोभा जान हथेली पर लेके भागित रहे। ओकरा बुझाए लागल जैसे हाथ में तलवार ले ले ओकर भैंसू ई मासूम के काटे के लेल आ रहल है। भागत भागत शोभा रेलवे गुमती पर पहुंच गेल, रेलवे गुमती बंद रहे। शोभा नज़र उठा के देखे लागल, पश्चिम की ओर से कौन एक्सप्रेस गाड़ी अबित रहे। ओकर मन कहलक कि ई गाड़ी के आगे कूद के अपन अपन बेटी के जान दे दी, मगर ओकर हिम्मत काम न कहलक। ओकर बेटी रोते रोते बेदम हो गेल, अपन आंचल से बेटी के चेहरा

के झाँपके ओ छुक छुक करके भगत रेलगाड़ी के एकटक देखे लागल। ओकर मन में ई गाड़ी के जैसन तेज गति से विचार उमड़े लागल, बेटी के लेके अब कहाँ जाए, नैहरों में तो सब फकरे है, मुसमात हमर माई कते दिन रखत। वो अपन बेटी के चेहरा उठा के देखे लागल, बड़ी खूबसूरत रहे ओकर बेटी, नन्ही नन्ही पड़ी जैसन, जोग या भागिन काहे जन्म ले तू हमारा कोख से, सब तोहर दुश्मन भे गेलो। शोभा के आँख से फिर आंसू के धारा फूट पड़ल। ट्रेन के गेला के बाद गुमती के फाटक खुल गया, मोटर साइकिल सवार और पैदल आदमी के रेला धक्का मुक्की करत ई पार से ऊपर जाए लागल। अपन बेटी के कलेजा से चिपका के शोभा वो भीड़ में शामिल हो गया। अब प्रचंड गर्मी से ओकर हालत बिगड़े लागल, एक कदम भी आगे बढ़े की शक्ति न रहे। देखते देखते में सड़क एकदम सुनसान भे गेल। सड़क के दाहिना ओर एगो मोहल्ला रहे आ बायां ओर आम के एगो बगिया। जब शोभा से गर्मी बर्दाश्त न भेल तो बगीचा में जाके एगो पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी आ भूख से बेहाल ओकर बेटी चीख चीख के रोए लागल, अपन आंचल में ओकरा छुपा के दूध पिलावे लागल। हल्का हल्का पछिया हवा से दोनों माय बेटी के राहत मिले लागल। तनके देर में ओकर बेटी नींद में मगन भे गेल। अब शोभा के चिंता सतावे लागल, की करूँ की न करूँ, कहाँ लेके जाऊँ अपन बेटी के। तभी ओकरा मन में एगो विचार आयल, एकरा कहीं पर छोड़ दे छी, कोनो न कोनो तो दया करके एकरा उठाइए लेत, न अपना घर में रखत आ अनाथालय में तो धरिए देत, अहू से तो ई अभागिन के जान बच जात। शोभा अपन बेटी के अंतिम बार निहारे लागल, फिर पागल के जैसन ओकरा चूमे लागल आ उहे पेड़ के नीचे घास पात पर सुता के दोसर पेड़ के पीछे जाके छुप गेल। तनके देर में ओकर बेटी रोए लागल। वो बगीचा में के रखवार एगो औरत रहे, ओकर कान में जब बच्ची के रोए के आवाज़ पड़ल तो वो एकदम से घबरा के ओकर नज़दीक पहुँचल। देख के एगो 6-7 दिन के बच्ची पड़ल है। इस सुनसान जगह पर बच्ची के लावारिस हालत में देख के ओकर छाती फाटे लागल। वो जोर जोर से चिल्ला के लोग सबके जमा करे लागल। देखते देखते में वहाँ पर सैकड़ों लोग के भीड़ जमा भे गेल। सब ई देख के ताज्जुब करे लागल कि ई दूध मुहा बच्ची के कौन फेंक गेल यहाँ पर। औरत सब आपस में कानाफूसी करे लागल, दैया गे दैया, केहन कसाई एकर मतारी रहल होते गे दैया, जे ई मासूम के मरे लागी फेंक गेल। शोभा के कलेजा में सूल जैसन चूहे लागल। ओकर सबके बात सुन के पेड़ के पीछे से निकल के भीड़ में वो शामिल भे गेल रहे। ओह ऐसन सुंदर लड़की, अगर ये लड़का रहे तो हम उठा के ले जाती। हाँ हाँ बेटा तो सबके चाही, मुदा बेटी केकरो न चाही, जते मुँह उत्ते रंग के बात। शोभा के मन में उथल पुथल हो लागल। आई भीड़ में एको गो दयाबान न है, हम अपन बेटी के उठा ली छी, भीख उख मांग के एकरा पोस लेब। वो जैसे ही आगे बढ़े लागल कि इतने में एगो मोटरसाइकिल आके ठीक ओकरा सामने रुक गेल। मोटरसाइकिल पर साहेब जैसन नौजवान बैठल रहे, वो ओकरा से ठेठ हिंदी में पूछे लागल, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, एगो लड़की यहाँ पर रखल है बाबू साहेब। शोभा के मुँह से अचानक निकल पड़ल, न जाने काहे ओकरा लागे लागल जैसे ये आदमी भगवान बन के आयल है यहाँ पर। लड़की कैसी लड़की, 7 दिन की लड़की है। ओह वो आदमी अपन मोटरसाइकिल पर से उतर के भीड़ के चिड़ैत उ लड़की के पास पहुँच गया आ ओकरा अपन गोदी में उठा के पुचकारे लगा। भीड़ तो एकदम से भौचक रह गया। बहुत सुंदर है यह लड़की, मुझे बेटी नहीं है सिर्फ 2 बेटा है, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं इसे अपनी बेटी बना ले जाऊँ। काहे आपत्ति हो, भीड़ में से एक आदमी बोल पड़ल, हाँ तो भगवान के रूप लेके अली है, ये बच्ची के तो भाग्य उदय भे गेल। भीड़ उ नौजवान के दरिया दिल्ली देख के ताली पीटे लागल। शोभा के पूरा शरीर में हर्ष की लहर दौड़े लागल, मगर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर अकेला हूँ, यदि आप लोगों में से कोई मेरे साथ चलकर इस बच्ची को मेरे घर तक पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नौजवान भीड़ से विनती करे लागल, मगर कोई बच्ची के पहुँचाबे के लिए तैयार न भेल। तभी शोभा के मन में ओकर ममता जागल आ वो आगे बढ़ के नौजवान से कहे लागल, बाबूजी अहाँ के घर कहाँ है। मेरा घर पुपरी है, पुपरी में मेरा व्यापार है, श्री रामनाथ बाबू का मैं बड़ा बेटा हूँ। रामनाथ बाबू के नाम सुन के सब उन नौजवान के आश्चर्य से देखे लागल। पुपरी के रामनाथ बाबू नामी ग्रामीण लोग में से एक छतन, ये लड़की के भाग्य एकरा कहाँ से कहाँ पहुँचा देलक। सब आश्चर्य और हर्ष से देखे अपन उंगली काटे लागल। शोभा के तो ऐसा लागल जैसे ओकर बेटी देखते देखते कोनो राजमहल में राजकुमारी बन गेल। चलू बाबू जी हम पहुँचा दी छी। जी चलिए, अपन बेटी के गोद में लेके वो मोटरसाइकिल पर बैठ गया। गाड़ी पुपुरी की ओर उड़े लागल। जब रामनाथ बाबू के घर के सामने आके मोटरसाइकिल रुकल तब शोभा के सर चकरा के रह गया, बाहर हमारा भागिन बेटी के भागे। रामनाथ बाबू के बेटा गाड़ी से उतर के दरवाजा पर बैठल अपन बाबूजी से बात करे लागल। शोभा अपन बेटी के गोद में लेके नीचे खड़ा रहे। जब पूरा बात रामनाथ बाबू सुन लेलन तो खुशी के मारे उछल पड़लन, नीचे आके शोभा के गोदी से बच्ची के छीन लेलन आ ओकरा पुचकारित कहे लागल, मेरे घर की

0: लक्ष्मी आ गई। शोभा की आंख से हर्ष के आंसू बह लागल आ ऊ झुक के रामनाथ बाबू के चरण धूल लेके अपन मांग में भर देलक। कोनो के ही पता न रह लागल कि घर में आयल लक्ष्मी के जन्म देवे वाली खुद यहाँ पहुँचा गेल। ओकरा
1: अखनी अपने राम बाबू नीरव के खिस्सा सुनित रही। शीर्षक रहे अभागिन के भाग्य। अब समय हो रहल है शब्द सरिता के। आय शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है अंगूतिये। एकर मायने होई या सूर्य उदय से पहले। जेना लोग कहत हतीन यदि स्वास्थ्य ठीक रखे के है तो रोज अंगूतिये उठे के चाही आ टहले के चाही। मतलब सूर्य उदय से पहले उठे के चाही। अंगूतिये के मायने भेल सूर्य उदय से पहले। दीदा एकर मायने होई या आँख। जेना लोग कहत हतीन प्रकृति के सुंदर नजारा ओकर हरियाली हमर दीदा के रोशनी बढ़ा देवेत है। मतलब आँख के रोशनी बढ़ा देवेत है। त दीदा के मायने भेल आँख। जोगा के मतलब संभाल के रखना। जेना लोग कहत हतीन अपना सबके अपन देश के हर धरोहर के जोगा के रखे के चाही। मतलब संभाल के रखे के चाही। त जोगा के रखे के मायने भेल संभाल के रखना। झमटगर एकर मायने होइया घना। जेना लोग कहत हतीन अगर गाछ वृक्ष झमटगर होत मतलब घना होत तभी हमरा सबके ओकर छाया तले आराम मिल सकैया। त झमटगर के मायने भेल घना। एगो और शब्द है टेटुआ। एकर मतलब होइया गला। जेना लोग कहत हतीन ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाई के चाही नहीं त टेटुआ दर्द होइ लगैया। मतलब गला दर्द होइ लगैया। त टेटुआ के मायने भेल गला। शब्द सरिता के अंत में एगो शब्द आयल है फिकिर। एकर मतलब होइया चिंता। जेना लोग कहत हतीन हर माता पिता के अपन संतान के हरदम फिकिर लगल रहैया। मतलब चिंता लगल रहैया। त फिकिर के मायने भेल चिंता। ई रहे शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। अखनी अपने शब्द सरिता सुनित रही। एकरा संगे बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया अपने अपन विचार के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल के माध्यम से हमरा भेज सकत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। ईमेल के पता है akashwani.darbhanga@gmail.com। त अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हमरा यानी विजेता सिन्हा के दू अनुमति। एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

अंगना, अभी आप हमारा ये बच्चे का कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख वाचन और निर्माण विजेता सिन्हा का, और प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं शोभा गोटू। आइए सुनते हैं इनका गायन।

उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शोभा गुरटू का गायन। उप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न।

0: का उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी,

0: अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
2: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ

0: सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो।

0: सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो कान लगाकर सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश।
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई

0: साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों, क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।

0: शाबाश। छाई थी घटाघन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मों के गाने।

कार्यक्रम की शुरुआत मेट्रो इन दिनों के इस गाने से। आवाज है पापोन की, गीत को लिखा है मोमिन खान मोमिन ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुन

मिस एंड मजनू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे जोवेंद्र नौटियाल को। सब्बीर अहमद के शब्द थे, तनिष बागची का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं पिंटू की पप्पी। इस फिल्म का ये गीत है हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में रमन रघुवंशी का लिखा ये गीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। इस कार्यक्रम में आपने सुना कुछ नई फिल्मों के गाने। आज आपने सुना मेट्रो इन दिनों, लभियापा, समायरा, लापता लेडीज, मिशन मजनू, पिंटू की पप्पी और तू झूठी मैं मक्कार, इन फिल्मों के गाने। अब आप सुनेंगे रविवार 12 जुलाई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी के संपादित अंश।

0: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगु तूने सिखाई है कि मैं तो बेजुबान था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। भारत विश्व के उन युवा देशों में से एक है जहाँ 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या कुल आबादी की लगभग 54% से भी ज़्यादा है, जबकि 35 वर्षों से कम आयु के लोगों की संख्या 65% के करीब है। मगर बात हुनरमंद श्रम शक्ति की हो तो आंकड़ा विकसित देशों की तुलना में बेहद अफसोसजनक रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह में आज अपना देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें यह चुनौती कतई नहीं है कि देश में कौशल नहीं है, बल्कि चुनौती ये है कि कुशल जनशक्ति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रणाली विकसित कर उसे रोजगार से जोड़ने की जोरदार पहल की जाए। अब सवाल ये है कि क्या विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए हमारे युवाओं में कौशल विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या हम उस लक्ष्य को भलीभांति समझ भी रहे हैं या नहीं? अगर समझ रहे हैं तो क्या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे लेकर चलाई जा रही योजनाओं पर हम कोई अमल भी कर रहे हैं? क्या इन योजनाओं का लाभ हम युवा उठा भी रहे हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं? जन कल्याण और देश हित के कुछ इन्हीं अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद जरूरी विषय पर चर्चा के लिए, आप श्रोताओं को जरूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में कार्यक्रम हेलो जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: कैसे हैं सर, ये बताइए।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
1: बहुत बढ़िया हूँ। और बहुत सारी बातें होंगी युवा कौशल को लेकर, लेकिन एक श्रोता जो जुड़ गए हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: मोहन पासवान, गांव बसंतपुर, जिला दरभंगा, बिहार। ये कैसा है सर
1: जी,
3: कि गांव हो या शहर, राज्य हो या देश, सभी जगह युवाओं की भरमार है।
1: बिल्कुल।
3: युवाओं में किस तरह से कौशल विकास कर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है सर? दूसरा है सर, राज्य देश में तकनीकी कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो कौशल विकास प्राप्त युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलेगा सर, क्योंकि बैंक ऋण नहीं देती है समय पर सर। एक और सर सुन लिया जाए, सर युवाओं के बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक कितने कौशल विकास केंद्र होना चाहिए सर, जिससे मूर्ख और पढ़ा लिखा दोनों व्यक्ति कौशल प्राप्त कर सके सर?
1: मोहन पासवान जी के बहुत सारे सवाल आ गए हैं जो आज इस कार्यक्रम में सवालों के हिस्से में ही हैं सारे सवाल उनके। जी एक और श्रोता जुड़ गए हैं, उनकी भी बात ले ही ले। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: नमस्ते सर, मैं चंद्रेश्वर शाह बोल रहा हूँ, धर्मपुर सिंधी जाने प्रखंड से।
1: चंद्रेश्वर शाह जी, क्या जिज्ञासा है इस कार्यक्रम में?
4: जिज्ञासा सर, देखिए नॉन वाली बात बिजनेस

0: इधर शिक्षित और अशिक्षित दोनों है गाँव में। और शिक्षित के लिए बिजनेस करना तो आसान बात नहीं है और मूर्ख के लिए तो महा आसान बात नहीं है। तो देखिए बैंक में अगर हम साधारण आदमी जाता लोन लेने के लिए तो उनको तो इतना फरमाइश कर देते हैं कि बेचारा कर्ज पूरा कर नहीं पाते हैं ना वो लोन से वंचित रह जाते हैं। कि है सही है सरकार इसमें देते हैं कि भाई गरीबों को हो बिजनेस करने वाले तो उनको लोन दिया जाए लेकिन तो स्टाफ जो है तो सही ढंग से पेमेंट नहीं करता है।
1: जी सर
2: चंदेश्वर शाह जी खास करके बैंक लोन की चर्चा करते हैं। बैंक लोन सहज सरल स्वाभाविक है और युवाओं को बढ़ने के लिए अनिवार्य शर्त है, वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन बैंक के ऊपर एक प्रकार का दबाव है। दबाव यह है कि गुड गवर्नेंस में तो ठीक है कि इसे खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन उसे घाटे में नहीं जाना चाहिए। ऐसे NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सवाल है। सवाल ऐसे है कि बैंक लोन तो दिया जाता है लेकिन जो ग्राहक है, जो कस्टमर हैं, उनकी विश्वसनीयता भी होती है। अगर विश्वसनीयता बनी हुई है उस शाखा के साथ, आपकी साख बनी हुई है, तो आप बार बार लोन ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो बैंक का क्रेडिट देना, बैंक लोन और फिर रिकवरी, ये सवाल है जिसकी वजह से अड़चने आती हैं। फिर भी आप उससे लाइजनिंग करें। मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह भी चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध है।
1: जी जी।
2: और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं जा रही हैं उनको भी
1: लाभ
2: मिल रहा है। दूसरी बात, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, उनके सहयोग से आप जा सकते हैं, बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं।
1: एक सवाल ये है, हमने कहा कि सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना देश है, लेकिन ये जो युवा शक्ति है उसमें स्किल्ड यानी जिनमें कौशल है, जिसमें हुनर है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, क्या कहेंगे आप?
2: सर मुझे लगता है 2-3 चीज़ों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।
1: जी।
2: मसलन हमारे यहाँ अगर 2.3% से ज़्यादा लोग कुशल हैं, अब ये कुशल या कौशल या उनकी विशेषज्ञता, उनकी जागरूकता और समझदारी, दरअसल जो मार्केट है, जो बाजार है और जो युवा उपलब्ध हैं, हमारे पास जो ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट के अनुरूप नहीं है। जो मार्केट की आवश्यकता है, रोजगार कहाँ कहाँ उपलब्ध है? अब
1: एक श्रोता बार बार हेलो हेलो कर रहे हैं। तो
2: सर सर
1: जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी नमस्कार,
1: नाम बताएं अपना।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी बताइए, क्या जिज्ञासा है?
3: मेरी ये जिज्ञासा है जैसे कौशल विकास यो हमारे जो प्रशिक्षण है, तो जैसे कि जैसे जो ब्लाइंड युवा हैं जो जिनने पढ़ाई की है, तो उनके लिए किस तरह से जो है इसका जो है प्रशिक्षण?
1: आपने दिव्यांग की बात की है?
3: जी जी दिव्यांग की बात की
1: है। क्या सर क्या कहेंगे?
2: सवाल ये है कि किस प्रकार की दिव्यांगता है? अगर वह ब्लाइंड हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, किस तरह की दिव्यांगता है उसके आधार पर, और किस प्रकार का कौशल उनके पास है?
1: जी जी
2: ये दो बातें हैं। तीसरी बात है कि वह कहाँ करना चाहते हैं, लोकेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखना होगा, उसके बाद ही वह संभव हो पाएगा कि उन्हें किस तरह की सहायता दी जा सके।
1: उसमें भी क्या है ना कि दिव्यांग है और उनकी जो ब्लाइंडनेस है उसमें वो पढ़ाई उन्होंने की है या नहीं की है।
2: जी जी, क्वालिटी एजुकेशन का क्या
1: है या नहीं है, या फिर वो किसी हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं तो उसमें उनकी कोई विशेषज्ञता है या दक्षता है, ये सारी बातें हैं।
2: स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या किस प्रकार के उद्यमिता चाहिए, किस प्रकार की सहायता चाहिए,
1: तो उसमें भी उसके लिए प्रशिक्षण है।
2: जी जी
1: जी, इसका लाभ उठाया जा सकता है। हर किसी के लिए सुविधाएं सरकार ने दे रखी है। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी कि आज युवा कौशल को लेकर के जो बातें हो रही हैं उसे हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, कुशल और अकुशल,
2: सर
1: ये फर्क क्या है?
2: एक तो जो कुशल क्लेम करते हैं कि उनके पास कौशल है, कॉम्पिटेंट हैं, अगर उनके पास निपुणता है, कार्य कौशल है, इसकी जांच, इसकी परख तो वह संस्था या उद्यम या वह विभाग या वह क्षेत्र या औद्योगिक घराना करता है। अगर उसकी जांच, उसकी पड़ताल की जाती है

0: है तो वो कुशल नहीं पाए जाते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो ये जो गैप है स्किल में, कैपेसिटी में और कैपेबिलिटी में, वह जो दक्षता है, निपुणता है, और हमारे यहाँ एक सोच और है
1: जी।
0: कि हम डिजर्व करते हैं कुछ और क्लेम करते हैं कुछ। तो डिजर्व करना और क्लेम करना
1: दोनों में फर्क है,
0: दोनों में फर्क है। मसलन हमारे यहाँ 67% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह ग्रेजुएट्स का है। ग्रेजुएट्स का 67% जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड है। सवाल है कि उसने किस विषय में ग्रेजुएशन किया और बाजार में उसके लिए जॉब है या नहीं। मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के अवसर हैं। अब हेल्थ में अगर किसी ने BMLT किया, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, तो अगर वह उस क्षेत्र में दक्ष है तो आप देखेंगे किसी भी स्पेशलिस्ट, किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक, कोई एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वे कहते हैं कि इसका ठीक से कॉटेज लगा दो, बैंडेज कर दो, इंजेक्शन डाल दो
1: जी,
0: ये प्रिस्क्रिप्शन है।
1: हुँ.
0: तो वहाँ जो हेल्थ में असिस्टेंस कर सकते हैं, वैसे कुशल BMLT का अभाव है, ANM, GNM ऐसा। और हमारी यूनिवर्सिटी में भी, जैसे ट्रेडिशनल स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब ओरिएंटेड हम किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जी, हम जी। इस तरह के ट्रेनिंग नहीं। दूसरी बात, हमारे कल्चर में और वर्क कल्चर में, सर हमारी संस्कृति में एक है कि अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया तो हमारी संस्कृति ये बन चुकी है कि व्हाइट कॉलर जॉब, साहब बनने की बात। हम नहीं चाहते अपने बच्चे को कि वह स्टार्ट करे। स्टार्ट कहीं से करना चाहिए, वह 35 वर्ष तक, 37 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं, 40 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं, उनको शुरू कर देना चाहिए था। और वो इंडिविजुअल, मैं ये नहीं करता कि जो कॉम्पिटेंट हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो IAS में चले गए, सिविल सर्विसेज में IITN हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनको भी कमतर नहीं मानता हूँ, कहीं भी वो सेवा करें। सो यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर।
1: देखना ये भी होगा ना प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, कि जो युवा शक्ति है
0: सर,
1: उनकी संख्या कितनी है और उसमें से कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ये भी तो बात है ना
0: सर।
1: जो लोग ग्रेजुएट नहीं है या जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की है, जो 10th से नीचे की लेवल में है या जिन्होंने तीसरी चौथी क्लास की परीक्षा देकर पढ़ाई छोड़ दी है, आखिर वो भी तो देश के हिस्सा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी देश के हाथ हैं, हैंड्स ऑफ आवर कंट्री।
0: बिल्कुल,
1: है ना। उन हाथों को अगर काम न मिले, उन हाथों को अगर रोजगार न मिले, उन हाथों में अगर रोटी न हो, तो फिर देश विकसित कैसे बनेगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता भी है और इसी को लेकर उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला देने के लिए। तो उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें युवा शक्ति की तरफ उसी तरह से देखना होगा जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये तो बात है। इस चर्चा के बीच हमारे एक श्रोता भी जुड़ गए। हेलो,
2: नमस्कार सर जी। महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार साहब
1: जी, अपना नाम बता दें।
2: महाकाल सिंह, हनुमानगढ़ राजस्थान से। सर, कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को चालू किया गया, 11 साल पूरा होने वाला है सर। इसके बावजूद भी युवा में पलायन की जो समस्या है वो रुक नहीं रहा है सर।
1: युवाओं में पलायन, ये एक बड़ी समस्या है सर। महाकांत सिंह जी पूछ रहे हैं युवाओं में पलायन नहीं रुक रहा है, जबकि 11 साल से ये योजना जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी गई है
0: जी। मुझे लगता है कि पलायन के दो रूप हैं। पलायन सकारात्मक भी है। सकारात्मक इस अर्थ में है, अगर आपका बच्चा या कोई युवा IITN है तो वह अमेरिका जा सकता है।
1: सही बात है।
0: वह इंग्लैंड जा सकता है, जर्मनी जा सकता है, वह विकसित राष्ट्रों में जा सकता है और वहाँ से फॉरेन करेंसी भी ला सकता है।
1: सही।
0: अगर वह किसी भी आर्ट्स के फील्ड में भी, अगर वह प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो बाहर जा सकते हैं। इसलिए पलायन को मैं केवल निगेटिव सेंस में नहीं देखता।
1: सही बात।
0: अगर आपका बच्चा IAS हो गया तो आपके गाँव में थोड़े IAS रहेंगे, वो तो बाहर जाएंगे। पलायन का दो पक्ष है, बल्कि सर बायोलॉजी में ये कहा जा सकता है जो माइग्रेटरी बर्ड है वो उम्दे किस्म का है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो पलायन का एक पॉजिटिव पक्ष भी है। अगर आपके बच्चे इनकॉम्पिटेंट,
1: लेकिन प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी,
0: सर, सर
1: सवाल तो ये भी है ना कि पलायन की वजह क्या है।
0: पलायन बेहतर जिंदगी के लिए लोग बाहर जाते हैं। कारण यह है कि

0: हमारा जितना प्रयास है।
1: मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम युवाओं का देश कहते हैं ना
0: सर,
1: तो ये गांवों का भी देश है।
0: बिल्कुल।
1: और गांव अगर समृद्ध नहीं है तो देश समृद्ध कैसे होगा?
0: हाँ, या ये
1: और गांव की समृद्धि में ये पलायन क्या रोड़ा नहीं है, ये सवाल है।
0: सर, गांव भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। सर, हमारा ग्रामीण जीवन स्वर्ग से सुंदर हो सकता है, लेकिन हमारे दादाजी अकेले थे, 25 एकड़ की जमीन थी
1: जी,
0: और 5 भाई हो गे, तो 5 तो फिर 5 एकड़ पर चला आया, और उसके बाद 3, तो फिर वह तो एकोमोडेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए प्लान तो अवश्यंभावी है
1: जी।
0: अब उनको ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, क्वालिटी एजुकेशन और जो हुनर है, जैसे हुनर है तो आपको कद्र, आपको सम्मान मिलेगा। ये तभी संभव हो सकता है जब आप उस हुनर को एक्वायर करें। हुनर में बाधा क्या आ रही है? हमारे गांव में ये कहा जाता है, अरे उनका बेटा तो यही करता है, यह जो सोच है, इसलिए उत्पादकता घट जाती है।
1: सही बात।
0: इसके लिए मैं कहता हूं, अगर गुजरात में डेयरी इंडस्ट्री चलती है तो वहां सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन मिथिला में माफ करेंगी माता और बहनें, उनका डेयरी में मिनिमम योगदान है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में डेयरी इंडस्ट्री का ओनर, मालकिन वहां की महिलाएं, और वो समृद्ध है। तो वर्क कल्चर को टाइम एंड स्पेस के हिसाब से देखें।
1: सही बात है।
0: मैंने देखा कि हमारे गांव के कुछ बच्चे जो दिल्ली गए इसलिए कि अपनी इनकम को बेहतर करें, आमदनी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वे वहां से बीमार होकर आ गए, और बीमार में फिर उनका इलाज यहाँ करवाना पड़ा, फिर वे स्वस्थ हुए, फिर गए, फिर कर्ज में डूबे। तो इस तरह से मैंने देखा कि वहां जाने से बहुत अच्छा लाभ हुआ ऐसा नहीं, बल्कि बिहार के कृषि में
1: जी
0: आज श्रमिकों का संकट है। और आप घर पर देखो, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, एक ग्रेजुएट सर दिन भर में 1000 रुपया नहीं कमा सकता, लेकिन मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि एक ट्रैक्टर का ड्राइवर दिन भर में 1000 रुपये कमाकर आ जाते हैं। और आप अपने कंपाउंड में, अपने कैंपस में किसी फिजिकल, देखिए कार्य तो दो ही प्रकार के होंगे
1: जी,
0: या तो शारीरिक करिए या मानसिक। अब आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आप हैं नहीं, हमने कहा इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट कर दो तो वो लेटर नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हैं।
1: सही बात है।
0: हमने कहा कि बागवानी कर दो तो बागवानी भी नहीं करेंगे।
1: एक श्रोता जुड़ गए।
0: सर, सर,
2: जी सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बताइए कौन बोल रहे हैं?
2: सर, मैं देख रहा हूँ आज बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार के छात्र बड़ी संख्या में बिहार से बाहर जा रहा है
1: जी।
2: राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर होने के नाते ऐसा कौन सा नीतिगत शिक्षक पहल होनी चाहिए जिससे युवा को अपने ही राज्य में गुणवत्ता शिक्षा और रोजगार मिले?
1: अपना नाम बता दें।
2: सर, मेरा नाम नागमणि हुआ, मैं केवसी गढ़वाल से बोल रहा।
1: नागमणि जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। चलिए, आपका सवाल आ गया है, सर क्या कहेंगे आप?
0: नागमणि जी का प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, क्वालिटी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई सीमा नहीं है।
1: सही
0: तो,
1: बात है,
0: वो तो असीम है। दूसरी बात है कि आप अगर युवा हैं तो आप चयनित कर दें।
1: एक और श्रोता जुड़े हुए। जी नमस्कार, हेलो।
3: जी नमस्कार, हम अरुण कुमार लाल दास सुंदरपुर जिला दरभंगा से बोल रहे हैं।
1: अरुण कुमार लाल दास जी, स्वागत आपका हेलो जिंदगी में, बताइए क्या जिज्ञासा है?
3: हाँ देखिए, मेरा प्रश्न ये है
1: जी,
3: है ना
1: जी,
3: कि दरभंगा के अंदर युवाओं में जो कौशल विकास योजना के लिए कहाँ कहाँ केंद्र खुला हुआ है, जहाँ जहाँ युवा लोग जो है जा करके कौशल विकास संदर्भित जानकारी लें या ट्रेनिंग पाएं?
1: जी, एक कार्यालय दिल्ली मोड़ के पास है, हम समझते हैं वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर स्किल इंडिया के लिए जो वेबसाइट है उस पर हर जिले के लिए कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, प्रखंड विकास का जो कार्यालय है वहाँ पर सारी योजनाओं के लाभ के तौर पर, आप सिर्फ योजनाओं के बारे में ही नहीं बल्कि श्रमिक जो हैं अकुशल, कुशल श्रमिक के निबंधन की भी बात हम करेंगे इस कार्यक्रम में, ये सारी जानकारी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। एक टोल फ्री नंबर के लिए चर्चा कर रहे थे बिहार कौशल विकास मिशन को लेकर के, 1800-116-090, इस नंबर पर चाहें तो आप, ये टोल फ्री नंबर है, इस

0: पर भी फ़ोन कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर जॉब को लेकर रोज़गार परक उसकी चिंता हम करें कौशल विकास मिशन के तहत, तो फिर DETJOB.bihar.gov.in इस पर भी जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ये भी बातें, दोनों फायदे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, सुविधाएँ तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन है जिसमें कुशल युवा समृद्ध युवा का संकल्प है। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार की चर्चा जब चल पड़ी है तब हम ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का भी मूर्त रूप बिहार में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, रोजगार की राह को लेकर के भी बहुत सारी योजनाएँ हैं बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि कदम बढ़ाएगा कौन? जो भी जिज्ञासु हैं, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ना होगा और देखना होगा, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति
1: सर्वाणी कार्याणी नौचा मनोरथे।
0: क्या कहेंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी?
1: साहब, ये तो खुद एक बार कहा जाता है कि कुआं प्यासा के पास क्यों नहीं पहुंच गया, लेकिन इसका साथ सरकार से भी गुजारिश हो सकती है या हम लोग मांग कर सकते हैं सिविल सोसाइटी की ओर से कि हरेक पंचायत में, हरेक प्रखंड में इस तरह के सूचना केंद्र की आवश्यकता है और इसे प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम को भी पंचायत तक जाने की जरूरत है, जहाँ हजारों की तादाद में नागरिक हैं तो वहाँ एक एक एक बैंक की शाखा और इस तरह की जो वित्तीय सहायता और ये प्रशिक्षण केंद्र, इस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। इस लिहाज से मैं तो अरुण कुमार जी का समर्थन करता हूँ। लेकिन यह जागरूकता और सजगता तो नागरिकों में चाहिए ही कि हमारा केंद्र कहाँ है या उसका वेबसाइट कहाँ है
0: जी,
1: या उसका लिंक कहाँ है या किन व्यक्तियों को हम पकड़ें जहाँ से हमारा काम बन सकता है, तो ये नागरिकों की चेतना में ही अंतर्निहित है जी। शिक्षा क्षेत्र में मैं लगभग 3 दशक से अधिक काम किया। मैंने देखा कि वहाँ जो हमारे बच्चे आते हैं वह भी विषय के चयन में, एक तो जो अभिभावक हैं वे उतने प्रशिक्षित या शिक्षित नहीं हैं
0: जी,
1: उनको शिक्षा का, उनमें शिक्षा का अभाव है। जैसे सूबे बिहार में 17.4% लोग ही ग्रेजुएट्स हैं
0: जी जी।
1: कोई कॉल है?
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: सर नमस्कार जी, मैं सुजीत पासवान
0: जी। सुजीत पासवान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: के जाले प्रखंड का रहने वाला हूँ मैं
0: जी। हाँ,
2: और ललित नय मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी मैं PhD कर रहा हूँ
0: जी,
2: रिसर्च स्कॉलर।
0: सर
2: आज का जो प्रोग्राम है हेलो जिंदगी
0: जी,
2: इसमें कौशल युवाओं के लिए जो मतलब प्रोग्राम रखा गया है
0: जी,
2: इसमें बिहार सरकार के द्वारा KYP और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PMKVY चलाया जा रहा है
0: जी। हाँ जी हाँ,
2: इसका मैं जमीनी स्तर पे मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ सर।
0: अच्छा,
2: ये सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है या इसके लिए सरकार मतलब कुछ करेगी?
0: प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, सरकार की योजनाएं तो हैं, सुजीत जी बता रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे आप?
1: अगर जमीनी स्तर पर वह योजना दिखाई नहीं पड़ती है तो उसके 2 कारण है। एक तो कि लोगों में चेतना का अभाव, और दूसरा कि आपने कोई सर्वे नहीं किया, सर्वेक्षण नहीं किया कि कितने लोगों का इसका लाभ मिला। जैसे कुशल युवा कार्यक्रम जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है वह 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, और स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड भी है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो ये आंकड़े आपको देखना होगा कि कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को मिल सकता है।
0: सही,
1: तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी संख्या कम है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं
3: जी। सर मेरा नाम रमन कुमार है
0: जी। रमन कुमार जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: सिडविलपुर गांव बहादुरपुर प्रखंड जिला दरभंगा से
0: जी। रमन कुमार जी, जिज्ञासा क्या है ये बताइए।
3: सर जिज्ञासा ये है कि हमारे क्षेत्र में कौशल युवा केंद्र है, लेकिन वहाँ पर में जो सिस्टम है कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर का जो प्रोडक्ट सब है वो सब काफी मतलब क्षतिग्रस्त है, तो उसको कोई देखने के लिए नहीं आता है, और जो कंप्यूटर के ऑपरेटर है वो भी मनमाना फीस लेता है।
0: क्या कहेंगे आप, इनके केंद्र में कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहे हैं कौशल युवा केंद्र में?
1: ये सब हो सकता है कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो। बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटर

0: और सपोर्ट के लिए, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट के लिए एक सिस्टम है जो उसे सपोर्ट करता है, समर्थन प्रदान करता है। तो वो देखना पड़ेगा कि वहाँ कौन लोग हैं।
1: जी जी, हम इकाई बनाएंगे तो दहाई बनेगा।
0: दो तीन आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 15-16 में 19 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई।
1: सही बात है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना,
0: जी जी,
1: अभी हमने कहा था ना कि बढ़ई का काम करने वाले लोग, लोहार का काम करने वाले लोग जो अकुशल हैं उनको कुशल दर्जा देने के लिए विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बिहार में पीएम सेतु योजना है, कितने योजना हम गिना दें आपके लिए, डोमेन स्किलिंग बिहार कौशल विकास मिशन के तहत उसके लिए भी योजना है। इसके लिए जो है संपर्क करने के लिए चाहें तो आप अपने केंद्र पर जाएं या फिर जो टोल फ्री नंबर हमने बताया है 1800-296-5656, ये एक नंबर है, उस पर भी करियर को लेकर के सूचना के का केंद्र है ये, वहाँ भी ले सकते हैं। चलते चलते क्या संदेश देंगे आप?
0: सर, मुझे लगता है कि अक्सर मैं छात्रों से कहा करता हूँ कि दो शैली है, एक है कि चिंतन शैली और दूसरा है कार्य शैली। आप थॉट वेज एंड वर्क वेज, अगर आप थॉट वेज एंड वर्क वेज दोनों में परिवर्तन चाहते हो, चिंतन शैली और कार्य शैली को बदलते हो, तो आपके जीवन में बदलाव संभव है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप यथास्थितिवादी खुद हैं तो परिवर्तन असंभव है। दूसरी बात, युवाओं में तीव्रता के साथ जल्दी जल्दी मतलब हड़ी, हम अभी अभी अरबपति बन जाएं।
1: तो ये कहते हुए कि आज की हेलो जिंदगी का विषय था युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, बतौर विशेषज्ञ प्रोफेसर भुवनेश्वर यादव जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये कहते हुए विदा लेते हैं कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद, मुझे संजय को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जिंदगी के संपादित अंश। ये संपादित अंश 12 जुलाई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी से था। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचारों के लिए।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और

ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की।

आज के शेष मुख्य कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संकेत। रात्रि 10 बजे समय होगा एक फनकार कार्यक्रम का, इंग्लिश टॉक। ये आपको हम सुनवाएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित करके 9:45 पर, और 9:30 पर सर्वभाषा का कार्यक्रम विविधा सुनेंगे आज आप। भेंट वार्ता डिजिटल युग में।

अभिनय की कला, अवसर, चुनौतियां और भविष्य। भेंट वार्ताकार होंगे अंजनी कुमार झा, प्रस्तुति होगी असद दाऊद की। सिंगरहार आप सुनेंगे 8:15 से, फिल्म संगीत 7:52 से। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:30 पर। खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7:00। चर्चा का विषय रहेगा खरीफ सूर्यमुखी की खेती। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नव ऊर्जा। चर्चा अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम। समय होगा 6:30 गांव घर के अंतर्गत। 6:25 मैथिली संवाद का समय होगा। 6:10 पर सुनेंगे विद्यापति की। फिल्म संगीत 5:40 से, और 5:00 से सुनेंगे तरुण कुसुम युववाणी के अंतर्गत। ये कार्यक्रम हम आपको आज सुनवाएंगे सभा के आरंभ में। ये जानकारियां थी दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म 10 का देशभक्ति गीत। उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक सेर्जो की आवाजी होगी। 1:15 समय होगा फिल्म संगीत का। प्रादेशिक समाचार 2:00 से प्रसारित किए जाएंगे। 2:05 पर समय होगा इलाकाई खबरों का। रोजगार सूचना हम आपको पहुंचाएंगे अब तक 2:10 पर। 2:15 समय होगा दोपहर समाचार का। फिल्म संगीत का एक बार पुनः आप आनंद लेंगे 2:30 से। बज्जी का लोकगीत हर मंगलवार को हम आपको सुनवाते हैं। आज भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। समय होगा दोपहर 3:00। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुनते हैं हमारे सभी कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल हैंडसेट पर, और यदि रेडियो पर आप हमें सुनते हैं तो मीडियम वेव में 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब समय हो चला है देशभक्ति गीत का।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। देशभक्ति गीत का प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। आइए आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संगीतकार मदन मोहन के द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ सदाबहार गाने। मदन मोहन संगीतकार, महान संगीतकार थे हमारे भारतीय हिंदी सिनेमा के, और आज उनकी स्मृति है तो उस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आज दो दो विभूतियाँ हिंदी सिनेमा की जिनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि हम लोग मना रहे हैं, मदन मोहन और रोशन। इन दोनों ही के गाने हम आपको सुनवाएंगे आज अपने दोनों ही कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं इस अंक में मदन मोहन द्वारा संगीत निर्देशित फिल्मी गाने। इसकी शुरुआत हम करते हैं फिल्म नीला आकाश के इस गाने से, जिसे आवाजें दी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, और संगीत जैसा कि हमने कहा कि आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे

अरे ओ सुख कलियों, मुस्कुरा देना वो जब आए। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी महेंद्र कपूर की। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ सदाबहार गाने। मदन मोहन की पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म लैला मजनू से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर का लिखा ये गीत है, संगीत निर्देशन एक बार फिर से मदन मोहन का।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं मोबाइल हैंडसेट पर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से। इस ऐप से आप हमारे सभी केंद्रों के कार्यक्रमों को सुनते हैं, साथ ही साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए न्यूज ऑन AIR यानी न्यूज ऑन एयर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे केंद्र पर सर्च करेंगे और फिर आनंद ले पाएंगे हमारे सभी कार्यक्रमों का। फिलहाल हम जुड़ते हैं हमारे पटना केंद्र से समाचारों के लिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उन आवेदकों की समस्याएं सुनी जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मिले समाधान से संतुष्ट नहीं थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की ओर से रेखा गुप्ता, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मानवी शामिल है। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

0: जिसके तहत लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। न्यायालय ने राजद अध्यक्ष की लंबित आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय को 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। एजेंसी ने बताया कि उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉग इन करके अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने चिन्हित उत्तरों की तुलना स्कैनर द्वारा पढ़े गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। एजेंसी ने कहा है कि चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज किशनगंज, अररिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से 3 अपराधियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। खगड़िया पुलिस ने ₹25,000 के इनामी अपराधी सतीश यादव को गोगरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। भागलपुर जिले के जमालदीपुर गांव स्थित विश्वकर्मा चौक के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इधर सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र स्थित बजरंग चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 के कुल पदों पर कुल पदों की संख्या है 1829। इन पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 14/7/2026, यानी आज ही से आवेदन शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि रहेगा 3/8/2026। उम्र सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष की है। ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in है। JKSSB कुल पदों की संख्या है 130। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026। आयु सीमा अधिकतम 40 साल। ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in। BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया में कुल पदों की संख्या है 789। आवेदन शुरू होने की तिथि 30/6/2026 थी और अंतिम तिथि होगी 20/7/2026। आयु सीमा है 25 साल से 45 साल। ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB टेक्निकल एग्जामिनेशन 2026 के

लिए कुल पदों की संख्या 6557 पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026 थी, अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच है। इसके लिए आप आरआरबी के वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार सूचना समाप्त हुई।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक, रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर।
1: अब हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सास में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
3: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य

0: निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज़ जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

टाइन पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि

0: कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा

0: से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं संगीतकार रोशन द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ सदाबहार गाने। संगीतकार रोशन जिनकी आज जयंती है, उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हुए उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गाने आप तक पहुंचाते हैं, जिसकी शुरुआत हम करते हैं दिल ही तो है। इस फिल्म के गीत से आशा भोसले और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, संगीत रोशन का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था रोशन के संगीत निर्देशन में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार रोशन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गाने। रोशन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसे लिखा साहिर लुधियानवी ने, आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है ताज महल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया दिल ही तो है, दादी माँ, ममता और ताजमहल। साथ ही साथ ये अंतिम गीत था फिल्म अनोखी रात का। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना संगीतकार रोशन द्वारा संगीतबद्ध किए फिल्मी गानों को। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए बज्जिका लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया कृष्ण कुमार श्याम, अरुण कुमार अकेला और ब्रजेश कुमार सुमन के गाए बज्जी का लोकगीत। बज्जी का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबे वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: मीडियम वेव 231.5 अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है,
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं, और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना, कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे, और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब

0: शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत में सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन

0: से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है यानी कि दावा आपको लेना है तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: नाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में, प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा।

0: और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहां पानी पूरी खिलाया जाता है ना वहां लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बात ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक

0: मीठी चीजों की बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं। और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहां बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठा तो क्यों ना घर में ही वो उपयोग कर लिए जाएं और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी
1: उदाहरण देकर
0: समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी कि बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, नला ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई।

0: आई जॉइन द थिंग, मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा,
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
0: का। हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा,
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी, तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा,
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार
1: जी, जी।
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है।
1: अच्छा, एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं इस रोल के बारे में, क्या बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है
1: जी, जी, जी।
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी।
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा,
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक, अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा,
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा सर बड़ी एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: अच्छा,
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं, तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे, मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना, नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे, लाइक ठीक है छोड़ यार, मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए, मैंने बोला सर एक पॉइंट है, बोले हाँ बोलो, ना ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है, उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है
1: जी जी,
0: इज अ कैप्टन ऑफ द शिप,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी बोला हाँ गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
1: यस यस,
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए, आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे, आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है,
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है
1: जी जी जी।
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं कोई इसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: है, बहुत जरूरी है।
1: हाँ,
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी भी वही हुआ
1: जी,
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं, और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते हैं कि, तो उस पर मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
1: हाँ,
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है वो, महात्मा बोल रहा है
0: मतलब, हाँ, जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोल, अरे करना यार काइंड ऑफ, तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो थोड़ी, मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है, ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है, और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके

0: उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है। बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। So this is what how it happens.
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा।
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है
0: शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म
1: थी। अच्छा।
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो चार साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त थे। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ।
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा।
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता, और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।

0: लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है, तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ
0: जी।
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय
0: जी, जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनालिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा,
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके,
1: अगर कोई चीज एक शब्द बोला है उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो जी, एक छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा। और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी,
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग।
0: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं
0: जी,
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं।
0: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम दे जाती है।
0: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
1: तुरंत आना, यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया
0: जी,
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया
0: जी।
1: तो ये चीज जो है जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और मैं एंजॉय करता हूं डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राज

0: संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे, तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान
0: हाँ
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी
1: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खन थे,
0: जी
1: उनका एक एडवेंचर विलेज है,
0: हाँ
1: वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
0: हाँ
1: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
0: अच्छा
1: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
0: अच्छा
1: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ तो मैंने वो डेवलप की कहानी।
0: अच्छा
1: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: लाइट कॉमेडी है।
0: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
0: हाँ
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ,
0: जी
1: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी जी
1: जो शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
0: अच्छा
1: IPC 324, और वो जरूर बगल में। पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी
1: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
0: हाँ
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है,
0: जी जी
1: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह क्या बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे का मा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
0: जी जी
1: बड़े खूबसूरत तरीके से, हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
0: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए

0: सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया.
0: अच्छा.
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराये हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे. और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई.
0: अच्छा.
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है.
0: जी,
1: जब
0: जी.
1: तक जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब.
0: अच्छा.
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक है
0: जी.
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब. तो वो कैरेक्टर मुझे आया, हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ. फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं.
0: अच्छा.
1: उनको अच्छा लगा और उनको थोड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने. मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टॉवरिंग दिखेगा? नहीं नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाएंगे. तो मैंने बोला ठीक है. मैंने सोचा कि वैसे मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं.
0: अच्छा.
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं.
0: बिल्कुल.
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे.
0: बिल्कुल.
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली. आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क. हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है. सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था.
0: जी जी जी.
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे.
0: अच्छा.
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी, जी.
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है. तो वो बड़ा अच्छा लगा. फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में.
0: क्या बात.
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s.
0: अच्छा.
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी.
0: अच्छा.
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी. और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा. अच्छा, दिखाएंगे.
0: अच्छा.
1: और कैरेक्टर अच्छा था. जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था. और हाँ. मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
0: जी जी,
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ? क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो?
0: अच्छा.
1: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं.
0: हाँ.
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा. लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स हो सकते हैं जी.
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे. तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है.
0: अच्छा.
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर. मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था.
0: हाँ.
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने फांसे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी.
0: जी जी.
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है. इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए. तो ये सब चीजें ऑन बेसिस. तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
0: जी,
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे.
0: अच्छा.
1: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला. एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
0: जी.
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल.
0: अच्छा.
1: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था. बरसाते बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही.
0: जी जी. दैट वे. क्या बात है. कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
1: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत चाहता वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव. जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो. लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा

0: जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था यूं ही चला चल रही।
1: हाँ, मकरंद देशपांडे
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: उन पर वो फिल्म आया,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी, जी,
0: और ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है, जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर की इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन। और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी,
1: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी

0: कर पाए।
1: अच्छा
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
1: जी
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे।
1: जी
0: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूं, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर।
1: जी
0: मैंने वागले के बाद में, अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
1: जी
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
1: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
1: जी जी
0: बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी
0: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था,
1: अच्छा
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
1: ओहो क्या बात है।
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर किनले दुश्मन ध्यान से,
1: हाँ
0: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से,
1: वाह वाह,
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूं इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना
1: यही
0: ही
1: गाना सुन
0: बहुत
1: लेते
0: एप्ट
1: हैं।
0: होगा कि
1: बिल्कुल
0: हम जब
1: बिल्कुल
0: जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जी जान से लड़ते हैं,
1: जी
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो आपको भी मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती है वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी
0: जी।
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। हाँ। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूं
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो,
0: बट
1: ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी जी,
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहां इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ,
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं।
0: ओ
1: तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 female, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह।
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी,
0: जी
1: और शंतनु रोड़े।

0: जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया. ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया. बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊ कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए. और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
1: जी, जी, जी.
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे.
1: क्या बात,
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है. अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा. तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं.
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं.
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग. ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं. तो स्ट्रगल स्मार्ट मैं ना भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया strugglesmart.com कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो.
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो. संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है.
1: हाँ,
0: पॉजिटिव बात है
1: इसमें. कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है.
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही. लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे. जैसा मैंने कहा कि तीन चार साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है. इट इज विथ मी.
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है.
1: जी जी.
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूं और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम. विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं. और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं. मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से. और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं. और यहां हम कोई गाना सुनते हैं.
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहां पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले.
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ. आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो.
1: हाँ,
0: और सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है. लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे.
1: हाँ,
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं
0: है. महत्व नहीं है. तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास.
1: हाँ, हाँ.
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा. शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा.
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं. तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया.
1: जी जी जी.
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग.
1: ओहो.
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए.
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था.
1: क्या बात, क्या
0: बाकी
1: बात?
0: संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है. वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे. तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है.
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है. आइए सुनते हैं
0: जी.

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं कुछ लोकगीत।

अभी आप अरविंद कुमार झा के स्वर में ये भगवती गीत सुन रहे थे। अब सुनिए संत कुमार झा के स्वर में।

अभी आप विभा सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे और अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ लोकगीत सुन रहे हैं। अब सुनिए वंदना सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इस संदेश के बाद हम आपको पुनः फिर सुनवाते हैं लोकगीत अरविंद कुमार झा एवं ओम प्रकाश सिंह के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब सुनिए श्री अरुण देव झा के स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी आप श्री अरुण देव झा के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर

0: 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
1: अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। इसी गीत के साथ आज के युवानी कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है कुछ नए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं बैड बॉय फिल्म का यह गीत। गायक कलाकार हैं शान, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है और बोल हैं सवीर अहमद के।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

अब सुनिए आर्टिस्ट फिल्म का यह गीत। गायक कलाकार हैं अनिर्बन रॉय, बोल हैं निशांत सिंह के और संगीत निर्देशन सुरेश बोवली का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म यारिया 2 का यह गीत सुनिए, अरिजीत सिंह एवं मनन भारद्वाज की आवाज में। बोल मनन भारद्वाज के हैं और संगीत निर्देशन भी मनन भारद्वाज का है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

0: विज्ञापन संदेश से पूर्व आप सुन रहे थे यारिया टू का यह गीत अरिजीत सिंह एवं मनन भारद्वाज की आवाज में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजे नहीं वाले हैं अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा

0: फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:52 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार रात्रि 8:15 पर प्रसारित किए जाएंगे।

विविधा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, तथा इंस्पायरिंग वॉइस आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर। एक फनकार कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किए जाएंगे और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम। विषय होगा संत कबीरक भजन। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का होगा। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। 6:10 पर आप सुनेंगे वंदना कार्यक्रम। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम 7:05 पर प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन में 9:10 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दिन में 10:00 तथा लोकगीत आप सुनेंगे 10:30 पर। दिन के 11:00 हमारा समय होगा शास्त्रीय संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 12:00। बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार दोपहर 12:30 पर। देशभक्ति गीत आप सुनते हैं दोपहर 1:10 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे 1:15 पर तथा इलाकाई खबरें आप सुनेंगे दोपहर 2:05 पर। रोजगार सूचना 2:10 पर प्रसारित किए जाएंगे। पुनः फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 2:30 पर। सुगम संगीत अपराह्न 3:00 प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:00 आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। विद्यापति गीत संध्या

6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा गांव घर कार्यक्रम 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। खेती गृहस्थी आप सुनेंगे 7:00। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहा रात्रि 8:15 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। लोक माधुरी कार्यक्रम रात में 10:00 प्रसारित किए जाएंगे तथा 10:30 पर आप सुनेंगे गीतों के रंग कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं समवेत स्वर में ये विद्यापति गीत।

0: अभी आप समवेत स्वर में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अब सुनिए रामकुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत।

अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे, कलाकार थे राम कुमार मल्लिक। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में है।

राज्य स्तरीय सहयोग शिविरक शुरूआत कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन मे एहि कार्यक्रमक शुभारंभ कयलनि। मुख्यमंत्री ओहेन आवेदक लोकनिक समस्या सुनलनि जे जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम मे भेटल समाधान सँ संतुष्ट नहि छलाह। संगहि ओ अधिकारी लोकनि के समस्या के शीघ्र समाधानक निर्देश देलनि। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ बिजेन्द्र प्रसाद

0: भेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन मे एहि कार्यक्रमक शुभारंभ कयलनि। मुख्यमंत्री ओहेन आवेदक लोकनिक समस्या सुनलनि जे जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम मे भेटल समाधान सँ संतुष्ट नहि छलाह। संगहि ओ अधिकारी लोकनि के समस्याक शीघ्र समाधानक निर्देश देलनि। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आ राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल सहित कतेको वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह। राज्य स्तरीय सहयोग शिविरक आयोजन हरेक मासक दोसर मंगल दिन के कयल जायत। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक लेल कुल 26 उम्मीदवार लोकनिक नामांकन वैध पाओल गेल अछि। प्राप्त जनतबक अनुसार आई नामांकन पत्रक जांच मे 14 उम्मीदवार लोकनिक पर्चा निरस्त कऽ देल गेल। जनशक्ति जनता दलक वीणा मालवी के नामांकन सेहो निरस्त भऽ गेल अछि। उपचुनावक लेल कुल 40 उम्मीदवार लोकनि अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयने छलाह। प्रमुख उम्मीदवार सभ मे एनडीए के दिस सँ भाजपाक नीरज कुमार, राजद सँ रेखा कुमारी आ जन सुराज पार्टी सँ प्रशांत किशोर सम्मिलित छथि। प्रत्याशी 16 जुलाई धरि नामांकन आपस लऽ सकैत छथि। एकर बाद उम्मीदवार लोकनि के चुनाव चिन्ह आवंटित कयल जायत। उपचुनावक लेल मतदान 30 जुलाई के होयत। मतक गिनती 3 अगस्त के कयल जायत। सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला के एक मामला में राजद अध्यक्ष लालू प्रसादक जमानत निरस्त करबा सँ मना कऽ देलक अछि। सीबीआई लालू प्रसादक जमानत निरस्त करबाक लेल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कयने छल। संगहि अदालत झारखंड उच्च न्यायालय के ओहि आदेश में सेहो हस्तक्षेप करबा सँ इनकार कऽ देलक जकर अंतर्गत लालू प्रसाद के जमानत भेटल छल। अदालत राजद अध्यक्षक लंबित आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय के 6 मासक भीतर सुनवाई पूरा करबाक लेल कहलक अछि। ई मामला देवघर कोषागार सँ अवैध निकासी के अछि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षाक ओएमआर शीट आ रिकॉर्ड कयल गेल उत्तर जारी कऽ देलक अछि। एजेंसी जनौलक जे अभ्यर्थी एनटीए के वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपन आवेदन नंबर सँ लॉग इन कऽ अपन ओएमआर शीट आ उत्तर देख सकैत छथि। परीक्षार्थी अपन चिन्हित उत्तरक तुलना स्कैनर द्वारा पढ़ल गेल उत्तर सँ कऽ सकैत छथि। जँ परीक्षार्थी ओहि उत्तर सँ संतुष्ट नहि होइत छथि तऽ ओ प्रश्नक चयन कऽ अपन चुनल गेल विकल्प पर निशान लगा सकैत छथि आ 200 टाकाक शुल्कक भुगतान कऽ चुनौती दऽ सकैत छथि। एजेंसी स्पष्ट कयलक अछि जे चुनौती सही पाओल गेला पर शुल्क आपस कऽ देल जायत। ओएमआर चुनौती सुविधा एहि मासक 15 तारीख धरि उपलब्ध रहत। मॉनसूनक सक्रियता सँ प्रदेश में लगातार वर्षा भऽ रहल अछि। पछिला 24 घंटा के दरमियान राज्यक उत्तर पश्चिमी हिस्सा में भारी वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पश्चिम चंपारण जिलाक चनपटिया में सबसँ बेसी संभावना अछि। नेपालक जलग्रहण क्षेत्र में भऽ रहल भारी वर्षा के कारण गंडक, बागमती, कमला बलान आ कोसी नदीक जलस्तर में लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि। गंडक नदीक जलस्तर गोपालगंज में खतरा के निशान सँ 1 सँ 2 सेंटीमीटर ऊपर चलि गेल अछि। बागमती नदी रून्नी सैदपुर में लाल निशान सँ लगभग 100 सेंटीमीटर, कमला बलान झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर आ कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा में 113 सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि। ओतहि महानंदा, परमान आ अधवारा समूह के नदी सभक जलस्तर में सेहो वृद्धि देखल जा रहल अछि। एम्हर हमर सहरसा संवाददाता जनौलनि जे जिलाक बनमा इटरी प्रखंड अंतर्गत सहोरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी के जलस्तर बढ़ला सँ राम पोखर आ भेड़हा गामक संपर्क मुख्य मार्ग सँ पूर्ण रूपेण कटि गेल अछि। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में 4 पुलिसकर्मी के निलंबित कऽ देल गेल अछि। जाहि पुलिसकर्मी लोकनिक विरुद्ध कार्रवाई कयल गेल अछि ओहि में 3 ASI आ गृह रक्षा वाहिनीक 1 जवान सम्मिलित छथि। शिवहर स्थित यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार के पुलिस 1,96,000 टाका के धोखाधड़ीक मामला में गिरफ्तार कयलक अछि। खगड़िया पुलिस 25,000 टाकाक इनामी अपराधी सतीश यादव के गोगरी थाना क्षेत्र सँ गिरफ्तार कऽ लेलक अछि। ओ कतेको समय सँ फरार चलि रहल छल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: विशेषकर जे अल्पसंख्यक युवा लोकनि छथि, एहि लेल प्रधानमंत्रीके जे नव 15 सूत्री कार्यक्रम अछि एकटा व्यापक कल्याणकारी योजना अछि, जकर उद्देश्य अछि कि देशके जे 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक छथि, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकासके सुनिश्चित केने। एहि कार्यक्रमके अंतर्गत योजनाके बजटके 15% हिस्सा जे अछि ओ अल्पसंख्यक लोकनिके लेल जैसे लक्षित कयल गेल अछि। एकरा 4 प्रमुख श्रेणीमे विभाजित कयल गेल अछि, शैक्षणिक अवसरके बढ़ाना, एकीकृत बाल विकास सेवाके समान वितरण और इस्कूली शिक्षा जेहन जेना होइयाके सर्व शिक्षा अभियान ओकरा बेहतर केने, हुनका तक पहुँच, उर्दू भाषाके शिक्षकके नियुक्ति, मदरसाके आधुनिकीकरण, मेधावी छात्रक लेल छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कमिस, और मौलाना आजाद विकास
1: जे छै समुदाय सब छथि जेना ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ई सब जते भी समुदायके छथिन सब हुनका समाजक मुख्य धारामे एकीकृत करब, हुनका लोकनिके शैक्षणिक आओर रोजगारके अवसरमे बढ़ोतरी सङ्ग जीवन स्तर हुनकर सुधारैके ई सरकारके प्रमुख योजना यऽ। आओर देखियौ गोपी भाई, ई निश्चित तौर पर ने देखू जे जखन सभक साथ, सभक विकास आ सभक विश्वास सङ्गे ने पूरा समाज आगू बढ़त, जखने समाज आगू बढ़त तखने देश आगू बढ़त।
0: देखियौ हमर सबके जे समाज अछि ओ समावेशी समाज अछि, एहिमे अहाँके छै से एतेक विविधता यऽ, मुदा छै जे विविधताके बीचमे एकता अछि, बुझलहुँ, आओर एकता तखन होइए जखन परस्पर सहयोग, परस्पर विश्वास पर आ परस्पर तालमेल रहै। आब अहाँके शैक्षणिक अवसरके जे विकास कहलियै ओहिमे जीवन स्तरमे सुधारमे अछि, ग्रामीण आवास योजना जेना प्रधानमंत्री आवास योजनाके समान लाभ सुनिश्चित केने, सुरक्षित पेयजल, साफ सफाइ और आन जे बुनियादी ढांचा परियोजना अछि ओहिमे अल्पसंख्यक लोकनिके लेल अहाँके उचित हिस्सा देने, आ सङ्गे सङ्ग जे अछि कि आर्थिक गतिविधि और रोजगारमे भागीदारीमे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगमके माध्यमसँ रियायती दर पर ऋण उपलब्ध

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हाँ, अखन प्रोमो से पहने अपना सब अरविंद कुमार झा से सुंदर स्वर में जननी है कतेक भेलों अपराधी।
2: वास्तव में छे से अहाँ के पुत्र को पुत्रंग भक्ति, माता को माता न, हमरा सबसे गलती भ सकैया, मुदा माँ के हृदय इतने विशाल छन कि हमर सबके गलती को क्षमा क के हमरा सबके छे से आशीर्वाद दे छथि कि जीवनक सर्वांगीण विकास हुए। ओनाही देखियो छे से अपन सबके जे देश है एकर बुनियाद में अच्छे एकर आधार में प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता। हमर सबके छे से प्रकृति है कि हम सब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कोनो प्रकार के भेदभाव नहीं करे। क्या तो हमर सबके जे अहाँ के उपनिषद या वो कहैया कि अहं ब्रह्मस्मि त्वं शिवोऽसि, हम ब्रह्म के रूप छी, तो सृष्टि के कण कण में शिव के वास है आ प्रत्येक जीव में शिव के वास है। तो जखन सबके शिवत्व के भाव से देखे छी तो जतेक प्रकार के भेदभाव या वो तो स्वतः मिट जाइए। हाँ, तो प्रजातंत्र और धर्मपेक्षा के मजबूत करे में मीर भाई युवा लोकन के बड़ भूमिका है। क्या तो प्रजातंत्र का मतलब भले कि हम जतेक अपन विचार के प्रमुखता दे छी उतबे दूसरे विचार के प्रमुखता दिए। जो हम अहाँ के बात से सहमत नहीं छी मुदा अहाँ के अभिव्यक्ति के रक्षा के लिए हम सब प्रकार के त्याग कर सकी छी, अहाँ के बाजे के अधिकार के लिए।
1: ठीके कहलिए गोपी भाई, जे अपन प्रजातंत्र जे छै,
2: हम जे अपन गप कहब तो सबसे पहले अहाँ के बात सुनब, बात अहाँ के पूरा सुन ले तखन हम अपन गप कहब। इएह छै से धर्मनिरपेक्षता के मुख्य चीज अहाँ के ई सिद्धांत है।
1: देखियो ठीके कहलिए जे प्रजातंत्र जे छै सबक सबके लेल छै। जेना एकटा फूलक माला छै, जते भी बूढ़ छथि सब या स्त्री छथि पुरुष छथि सब माला में छै, लेकिन सुमेर जे होइ छै फूल के जे अथी होइ छै तऽ ओ कतेक बढ़िया नमहर फूल या गुलाब फूल या गेंदा फूल या कमल फूल सुमेर में दै छियै, तहिना जे प्रजातंत्र में जे छै युवा प्रजातंत्र रूपी माला के युवा जे छथिन ओ फूल के सुमेर छथिन, लटकन छथिन।
2: आ अपन सबके धर्मनिरपेक्षता एते कनकन में या कि अहाँ के जानि के आश्चर्य होयत कि दुनिया के तमाम धर्म के लोग एहिठाम रहै छै अपना देश में छै। इस्लाम के अहाँ के बहुत रास शाखा या आ एहिमे कतेक शाखा एहन या जे अहाँ के इस्लामियो देश में उपलब्ध नहीं या नहीं छै, लेकिन भारत में इस्लाम का

0: तमाम शाखाके लोक छै, ईसाई धर्मके जे कैथोलिक छै, प्रोटेस्टेंट छै, सब भारतमे रहै छै, एते तक कि दुनियासँ पारसी जे मूलतः छै से अहाँके ईरानके वासी छलथि, लेकिन ईरानसँ जखन पलायन कऽ कऽ भारत अयला तऽ भारतमे हुनका सुरक्षा भेटलनि, संरक्षण भेटलनि जे छै, आ एखन जे 1-1.5 लाख जे पारसी दुनियामे बचल छथि ओ भारतेमे छै, बुझलहुँ। तऽ ई बहुत गर्वके बात अछि कि अपन सबके जे समाज रूपी जे बगीचा अछि एहिमे तमाम तरहके छै से सुन्दर सुन्दर फूल एहिठुमा उपलब्ध यऽ,
1: अनेकतामे एकता,
0: अनेकतामे एकता, आ बगीचाके समाज रूपी बगीचाके सुन्दरताके बढ़ा रहल अछि। तऽ प्रजातंत्र आओर धर्मनिरपेक्षताके मजबूत करैमे युवा वर्गके पैघ भूमिका अछि। एहि विषय पर हमसब एकटा अहाँके परिचर्चा सुनब। प्रतिभागी छथि अभिनव कर्ण, राहुल कुमार यादव, राजा कुमार, इशरत परवीन, आ संचालक के छथि,
1: संचालक छथि गोपी चंद झा, आ प्रस्तुति छनि असद दाऊदकर।
0: तऽ सुनल जाय ई परिचर्चा।
1: सुनी
2: सबसे पैघ शक्ति किया तऽ युवामे अथा ऊर्जा होइत अछि, आ ओ जँ ओ अपन ऊर्जाके सकारात्मक उपयोग करता देशमे प्रजातंत्र आओर धर्मनिरपेक्षता मजबूत होयत। भारत एकटा लोकतांत्रिक आओर धर्मनिरपेक्ष देश अछि जाहिठाम सब धर्मक आओर विचारके सम्मान कयल जाइए, सबके बराबर के अधिकार देल गेल अछि। तऽ प्रजातंत्र आओर धर्मनिरपेक्षताके मजबूत करैमे युवा वर्गक बड़ महत्वपूर्ण भूमिका होइत अछि। तऽ युवा वर्ग एहिमे कोन प्रकारे भूमिका निभा सकैत छथि एहि पर हमरा लग किछु युवा छथि आ इनकासँ हम छै से अहाँके एहि विषय पर परिचर्चा करै छी। तऽ अहाँके नाम की अछि?
3: हमर नाम राजा कुमार भेल।
2: अच्छा अच्छा, अहाँ कोन क्लासमे पढ़ै छी?
3: हम स्नातक क्लियर पास आउट छी।
2: अच्छा अच्छा, तऽ देखियौ छै से राजा कुमार जी, ई देश अपन सबके लोकतांत्रिक देश अछि, प्रजातांत्रिक देश अछि, आ एहिठमा सब धर्मक लोक रहैए। जेना एकटा फुलवाड़ीमे नाना प्रकारके अलग अलग प्रकारके फूल कते शोभा दै छै, ओनाही अपन देश अछि जाहिठाम दुनियाके तमाम धर्मक लोक रहैए आ सबके बराबर के अधिकार आ सबके बराबर के सम्मान देल गेल अछि। हाँ, तो हम अहाँसँ पूछऽ चाहब कि देशके लोकतंत्रके मजबूत करैमे, धर्मनिरपेक्षताके मजबूत करैमे युवा वर्ग कोन प्रकारे अपन भूमिका निभा सकैए?
3: देशमे लोकतंत्र आओर धर्मनिरपेक्षताके मजबूत बनाबैके लेल युवा वर्ग बहुत तरीकासँ अपन भूमिका निभा सकैए। जाहिमे हम कहब मतदानो बहुत बड़का मुद्दा अछि, मतदानके माध्यमसँ युवा अपन लोकतन्त्रमे बहुत अच्छा तरीकासँ भूमिका निभा सकैए, जाहिमे ओ की भ्रष्टाचारके खिलाफ आओर गलत नीतिके खिलाफ आवाज उठा सकैए, भाईचाराके सम्बन्ध बनाकऽ समाजमे जागरूकता फैलाकऽ सोशल मीडियाके माध्यमसँ तमाम बहुत सारा चीज अछि जाहिके माध्यमसँ युवा लोकतन्त्रमे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैए, संविधानके मूल्यके रक्षा करि सकैए। संविधान अपना राष्ट्रके निर्माणमे महत्वपूर्ण भूमिका निभेने अछि, संविधानके मानिकऽ भी युवा वर्ग भूमिका निभा सकैए। ओहिके बाद समान सहिष्णुताके बढ़ावा दै कऽ भी युवा वर्ग भूमिका निभा सकैए। युवाके पास अपार ऊर्जा होइत अछि, जे ऊर्जाके युवा सकारात्मक आओर एक अच्छा दिशामे अगर ऊर्जाके अगर प्रवाह करता तखने ओ एक अच्छा सभ्य समाजके रचना करता, आ जखने हमर समाज अच्छा दिशामे प्रवाह होता, जहिना नदीके हवाके लहर जाहि दिशामे रहैए नदीके प्रवाह ओहि दिशामे भेजाइए। ताहिके माध्यमसँ हम कहब कि युवा वर्ग जे सकारात्मक ऊर्जाके साथ जे चीज करता आओर सकारात्मक चीज करता ओहिसँ संविधान आओर युवा वर्ग निरपेक्षताके मजबूती मिलता।
2: बहुत नीक गप कहलहुँ अहाँ राजा कुमार जी। अच्छा, हमरा लग एकटा आओर छै से युवा छथि, अहाँके नाम की यऽ?
4: राहुल कुमार यादव।
2: राहुल कुमार यादव जी, तऽ राहुल कुमार यादव जी, अहाँ जानै छियै कि देश अपन सबके प्रजातांत्रिक अछि आओर धर्मनिरपेक्ष देश अछि, एहिठाम सबके बराबर के अधिकार भेटल छै। तऽ हम अहाँसँ पूछऽ चाहब कि देशके लोकतन्त्रके मजबूत करैमे, प्रजातन्त्रके मजबूत करैमे युवा वर्गके केहन भूमिका निभा सकैए, आओर धर्मनिरपेक्षताके मजबूत करैमे युवा वर्गके की योगदान अछि?
4: भारत एक लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
2: हाँ हाँ,
4: जहाँ शासन जनता द्वारा चुना जाता है।
2: अच्छा अच्छा,
4: और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है।
2: हाँ हाँ,
4: देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा एक युवा है, इसलिए लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने में युवा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब भागीदारी, धर्म मतलब संवैधानिक मूल्य का संरक्षण, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, अगर डिजिटल जिम्मेदारी जैसे सोशल मीडिया के मतलब
2: सदुपयोग
4: करके उसका सामाजिक आंदोलन और जागरूकता को

0: युवा के क्षेत्र में मतलब शिक्षा समानता मानव अधिकार मतलब एक क्षेत्र में हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस प्रकार यदि युवा जागरूकता जिम्मेदारी और सहिष्णुता बढ़े तो वे प्रजातंत्र और धर्मनिष्ठा की रक्षा करते हुए देश के विकास और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मतलब
1: बहुत हाँ उचित गप कहल। आज सोशल मीडिया का सदुपयोग सोशल मीडिया जे छे ओय पर एकदम सही गप जा एहन गप देबा के चाहि बोलों कि ने जैसे समाज में जैसे तनाव नहीं पसरे समाज में शांति सौहार्द आ भाईचारा का भावना का विकास हुए
0: उसमें अच्छा अच्छा न्यूज मतलब दिए के चाहि मतलब।
1: हाँ हाँ आ जो कोनो अदला घटना घटबो करे गया तो अदला घटना का ओय में सूचना नहीं देबा के चाहि।
0: हाँ ओय में पैनिक यूज जैसे होता है पैनिक वाला घटना ओय में नहीं दिए के चाहि मतलब जो कोई आदमी घबरा जाए ओय से मतलब न्यूज नहीं फैलाबे के चाहि
1: नहीं फैलाबा के चाहि। हाँ अफवाह से बचबा के चाहि अच्छा अहाँ के नाम की है?
2: जी मेरा नाम इशरत परवीन है।
1: अच्छा अच्छा तो इशरत परवीन अहाँ कौन क्लास में पढ़ी छी?
2: जी मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ।
1: ग्रेजुएशन कर चुकल छी। अच्छा अच्छा तो अहाँ बताबू कि अपन सबका देश तो लोकतांत्रिक देश है धर्मनिरपेक्ष देश है तो देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करे में युवा वर्ग की भूमिका है?
2: जिसमें जनता की जो है ना महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और खास करके युवा वर्ग की तो महत्वपूर्ण योगदान होता ही है। सब प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में युवा राष्ट्र की रीढ़ है जो अपनी ऊर्जा नवाचार और धर्मनिरपेक्ष सोच के माध्यम से सामाजिक एकता सांप्रदायिक सद्भाव और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। वे राजनीतिक भागीदारी नागरिक जिम्मेदारियों का पालन और रूढ़िवादी विचारधाराओं को चुनौती देकर एक आधुनिक और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: सामाजिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। युवा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों वाहक है ये सांप्रदायिकता और धार्मिक और सहिष्णुता को चुनौती देते हैं जो एक विविधतापूर्ण समाज में एकता के लिए आवश्यक है। लोकतांत्रिक भागीदारी जो है इसमें जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी युवा मतदान राजनीतिक बहस और जनमत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते जिसे सरकार अधिक उत्तरदायी और प्रतिनिधि पूर्ण बनती है। नवाचार और आर्थिक विकास में भी युवा की भागीदारी होती है। युवा जो चाहे वो कर सकते हैं जनता को प्रत्येक 5 वर्ष पर चेंज भी कर सकते हैं या उसी सरकार को निरंतर चला भी सकते हैं। अगर 5 वर्ष के अंतराल पर अगर सरकार को चेंज ना किया जाए जैसे कि देश के निर्माण में सड़क हो गया नाला हो गया वगैरह वगैरह इन सब चीजों में जो ना दिक्कत होती है और सरकार सुनते नहीं इसलिए इनको हर 5 साल के अंतराल पर बदलना भी जो इसमें लोकतंत्र में जो है ना युवा की वो सक्रिय होना बहुत जरूरी होता है जैसे कि युवा मतदान राजनीतिक बहस जनमत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं जिसे सरकार अधिक उत्तरदायी और प्रतिनिधिपूर्ण बनती है। इसमें नवाचार और आर्थिक विकास में भी युवा की भूमिका होती है। युवा प्रतिभाएं तकनीकी क्रांति और नई आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रही है जो देश की प्रगति के लिए मूल्यवान संपत्ति है।
1: अच्छा अच्छा
2: जागरूकता और शिक्षा का प्रसार भी होता है युवा के द्वारा। युवा नागरिक सामाजिक मुद्दों जैसे मानवाधिकार कानून का पालन और धर्मनिरपेक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सशक्त नागरिक के रूप में भी भूमिका निभाते हैं युवा। वे ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अपना कर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में युवा न केवल भविष्य है बल्कि वर्तमान में भी सामाजिक और राजनीतिक संरचना को आकार देने वाली सबसे गतिशील शक्ति है।
1: ईश्वर जहाँ जी आप बहुत निक और उचित जानकारी दिलाओ कि युवा वर्ग छे से अहाँ का सकारात्मक चिंतन के संग सकारात्मक काज कर का, समाज में प्रेम और शांति का प्रसार कर सके और देश में लोकतंत्र के मजबूत कर सके। हमारा लोग एक और युवा छे अहाँ का नाम की है?
3: हमर नाम अभिनव कर्ण बे हम मिथिला के ही वासी छी।
1: अच्छा
3: धर्मनिरपेक्षता के बारे में युवा के की योगदान छे एकरा बारे में बाजे के मौका मिलल तो आई में हम कह सके छी कि लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता जे छे वो धर्मों के समान दृष्टि लऽ के चले छे आई में हर समाज के सेवा के महत्वपूर्ण योगदान छे क्योंकि आई विश्व स्तर पर भी देखल जाए तो नेपाल में भी जे गवर्नमेंट बदल गेले ओय में युवा के मुख्य योगदान छले तो युवा के आय पीछा नहीं रख सके छी युवा के हर कदम पर साथ में साथ लो के चला पड़ते और साथ ही साथ ये ध्यान रखा पड़ते कि युवा के जे परि अपन योगदान छे उस सही दिशा में जा रहल छै कि क्योंकि आय के समय देखल जाए विश्व स्तर पर युद्ध चल रहल छै तो आय में बहुत तरह के युवाओं के बड़गला का उनका माइंड वॉश कह के अलग अलग दिशा में दृष्टिविहीन कैल जा बहुत जरूरी है कि युवा के नजरिया जे छे उस सही दिशा में मार्गदर्शित हो।

0: ओहिमे सबसँ जरूरी छै कि मीडिया, डिजिटल मीडिया जकर आइके समयमे अत्ते ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण रोल भऽ गेल छै, जाहिमे कि हम कहि सकै छी कि पहिले तऽ कोइ सूचनाके फैलऽमे महीना दू महीना तक लागि जाइ छलै, लेकिन आइ सेकेंड भरिमे ई अवतरित भऽ जाइ छै, पूरा दुनिआमे फैल जाइ छै। लेकिन ई चीज पर भी कंट्रोल सरकार द्वारा हेबाक चाही। तऽ युवा जे सरकार बना कऽ भेज रहल छै ओहिमे सरकार के भी योगदान हेबाक चाही कि युवा के लेल भी सही मार्गदर्शन देल जाय,
1: सही ओकरा
0: अवसर भेटै, ठीक ना। जाहिमे कि अब बहुत सारा चीज होइ छै कि एकटा चीज हम देखलहुँ कि जेना ईरान युद्ध भऽ रहल छै ओहिमे 3D फिगर बना देल गेलै, ठीक ना, आ ओहि पर बमबारी कयल गेलै, ठीक। तऽ ओ भी एक तरीका से युवा के ही सोच छलै जाहिमे कि नुकसान के कम और चीजों के संभाल के कोशिश कयल गेलै, ठीक ना। तो यो बहुत बढ़िया चीज छै और हमर समाज में तो युवा हर जगह और आज के टाइम में आगू आबि रहल छै, जतय हमरा सब पैघ उम्र दराज आदमी या नेता या पत्र विपक्षी पर गलती कर रहल छै ओतय मीडिया के सहारा लऽ कऽ बहुत बढ़िया योगदान दऽ रहल छै, ठीक। अखन किछु बात छलै हम धर्म के लऽ कऽ तऽ नहि बाजब, लेकिन पाकिस्तान के बात कहि रहल छी, ओतय बहुत कुछ फैलायल गेलै, लेकिन मीडिया के जोड़ के कारण ही युवा एते ज्यादा अपन शब्दों के माध्यम सँ बात के रखलखिन, जागरूक छथिन कि ओ चीज के बदल देलखिन, कहो के मतलब सही चीज के मार्गदर्शित केलखिन और सही चीज भारत के जे बदनाम करे के प्रयास छले ओकरा रोक लगले और भारत सही दिशा में गेले। जना कि ईरान के अखन एक पनडुब्बी छले जे कि युद्ध अभ्यास के लेल आयल रहे, ओकरो बारे में मीडिया के बहुत बढ़िया रोल रहले, ठीक ना, जाहिमे कि हम कह सकै छी कि चीज के समझायल गेले मीडिया के माध्यम से, ठीक। बहुत सारे युवा भी छलखिन जे कि अपन मीडिया के माध्यम से अपन विचार राखि कऽ कहलखिन। और सबसे महत्वपूर्ण छै आइ के समय में इंटरनल दंगा, जे राष्ट्र इंटरनल दंगा के कंट्रोल केने छै वो राष्ट्र सबसे समृद्ध बनि रहल छै आ आगू निकल आबे, क्योंकि अखन देखल जाय दुनिया से किछु छिपल नहीं छै। तऽ एहिमे हम कहब कि सबसे बेसी छै हर समाज, हर धर्म, हर युवा पीढ़ी के समान रूप से धर्म के पीछा हटा कर आगू बढ़वाक चाही, जाहिमे कि इंटरनल दंगा के कावट भ सके और हम सब तब जाकर आगू बढ़वे। एहि दुआरे युवा के हमेशा ई चीज के फोकस लऽ कर चलवा कि सब राष्ट्र में समान धर्म के लऽ कर चल, तखन हमर जे भारत देश है वो विश्व गुरु के दर्जा प्राप्त कर सके, जेकि हमर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जे छथिन हुनकर चाहत भी छै कि हम विश्व गुरु बनू, ठीक। कियाकि युद्ध से केकरो समस्या समाधान नहीं भेलै, पीसफुली शब्दों के माध्यम से अगर युद्ध होइ छै तऽ ओ एक शिक्षित वर्ग के मतलब निशानी कह सकै छियै।
2: ठीक छै, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके, अहाँ सब युवा छी, अहीं सब माध्यम से देश के विकास हेतै, युवे देश के भविष्य होइत अछि, युवा लोकनि के चिंतन ठीक रहत, युवा लोकनि के काज देशक विकास में लागत, सहयोग के नए एक दोसर के साथ शांति और प्रेम के संग रहने, या धर्म के वास्तविक अर्थ है, अपनो धर्म के जते सम्मान करे छी ओतबे सम्मान दूसरो धर्म के करे छी, एक दोसर के छै से विकास में खुश होइ छी, तो ई भावना रख के देशक विकास भ सकैया। अहाँ सबके कोटि सब धन्यवाद कि अहाँ सब बहुत बहुत उचित जानकारी देलहुँ, धन्यवाद।
3: श्रोता लोग एखन परिचर्चा सुने छलहुँ प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्षता को मजबूत करने में युवा वर्ग की भूमिका। प्रतिभागी छले तँ अभिनव कर्ण, राहुल कुमार यादव, राजा कुमार, इशरत परवीन,
4: आ प्रस्तुतिकर्ता छलथि गोपीचंद झा, आ प्रस्तुति छन असद दौद,
3: आ संचालक
4: संचालक गोपीचंद झा छ।
3: तँ ई अहाँके बाय ध्वन्यांकन पर आधारित परिचर्चा छल। अही के संग गाम घर के समय सम्पन्न हेबाक अछि। हमसब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी में प्रवेश कऽ चुकल छी, तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन का हार्दिक स्वागत है। तो की केना की खेती बाड़ी भ रहल छै मिहिर भाई?
4: अखन तो वर्षा कतौ कतौ खूब भेल यै,
3: हां
4: कतौ कनी कमो भेल, लेकिन
3: खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में आबि गेल। हम
4: हां हां आ देखियो गोपी भाई,
3: धान के खेती के लेल, मकई के खेती के लेल बड़ लाभदायक है। हां हां
4: किसान भाई लोकन जे खूब मेहनत कए के खेती पथारी क के सब तरह फसल जना कि अन्न फल फूल सब तरह
3: देखियो, किसान किसान भाई लोकन जे छै ओ हमर सबक अन्नदाता छै। हां आ अपन सबके जे देश है कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित छै से अहाँ के देश है।

0: जीडीपी में सबसे बेसी योगदान कृषि को होइए देशक जीडीपी में, तो किसान भाई लोकन जे छै आजुक समय में जे वैज्ञानिक युग अछि, नव नव छै से अहाँके प्रयोग भ रहल यऽ, नवाचार भ रहल यऽ, हाँ तो खेतियों बाड़ी में छै से अहाँके वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी भ रहल यऽ, किया तऽ जमीन के आकार तऽ अहाँ बढ़ा नहीं सकै छी, जनसंख्या बढ़ रहल छै, बेसी अहाँके अन्न के छै से बेसी फल फूल के आवश्यकता छै, तब वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कऽ कऽ हमसब उत्पादन बढ़ा रहल छी, आ एहिमे किसान भाई लोकन छै जे ओ दिन राति मेहनत कऽ कऽ अपन योगदान दऽ रहल छै।
1: देखियौ गोपी भाई, आइ अपना सब किसान भाई सबसे खरीफ सूर्यमुखी खेती पर चर्चा करब।
0: हाँ हाँ,
1: देखियौ सूर्यमुखी के खेती जे छै से कम लागत,
0: हाँ
1: कम समय में बेसी लाभ दै वाला खेती
0: छै, ये कि
1: एहिमे जे छै से एकरा मुनाफा सेहो होइ छै, आ एकटा तेलहन सूर्यमुखी के खेती छै से एकटा तेलहन खेती कहल जाइ छै, सूर्यमुखी से खूब बढ़िया तेल निकलै छै।
0: आ खरीफ मौसम में सूर्यमुखी के खेती के लेल जून का अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक का जे समय है वो सबसे उपयुक्त है। बाव से पहले बिया का 3 ग्राम थीरम या कार्बन डांजिम प्रति किलो बिया के दर से उपचारित कर ली। खेत में जलक निकासी नीक जना हेबा के चाहिए, क्या तो जल जमाव जे है तो फसल के लिए ठीक नहीं है। आ सूर्यमुखी का सफल खेती के लिए मुख्य गप जे है कि उपयुक्त जलवायु और भूमि हेबा के चाहिए। सूर्यमुखी के खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लौक आ 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और पूर्ण रौद के आवश्यकता होती है। एकरा लेल नीक जल निकासी वाला उपजाऊ दोमट माटि सबसे नीक मानल जाइए, जकर पीएच मान 6.5 से 8 के बीच हुए। आयकर उन्नत किस्म है, नीक उपजा के लिए उन्नत और संकर किस्म जे या हाइब्रिड किस्म जना सूर्या मॉडर्न KBSH1 और MSFH17 का चुनाव करी। आ बिया का मात्रा और बौ का तरीका की छे?
1: बिया का मात्रा जे है,
0: हाँ हाँ, ओहिमे अहाँके प्रति हेक्टेयर लगभग 5 से 6 किलो बिया का आवश्यकता हो, आ पाती से पाती के बीच में 45 सेंटीमीटर और गाछ से गाछ के बीच में 30 सेंटीमीटर के दूरी निश्चित रूप से रखवा के चाहिए। आ बिया के लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का गहीर कर दी आ तखन बिया का बौ कर दी।
1: देखियो गोपी भाई, सूर्यमुखी के उन्नत किस्म के खेती कला से किसान भाई के 90 से 110 दिन में मात्र एतबी समय में नीक मुनाफा भ जाए छे, आ लागतो
0: समयो कम लागे छे, लागतो कम लागे छे, आ मुनाफो बेसी होइए। तो आजुक जे जुगिया मीर भाई ओ तो अर्थ प्रधान युग अछि, तो अइ में तो छै से अहाँ के कोनो काज हम सब जे करै छी ओ अर्थक प्राप्ति के लेल करै छी, कैचा के प्राप्ति के लेल करै छी, तो बेसी से बेसी छै से कैचा कमाए, अइ के लेल सूर्यमुखी के खेती जे छै ओ अहाँ के आवश्यक अछि। अच्छा, खाद आ उर्वरक में खेत के तैयारी के समय 10 से 15 टन सरल गोबरक खाद देबाक चाहिए। रासायनिक खाद के रूप में लगभग 40 से 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर का उपयोग करी। आ माटि, लेकिन ई सब जे करब अहाँक तो माटिक जांच के आधार पर मात्रा तय करी, अपन खेत के माटिक जांच निश्चित रूप से करा ली।
1: देखियो गोपी भाई, सूर्यमुखी के खेती खेत में खरपतवार नहीं हुए,
0: एहि
1: के लेल सूर्यमुखी के बिया जो रोपे छे को तुरंत बाद भेटी मेथिन का छिड़काव अवश्य कर देवाक चाहिए, जैसे सूर्यमुखी खेत में खरपात
0: नहीं हुए। हाँ हाँ,
1: आ सूर्यमुखी के गाछ जखन 1-8 फीट के भ जाए तखन ओकरा पटौनी आवश्यकता अनुसार से कर लेवाक चाहिए।
0: एना खरीफ मौसम में सामान्यतः कम पटौनी के आवश्यकता होती है, मुदा वर्षा नहीं भेला पर आवश्यकता अनुसार पटौनी करी, आ खेत में नमी के जमा नहीं होबय दी, जल भराव से फसल खराब हो सकैए। आ बाव के 15 से 30 दिन के बाद कमौनी कऽ कऽ खरपात के निकाल दी। आ कीट और रोग नियंत्रण में दीमक भेल या फफूंद से बचाव के लिए बिया का उपचारित निश्चित रूप से कर ली।
1: बिया को उपचारित बड़ जरूरी है।
0: आ माहू या अन्य कीट होइया ओकर हमला पर कृषि विशेषज्ञ के सलाह से उचित कीटनाशक का छिड़काव करी। आ जखन गाछ का निचला पत्ता सूखा लागे आ फूलक रंग छै से अहाँ के भूरा भ जाए तखन बुझ लिया कि फसल पैक के तैयार भ गेल। फूल के काट के रौद में सुखा ली और थ्रेसर और डंडा से पीट के दाना के निकाल दी। तो एना एहि प्रकारे जे खेती करब तो निश्चित रूप से अहाँ के नीक उपजा हैत, आ नीक उपजा के बेच कर

ठीक खैचा कमायब, मन एकदम खनगर रहत, आ जब मन खनगर रहत तो गीतनाथ सुनय के मन निश्चित रूप से करत, किया ना हम सब एकटा गीतनाथ सुनी।

0: हाँ, एखन पूनम कुमारी के स्वर में ई गीत सुने छलो हाँ। आ देखियो मिहिर भाई, खेती बाड़ी के जे काज करै छी एमे अहाँ के मौसम पूर्वानुमान बड़ काज आबे।
1: बड़ काज हाँ, एहिसे की होइ छन कि किसान भाई लोकन के
0: मौसम का अनुमान भ रहै
1: छन, तो
0: ओहि के हिसाब से अपना खेती बाड़ी के ले तो अहाँ के जे मौसम पूर्वानुमान अछि 15 से 19 जुलाई के बीच में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिस से जारी जे 15 जुलाई से 19 जुलाई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार बेगूसराय के छोड़ के उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में 15 से 17 जुलाई के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के संभावना है। संगे संग कतौ कतौ अहाँ के हवा तेज चले के संभावना है। अ अवधि में अधिकांश क्षेत्र में हलुक से मध्यम वर्षा भ सकैए। ओहिठाम शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण जिला में 15 से 16 जुलाई के लग

0: आसपास मध्यमसँ भारी वर्षा हेबाक सम्भावना अछि। एहि समयमे बेसीतर समय आकाशमे हल्कसँ मध्यम मेघ देख सकै छी आ वर्षा भेलाक स्थितिमे आकाशमे घनगर मेघ लागि सकैए। आ पूर्वानुमान अवधिके दौरान अधिकांश जिलामे अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक सम्भावना अछि, जखनकि बेगूसराय, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण जिलामे ई 34-36 डिग्री सेल्सियसके बीच रहि सकैए। न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक सम्भावना अछि।
1: गोपी भाई, भोरके सापेक्ष आर्द्रताके गप करब, भोरमे 80-85% रहैके सम्भावना यऽ आ दुपहरियामे सापेक्ष आर्द्रता से जे छै से सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी आ पश्चिम चंपारणके जिलामे 40-45% आ अन्य जिलामे 50-60% रहैके से सम्भावना अछि। एहिके दौरान हवाके मुख्यतः दक्षिण पश्चिम दिशाके जे पूर्वा हवा आ पश्चिमी पछवा हवा चलैके से सम्भावना अछि।
0: अच्छा।
1: आ 10-15 किलोमीटर प्रति घंटाके गतिसँ ई हवा चलत आ आकाशमे सामान्यतः मेघ छाल छायल रहत।
0: अच्छा अच्छा। आ देखियौ, वर्षाके सम्भावनाके देखैत जे किसान भाइके लग पटौनीके पर्याप्त सुविधा उपलब्ध अछि ओ 21-25 दिनके धानके बिचराके रोपाइ कऽ लेत आ रोपैसँ पहिने खेतके अन्तिम तैयारीके समय प्रति हेक्टेयर 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस आ 30 किलोग्राम पोटास आ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेटके उपयोग करैत।
1: आ देखियौ गोपी भाई, एहि वर्ष मानसूनके प्रारम्भिक चरणमे वर्षाके कमीके कारण जतय उचास जमीन यऽ, जतय पानि नहि भेल यऽ, ओहिठाम धानक खेती सम्भव नहि हुए, तऽ ओतय किसान जे छै से आब तिलक खेतीके वैकल्पिक फसलके रूपमे ओ तिल कऽ सकै छै।
0: अच्छा अच्छा।
1: आ तिलके बुआइके लिए जुताइ कयलाके बाद मध्यमे ओकर बुआइके से पहिने बीजके थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजके दरसँ ओकरा उपचारित तिलके बीआके कऽ कऽ कतारसँ कतार 30 सेंटीमीटर आ पौधासँ पौधा 10-15 सेंटीमीटरके दूरीमे ओकरा बाग कए सकै छै।
0: अच्छा अच्छा।
1: आ बुआइसँ 20-30 दिन पूर्व प्रति हेक्टेयर 60 क्विंटल सरल गोबर आ खाद कम्पोस्ट खेतमे मिलाकऽ तखन बुआइ करैत आ प्रति हेक्टेयर 40 ग्राम नाइट्रोजन,
0: 40 किलोग्राम
1: आ 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटासके प्रयोग सेहो कऽ लेबाक चाही। आ फास्फोरस आ पोटासके पूरा मात्रा तथा नाइट्रोजनके नीक मात्राके जे छै से अन्तिम जुताइके समयमे ओहिमे खेतमे दऽ देबाक चाही आ तकर बाद नाइट्रोजन जे छै से शेष भाग जे बचल रहैए ओहिमे बुआइके समय कऽ लेबाक चाही। लगभग 30 दिनके बाद टॉप ड्रेसिंगके रूपमे अधिक उत्पाद हेतु कृष्णा, कालिका, काके सफेद आ प्रगति MT-75 किस्मके बीआ जे छै से तिलके नीक मानल गेलैए।
0: आ उड़ीदक बाग एखन कऽ सकै छी, T9, Pant-U-19, Pant-U-31 उत्तरा आ नवीन किस्मक चयन करी आ प्रति हेक्टेयर 20-25 किलोग्राम बीआके प्रयोग करी। बाउसँ कयलासँ 2-3 दिन पहिने बीआके कार्बन डाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीआके दरसँ उपचारित कऽ दी। एकर बाद क्लोरपेरिफॉस 204 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीआ आ बाउसँ ठीक पहिने राइजोबियम कल्चरसँ उपचारित करी आ बाउसँ पहिने 20 प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम सल्फरके उपयोग करी। आ किसान उचास आर नीक जल निकासी वाला जमीनमे राहरिके बाउ हेतु खेतक तैयारी ओ आरम्भ कऽ देत। हाँ। आ राहरिके जे उन्नत किस्म अछि बहार, पूसा 9, राजेन्द्र अरहर 1, राजेन्द्र अरहर 2 किस्मके चयन करी आ अन्तिम जोताइके समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करी।
1: अच्छा।
0: 18-20 किलोग्राम बीआ प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करी आ 2-24 घंटा पहिने बीआ के कार्बन डाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीआ के दर से उपचारित कर दी। एकर बाद क्लोरपेरिफॉस 204 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीआ तथा राइजोबियम कल्चर से बीआ

0: कऽ उपचारित करी, खेतमे उचित जल निकासीके व्यवस्था राखी आ जाहिठाम सम्भव हुए उठल क्यारी पर बौग करी।
1: आ देखियौ किसान भाई लोकनि जे नवका बाग जे छै गाछके ओकर समय जे छै से आबि रहल यऽ, ओकर बाग ओकर रोपाईके लिए समय जे छै से कऽ लेबाक चाही।
0: हँ, तऽ ई सब जे गपके ध्यानमे राखब तऽ नीक उपजा हैत, नीक खेती बाड़ी हैत आ समय लिए छै जे तखन अहाँके नीक कैचा कमायब, नीक पैसा कमायब, घरोमे छै से खाइ पीबै लेल पर्याप्त मात्रामे छै से अन्न फल फूल सब किछु रहत, दलहन तेलहन रहत, एकदम मन गदगद रहत आ एहि अवस्थामे गीतनाद सुनैमे सेहो मन खूब लागत, तऽ किया नहि हमसब एकटा गीत सुनी झूमर
1: तऽ सुनल जाएगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हाँ, एखन हम सब अहाँ के गीत सुने छलो झूमर शारदा सिन्हा के,
2: शारदा सिन्हा के
1: बड़ निक झूमर छल। आ देखियो छै से बरसात के मौसम में गाय आ महिष के बीमारी से बचावे के लेल हुनक जे बथान होया ओहिमे जल जमाव नहीं होब दी, हुनका संतुलित सूखल और हरियर चारा दी, साफ जल पियाबी और मच्छर से बचावे के लेल नीम के पाती अति के पात के धुआं करी। तो ई सब जे गप के ध्यान में रखब तो निश्चित रूप से अहाँके माल जाल सुरक्षित रह, आ अही के संगे अहाँके खेती गृहस्थी के समय संपन्न भ रहल यऽ। तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई से हम सब आज्ञा ली।
2: नमस्कार गोपी भाई।
1: नमस्कार मिहिर भाई।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: अर्श की चपेट में आने से गोपालगंज के एक युवक की मौत, दुबई में मर्चेंट शिप पर तैनात था युवक। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आवेदन प्राप्ति केंद्र और सहयोग पथ का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने उन आवेदकों की समस्याएं सुनी जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मिले समाधान से संतुष्ट नहीं थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 100 आवेदकों के मामलों का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 90% समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में किया जाएगा। शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज नामांकन पत्रों की जांच में 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी का पर्चा भी रद्द हो गया है। उपचुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए थे। प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर शामिल हैं। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत का दावा किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार को किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है।
2: मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा।
0: इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जन समर्थन है।
3: बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। पूरा जन समर्थन, पूरा आशीर्वाद यहाँ के हमारे नीरज कुमार जी को मिल रहा है। और सिर्फ अब मतदान का तिथि जब आ जाएगा और रिजल्ट होगा तो आप देखिएगा किसी की जमानत यहाँ बचने वाली नहीं है।
0: पटना जिला प्रशासन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को पिछले चुनावों में कम मतदान वाले बूथों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और मतदान के लिए जागरूक करेंगे। गौरतलब है 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 41 रहा था, जो राज्य के औसत से काफी कम था। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सुनी लोगों की शिकायतें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष।

0: की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसके तहत लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। न्यायालय ने राजद अध्यक्ष की लंबित आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय को 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कमजोर मॉनसून को देखते हुए विकसित भारत जी राम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती को लेकर छूट दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि कम बारिश वाले जिलों में लीन पीरियड यानी काम के दिनों में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में 19 जुलाई तक विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत काम कराया जा सकेगा।
1: जैसे ही वर्षापात कम होता है हम अपने श्रमिकों को काम उसमें देना शुरू करते हैं कि ये काम मांग आधारित है, तो जो श्रमिक काम मांगेंगे उस अवधि में काम विकसित भारत जी राम जी योजना में उनको हर हालत में मिलेगा। अगर आप काम मांगा और 15 दिन तक आपको काम नहीं मिला तो उसमें बेरोजगारी भत्ता भी देने का, रोजगार भत्ता भी देने का प्रावधान। और कोई काम कर रहा है और उसको अगर मजदूरी नहीं मिली तो 0.05% के हिसाब से जो मजदूरी समय पर भुगतान नहीं करेंगे उनके वेतन से रिकवरी करके उन श्रमिकों को भी भुगतान किया जाएगा।
0: संशोधन के बाद शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा। वहीं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और गया में यह पीरियड 9 अगस्त तक माना जाएगा। गृह विभाग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को शीघ्र विकास प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा गया। बैठक में औरंगाबाद के जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा भी शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज जिले के एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान थावे बाजार निवासी रोहन कुमार के रूप में हुई है, जो दुबई में एक मर्चेंट शिप कंपनी में कार्यरत थे। मृतक के भाई आलोक कुमार ने बताया कि जहाज पर हुए मिसाइल हमले में उनकी मौत हुई है।
5: 4 बजे भोर में हमको फोन आया कंपनी के तरफ से, आपके भाई इंजर्ड हो गए हैं, आपने मिसाइल गिरा है। तो वहाँ से 1 घंटे बाद फिर फोन आया कि आपके भाई डेथ कर गए। उनका सिम गया हुआ था सऊदी अरब, सर नॉक कंपनी में काम करते थे।
0: पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें 3 ASI और गृह रक्षा वाहिनी का 1 जवान शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय जांच के दौरान

0: यह बात सामने आई कि बंटी यादव के अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के पास मौजूद थे, बावजूद इसके इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच में आज मृतक के छोटे भाई चंदन तिवारी और एक अन्य गवाह ने आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले मृतक के माता पिता समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल अररिया और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि कटिहार मधुबनी पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 15 जुलाई राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार पूर्णिया मधुबनी एवं सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक बागमती कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। बागमती नदी रून्नी सैदपुर में लाल निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर, कमला बलान झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में 113 सेंटीमीटर मीटर ऊपर बह रही है। वहीं महानंदा परमान और अधवारा समूह की नदियों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर हमारी सहरसा संवाददाता ने बताया कि जिले के पनमा इठहरी प्रखंड अंतर्गत सहुरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से राम पोखर और भेड़ा गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी की अदालत ने पिछले साल दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से तीन अपराधियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। शिवहर स्थित यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार को पुलिस ने 1,96,000 रूपये धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। खगड़िया पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी सतीश यादव को गोगरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कादोगांव रेलवे ब्रिज के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने 326 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सुनी लोगों की शिकायतें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। जन शक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज के एक युवक की मौत। दुबई में मर्चेंट शिप पर तैनात था युवक। और मौसम विभाग ने अररिया किशनगंज कटिहार मधुबनी पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
2: बक्सर जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में 7,032 अभ्यर्थी शामिल हुए। इधर खरीफ फसलों की सिंचाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने सोन नहर की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को किसानों तक समय पर सिंचाई का पानी पहुंचाने, नहरों से अतिक्रमण हटाने तथा रिसाव करने वाले स्थानों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं बाढ़ और सुखाड़ की तैयारी की समीक्षा करते हुए राहत एवं बचाव व्यवस्था हर समय तैयार रखने को कहा गया। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 1,44,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मई माह की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 4,129 बीपीएल और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बीच जिले के सभी प्रखंडों में सहयोग से जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर आधार अद्यतन की समीक्षा बैठक में 57,000 से अधिक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट लंबित रहने पर विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में 56 शिकायतों की सुनवाई की, जबकि जिला खनिज फाउंडेशन की बैठक में कई विकास योजनाओं की मंजूरी दी गई। उधर उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने डुमराव प्रखंड के 7 निश्चित की योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। नहर निर्माण में लापरवाही मिलने पर समेत अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं शिक्षा विभाग की टीम ने राजपुर प्रखंड के 2 संस्कृत विद्यालयों और 1 मदरसे का निरीक्षण किया गया। इस बीच श्रम विभाग ने डुमराव और राजपुर में अभियान चलाकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। वहीं आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई में ट्रेन में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौसा चेक पोस्ट उत्पाद विभाग ने लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के शराब से लदा ट्रक वाहन जब्त किया। उधर पांडे पट्टी रेलवे गुमटी पर अंतर्राष्ट्रीय रेलवे क्रॉसिंग जागरूकता दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी समारोह में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि उनके जीवन और विचारों से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 18 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि TRE-4 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उधर कुल्हड़िया APF में किसानों को मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने इसे कम लागत में अधिक आय का बेहतर विकल्प बताया। राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धरना दिया। वहीं जिला कांग्रेस ने इटाही रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रतिनिधि मंडल ने बक्सर को पर्यटक मंडल घोषित करने और विश्वामित्र कॉरिडोर के निर्माण कराने की मांग को लेकर पटना में धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य से मुलाकात की।
1: और अब सुनिए भोजपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
3: भोजपुर में चर्चित भरत तिवारी प्रकरण की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। न्यायिक जांच आयोग ने मामले की सुनवाई तेज कर दी है। आयोग के समक्ष मृतक भरत तिवारी के माता पिता के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं आरा सिविल कोर्ट में भी उनकी मां, भाई और भाभी के बयान दर्ज कराए गए। इधर परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई है। गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, जबकि संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के साथ कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।
4: गुवाही भइल है तीनों आदमी के, चंदन, सुमन देवी। चालू हो जाए।

0: बिहार पुलिस पर भरोसा लेके।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उदवंत नगर प्रखंड के कार्य साथ में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वाणासुर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिए थे। वहीं जिले को टीबी मुक्त बनाने के अभियान के तहत 6,85,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने महादलित टोलों और हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर प्रतिदिन बड़े पैमाने पर टीबी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और बोनाफाइड जर्नलिस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में संचालित यूजी इंटर्नशिप कार्यक्रम के पहले चरण में 1700 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इंटर्नशिप के दौरान सामाजिक सर्वेक्षण, मीडिया अध्ययन और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्य कराया जाएगा। उधर कोइलोर प्रखंड निवासी शहीद वायु अग्निवीर दानिश आलम के माता पिता को राज्य सरकार की ओर से 21 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने परिजनों को सहायता राशि का चेक सौंपा।
2: अभी आप सुन रहे थे बक्सर और भोजपुर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर, जबकि भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं वारिस फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर एवं मनमोहन सिंह की आवाज में। संगीत निर्देशन उत्तम सिंह का है।

0: अभी आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर एवं मनमोहन सिंह की आवाज में, संगीत निर्देशन उत्तम सिंह का था। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए फिल्म ए फ्लैट का यह गीत, कैलाश खेर एवं सुजान डी मेलो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, फिल्म केसरी का यह गीत बी प्राक की आवाज में, सद रचना मनोज मुनतसीर का है और संगीत निर्देशन आरको का है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक संग हम नीतू। कार्यक्रम सिंगरहार में अपने सबक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सिंगरहारक माध्यमे हमरा लोकन जखन जुड़ैत छी तो अपन साहित्य संस्कृति आ परंपरा सबक बहुत रास गप करैत छी। आ जखन हम सब अपन वैभवशाली परंपरा सबक बहुत रास गप जेकरा बिसर गेल छी ओकरा मोन पाड़ैत छी। मैथिली गीत नादक जे परंपरा रहल अछि, ई परंपरा अधो काल सँ चलैत आबि रहल अछि आ एकरा सदिखन के लेल एकरा निमाहित अपना सब एहि संस्कृति के बचेबाक लेल बहुत रास काज मे लागल रहैत छी। अपना सब ओहिठाम जतेक पाबनि तिहार होइत अछि आ कि कोनो मांगलिक अवसर, ओहि सब मे गीत नादक प्रधानता तऽ रहिते अछि ने। प्रत्येक अवसर पर गीत बनल अछि आ सब गीतक अपन अपन विशेषता अछि। आ एक गोट विशिष्ट गप इहो अछि, विशेष गप इहो अछि जे कोनो विशेष अवसर हुए हमरा लोकनि भगवती गीत नहि बिसरै छी आ भगवती गीतेसँ हुनकर वन्दनेसँ आरम्भ करैत छी। एहि बिना कहि सकै छी कोनो काज पूर्णे नहि मानल जाइत अछि। तऽ आब अपन कार्यक्रममे आजुक अङ्कक आरम्भ एक गोट भगवती गीतसँ करै छी, कल्याणी सिन्हाके स्वरमे ई भगवती गीत।

हाँ तो श्रोतागण, अखन ई भगवती गीत सुन रहल छलौं कल्याणी सिन्हा के स्वर में। तो जखन भगवती गीत अपना सब सुने छी आ माँ भगवती के जे मन भावे छन वह काज अपना सब करे छी। आ अरहुलक फूलक रंग जे छे कतेको तरहक भेटैत अछि, मुदा लाल रंग बेसी प्रिय होइ छन, किएक तऽ लाल जे अछि से ऊर्जा आ उत्साहक प्रतीक अछि। यह उत्साह अपना सबके जीवन में बनल रहे आ ऊर्जाक संग अपन कर्म पर कर्म के पथ पर लागल रही तखने सफल भ सकै छी आ किनको लेल नीक गप सोच सकै छी। तऽ श्रोतागण, आजुक जे हमर सबक मैथिली साहित्य अछि ओकरा वर्तमान स्वरूप देवा मे कतेको साहित्य साधक लोकनिक योगदान रहलनि अछि आ हमरा लोकनि सदैत हुनका सबक देखौल बाट पर चलबाक प्रयास करैत रहैत छी। मैथिली साहित्यक एहने एक कोट साहित्य साधक केर आई जयंती छनि। श्रोतागण, हम गप कऽ रहल छी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, एकांकीकार, असमालोचक आ बाल साहित्य लेखक रूप मे प्रतिष्ठित मैथिली लेखक धीरेन्द्र केर। पूरा नाम छलनि धीरेश्वर झा। हिनक जन्म अजुके दिन माने 14 जुलाई 1934 के मधुबनी जिलाक लोहना गांव में भेल छलन। कर्मभूमि रहलन नेपालक जनकपुर। ई मैथिलीक अतिरिक्त नेपाली में सेहो लिखैत छलथि। हिनक प्रकाशित पोथी सभक गप करी तऽ भोरुकबा, कादो आ कोयला, ठुमेक बहु कमला, कुहेस आ किरण, पझाइत घूरक आग, शतरूपा आ मनु, नव मंदिर, हेंगर में टांगल कोट, करुणा भरल ई गीत हमर, काव्य शास्त्रक रूप रेखा आ त्रिपुंड आदि छन। भोरुकबा मैथिलीक प्रथम आंचलिक उपन्यास अछि। मिथिलाक माटि पानिक सौरभ भोरुकबा में भेटैत अछि। भोरुकबा वस्तुतः बदलैत सामाजिक वातावरण में प्रातः कालक सूचना दैत अछि। हिनक दोसर उपन्यास छनि कादो आ कमला, जकर धारावाहिक प्रकाशन 1968 में मिथिला मिहिर में भेल छल। त्रिपुंड महाकाव्य अछि, जाहि मे सतीक बलिदान, गौरीक परिणय, कार्तिके आ गणेशक जन्म दुनूक विद्वान बनब आ शिव द्वारा दुनूकें संसारक कल्याणार्थ समर्पित कऽ देबाक वृतांत अछि। सतीक बलिदानक बाद शिव एकसर भऽ जाइत छथि आ हुनका सन महातपस्वीकें सेहो नारीक आवश्यकता अनुभव होइत छनि। नारी सृष्टिक अनिवार्य अंग होइत छथि, जकरा बिन पुरुष पूर्ण नहि भऽ सकैत छथि। नारी थिक पर्याय ममत्वक सहनशीलता, भारी जते बतहपन पुरुष करे सह सदा सोना।

नारी सर्वसहा धरती थिक नारी आर पुरुष आकाश जे वर्णन को अपन मोस सँ उपजित एच चास नारी पुरुषक कागत थिक जै पर लिखेच ओ कविता नारी शीतल चंद्र ज्योत्सना रह उना नर सविता ओ श्रम शक्तिक महिमाक गान सेहो कलेनेच ओ यात्री जीक धन्य है श्रमशील मानव विश्व भर में व्याप्त आन देवी देवता दिस नहीं नबे एच मात किर भावना के कवि धीरेन्द्र इत्ते दूर धर गेला एच जत शिव स्विंग श्रमशील मानव बनजेबाक उद्घोष करे छथि कुन समस्या जखन स्वस्थ एच हमर दुनू हाथ स्वस्थ नेत्र सब अंग स्वस्थ एच स्वस्थ जखन एच माथ ब्रह्म रूप ई हाथ दुहु एच ई सिरजे संघार यह सजावे जगती तल के यह करे संघार।

0: उद्घोष करै छथि। कोन समस्या जखन स्वस्थ अछि हमर दुनू हाथ, स्वस्थ नेत्र सब अंग स्वस्थ अछि, स्वस्थ जखन अछि माथ। ब्रह्म रूप ई हाथ दुहु अछि, ई सिरजे संहार, यह सजावे जगती तलकें, यह करे संहार। हम तो कृषक आग तक मात्रे राखी खाली आशा, श्रमिक बनब हम जानी खाली हम बाह्यक बस भाषा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आधुनिक मैथिली साहित्यक संघर्षशील व्यक्तित्व धीरेन्द्र केर निधन 9 जनवरी 2004 ईस्वी के भेलन। धीरेश्वर झा धीरेन्द्र स्वयं के मूल रूप से कथाकार माने छला। तो आप क्या ने आप कार्यक्रम में अपनों सब सुनी एक गोट कथा। तो सुने छी एक गोट कथा कुंजी आ कथाकार छथि रूपम कुमारी।
1: कथाक शीर्षक अछि कुंजी। नवका डेरा में आय पहिल दिन छल, बड़ मुश्किल से भेटल छल ई एक कोठरी वाला डेरा। ओहू में एसगर लड़की के रहबाक लेल छोट शहर में डेरा भेटब कनी मुश्किल होइत छैक। ओना चारू दिस से एही डेराक परिसर में 10 टा कोठरी छलैक, बीच में आंगन, एकटा चापाकल आ चबूतरा, एक दिस 4 टा शौचालय स्नान घर, चारू सामूहिक छल। दसो कोठरी में रहनिहार सबके जे खाली भेट जायन तय हुनकर। ओहि दिन आबे में साँझ पड़ गेल छले, तमान सब सेट करैत करैत रात भ गेले, ते ककरो से परिचय पात नहीं भेल। माँ ओहि दिन हमरे लग रह गेल रहे। दुनू माय धी बैग से भोजन बहार कर भोजन कैलौ आ सुत रहलौ। भोर भेने पह फटते एकटा स्वर सुनाई पड़ल, हमर नींद टूट गेल। हम उंघैले रही तथापि ओछाउन पर बैस कर कान पाइत सुना लगलौ। एकटा बूढ़ गीत गाबि रहल छला, हम कोठरी से बाहर भ ओसार पर ठाड़ भ गेलौ। गीत ततेक नीक छल जे हमर डेग गीतक स्वर दिस स्वतः बढ़ल चलि गेल। जाहि कोठरी से गीतक स्वर आबि रहल छल ओकर केवाड़ में सटि कर ठाड़ भ गेलौ। केवाड़ कनी खुजि गेलै, पल्ला मात्र भिरकाओल छलै। हम पल्लाक फाँक से हुलकी देलौ तो देखलौ जे प्राय एकटा 70-72 बरखक बूढ़ आँखि मुन्ने गीत टेर रहल छला। गोर दप दप दुब्बर पातर नमगर देह, दूध के फेन सन उज्जर उज्जर दाढ़ी आ केस, गंजी आ लुंगी पहिर कर बैसल गीत गाबैत ओ बूढ़ा हमरा आकर्षित कैलन। हम चुपचाप केवाड़क फाँक से हुनका देखैत छलियन ते ओ गन गेला। ओ आँखि मुन्ने बजला, के छ भीतर आबि जा। हम कनी संकोच करैत केवाड़क पल्ला खोललौं आ भीतर प्रवेश करैत हुनका पैर छूब सोझा में ठाड़ भ गेलौं। ओ ओछाउन पर बैसबाक संकेत कैलन आ पूछलन, कोंटा वाला कोठरी तोही किराया पर लेलही है? हाँ, साँझ में एक रत्ती तोरा देखने छलियो ते चीन गेलियो। हम ओछाउन पर बैसैत कोठरीक चारू कात तकलौं, देखलौं जे एकटा कोन में गैसक एक चूल्हिया आ 2-4 टा बर्तन बासन राखल छल। ओछाउन पर चारू कात पोथी आ पत्र पत्रिका सब पसरल छल। हमरा बुझा गेल जे ई कोनो विद्वान लोग छथि। ओ पूछलन जे कोन क्लास में पढ़ैत छही? BA, विषय अंग्रेजी ऑनर्स। एहिठाम असगरे रहबी? हाँ, हम बाजलौ। अखन माँ आयल अछि, काल्हि चलि जायत, तकर बाद असगरे रहबै। ठीक, कोनो खगता हेतौ तो बाजिहे, संकोच नहीं करिहे। हम बाजलौ, बेस। बाबा, अहाँ जे अखन गीत गबैत छलिये से हमरा नीक लागल, ई गीत के लिखने छलखिन? बूढ़ा बजला, जाहि काज में पाई नहीं लागैत छै से सब हम करैत रहै छिये। जेना जेना चित्र बनेनाय, कविता लिखनाय, गीत सुननाय या सुनेनाय आदि। बाजि ओ हँसा लगला, हुनकर ई सहजता हमरा नीक लागल। हम अपन प्रश्न एक बेर फेर दोहरेलौं, मुदा अखन जे गीत गबैत छलिये से ककर लिखल छै? ओ फेर हँसैत बाजला, हम अपने लिखल गीत गबैत रहै छिये। हम मने मन सोचऽ लागलौं, ओ ई कवि छथि। काल्हि भेने माँ चलि गेलै आ हम अपन पढ़ाई में लागि गेलहुँ।

कॉलेज आ ट्यूशन के बाद एक बेर बाबा के हालचाल अवश्य पूछ लियन। हुनका कोठरी में जखने कखनो जाए कि ओ बाजत, आ बैस अजुका कविता लिखल सुना दै छियो। सुनबही, हम नहीं नहीं कह पाबैत छलिए। आ बाबा प्रतिदिन कम से कम 5-7 टा कविता हमरा सुना दैत छला, मने प्रतिदिन एतेक लिख लेत छला। एही तरहे बाबा हमरा अपन पकिया श्रोता मान लेने छला। दोसर बात ई जे हमरो बाबा के कविता सुनबा के हिस्सक भ गेल छले। एक दिन हम कहलियन, बाबा अहाँ असगरे रहै छी तऽ अपने खेनाई किएक बनबै छियै? 4 टा सोहारी हम ही बेसी बना लेब, अहाँ के भोजन हम लेने आयब। बाबा साफ नकार गेला, बजला तो एतो पढ़े लेल आयल छही कि भानस भात करे लेल? तो अपन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान राख, कहबे तो तोरो हिस्सा 4 टा सोहारी हम ही पका लेल करब। बाबा फेर अपन चिर परिचित अंदाज में हंसैत बजला, हम खेनाई बनेनाए जानैत छी। बाबा हमर ध्यान एही तरहे राखा लगला जे हमरा लागल बाबा हमर गार्जियन बन गेला। बाबा के काजे की छलन? एकटा प्राइवेट स्कूल में 2-3 घंटी पढ़ेनाए आ तकरे दरमाहा से खर्च बर्च चलैत छल। असगरे रहनाए, खेनाए बनेनाए, खेनाए गीत गजल लिखनाए आ मगन रहनाए, बस एतबे काज छलन बाबा के, एकदम बतास जका मुख। एक दिन भोरे भोर बाबा हमर केवाड़ खटखटौलन। हम केवाड़ खोलैत पुछलियन, की बात बाबा आय भोरे भोर? हमरा लागल रात किछ बेसी कविता लिख लेने हेता, ते सुनबै के लेल भोरे भोरे जुम गेला। मुदा ओ कहलन, आय से तोहर परीक्षा छौ ने, तोहर खेनाए हम बना दैत छियो, खा के जइहे। हम पुछलियन, अहाँ के हमर परीक्षा के तिथि मून छल बाबा? अन्हारे में उठल होए वहाँ एतेक भोरे भोरे एतेक कष्ट करबा के कौन काज छले? ओ बजला, हमरा दुनिया भर में एकैटा श्रोता अछि जे तो छै, जखन ओ भड़क जात तो मुश्किल होत। कहि बाबा हंसा लगला, हुनका संग हमहू हंसलौ। तखन बुझायल जे बाबा के निश्चल प्रेमक हम ऋणी भ गेल छी। बाबा के कविता सुनेबाक हिस्सक सँ हमर किछ संगी डरेबो करे। एक दिन भले ई जे हमर संगी सुमन समय पर हमर नोट्सक कॉपी नहीं घुरेलक, तो ओकरा फोन के लिए तखन ओ कहल के जे कॉपी ले के गेल रहियो, मुदा तोरा डेरा में जो बूढ़ा नहीं छथुन तिनकर कोठरी के केवाड़ खुजल देखलिए तो घूर एलौ, के सुनते हुनकर कवित? तखन हमरा मोन पड़ल जे हाँ, एक दिन हम सुमन के अपना डेरा पर आनने रहिए, ओही दिन ओकरा बाबा से परिचय करेलिए। बाबा ओकरा 20-22 टा कविता सुना देने रहथिन। कविता सुनेलाक बाद हमरा दिस तकैत बजला, आब नहीं सुनेबे एकरा कविता, मुँह सुखा गेले नुनू के। आ हंसैत ओ अपन डायरी मोड़ लेने छला। ते आय बाबा के केवाड़ खुजल देख घूर गेल सुमन। एहने मनमतंग लोग छला बाबा। बाबा के कविता सुनैत सुनैत हमरो किछ पद जोड़वा के हिस्सक लाग गेल। बहुत रास पत्र पत्रिका हुनका लोग सहजे उपलब्ध भ जाय। ओ बड़ोबर कहे कॉलेजक विषय से फड़ाको पढ़ल कर समय निकाल के पत्र पत्रिका सब सेहो पढ़वाक चाही। हम प्रतिदिन बाबा से भेंट करी और नव नव पत्रिका पढ़ी। कहियो काल साहित्यक गप पसर जाए हमरा दुनू गोटे के बीच, तर्क वितर्क सेहो होमा लागे, वैचारिक बहस शुरू भ जाए। कहियो काल कोनो कोनो बात पर हम बाबा के पछाड़ दियन, हरदा बजा दियन। तखन बाबा प्रसन्न भ जायत आ आशीष दैत, कहत तो साहित्य के क्षेत्र में खूब आगू बढ़बे। मुदा बाबा के ज्ञानक था हमरा नहीं छल, बड़ मुश्किल छले हुनकर ज्ञानक अटकर लगेनाए। बहस में बाबा हमरा सा कहियो काल हार जायत। ओ अही द्वार हारत कि हुनका हमर जीतब पसीन छलन। बाबा के एतेक दिन के सानिध्य में हमरा एकटा बात बुझा गेल जे बाबी हिनकर संग बहुत पहिने छोड़ देने छलखिन। हम बाबा से पूछलियन, बाबा एकटा बात पूछी? हाँ पूछ न, अहाँ के धिया पुता सब कता छथि? बाबा के ठोर पर एकटा उदास मुस्की पसर गेलन। गहीर सांस लैत बजला, एकटा बेटी छे। कता छथि? अखन त हमरे आगू में बैसल छे। हम बूझ गेलौं जे ओ अपन परिवारक चर्च नहीं करा चाहे छथि, संगे अपना प्रति हुनकर भावनाक सोझा नतमस्तक सेहो भ गेलौं। एक दिन हमरा बाबा अपन कोठरी में बजौलन, बाजला एकटा चीज तोरा देव चाहैत छियो। कि? ओ हमरा हाथ में एकटा कुंजी थमा देलन आ कहलन, ओही पेटी के खोलही। हम पेटी के खोल के देखलौं।

0: तो चक विदोर लग गेल भर पेटी सैतल डायरी। हम बाजलो एहि पेटी में तो खाली डायरी अछि। डायरी छै मुदा खाली नहीं, कविता गीत गजल सा भरल। यह हमर संपूर्ण जीवन के कमाई अछि। बाजैत बाबा भावुक भ गेला। हमहू तखन बाजि उठलौं, चिंता नहीं करू बाबा, ई सबटा डायरी सुरक्षित रहत। डायरी के संदेश हम सब लोग धरि पहुंचायब। हम ई कुंजी सहेज के राख लेत छी। पीजी के पढ़ाई के लेल हम पटना आबि गेलौं। ओही ठाम कोठरी में एकटा कांटी ठोकलौं आ ताही में कुंजी टांग देलौं। ओ कुंजी हमरा बाबाक आभास दियाबैत छल। एक दिन फोन आयल जे बाबा नहीं रहला। हम कांटी सा कुंजी उतार कर करेज में साइट नेने रही। ई सूचना हमरा एक दिन बाद भेटल छल। कचोट भेल जे बाबाक अंतिम दर्शनो नहीं भ सकल। तैयो हम अपन कोठरी से बहरा गेलौं। हम ओही डेरा पर गेलौं जतौ हम रहैत रही आ बाबा से पहिल बेर भेंट भेल छल। ओ पेटी आ पेटी में सैतल डायरी पर मोन टांगल छल। बाबाक कोठरी में गेलौं, कोठरी खाली भम्म पड़ैत। पड़ोसिया से पूछलिए तब बाजल, कहाँ किछो भेल छलैन बूढ़ा के, सब दिन भिनसरे भिनसर जहिना गीत गाबैत छलखिन तहिना गेलखिन। तकर बाद कोठरी से बड़ी काल धरि आवाज नहीं अयलै। तो देखलिए जे बूढ़ा अंगड़ायल छथिन। मकान मालिक के खबर दिलिए, ता धरि तो उड़ गेल रहथिन बूढ़ा। हम हिम्मत करैत पूछलिए, आ ओही कोठरी के सर समान? समाने की रहे, कनी बर्तन बासन आ पुरान कुर्ता पैजामा चद्दर। एकटा चौकी रहे से मकान मालिक एक रहे, ओ उठा के लौ गेले। हाँ एकटा पेटी छले मुदा ओकर कुंजी कतौ नहीं भेटले। बूढ़ा के बेटा पोता बड़ ताकल के, जखन नहीं भेटले तो ताला तोड़ल के, कतौ किछ नहीं, पाइयो कौड़ी आर नहीं छले, खाली लिखलाहा डायरी सब सैतल। हम पूछलिए तो ओ सब की भेले? ओ सब राखिए के की हेते, पड़ोसिया बाजल। बूढ़ा के कपड़ा लत्ता आ पेटी वाला डायरी आर गंडक में भसा देल गेले आ बर्तन बासन आर घर ले गेले बेटा सब। हम काठ भ गेल रही। बड़ी काल बाद लागल जना कियो देह डोलेलक अछि। साकांश भेलौं पर्स सँ कुंजी बाहर कऽ मुट्ठी में दाबने नहु नहु डेग पाछा कऽ लेलौं।
1: हाँ तो श्रोतागण, अखन अपना सब सुनने छलौं ई कथा कुंजी। कथाकार छली रूपम कुमारी। तो जखन अपना सब कोनो खिस्सा वा कथा सुने छी तो वास्तव में ओ कथा लागत रहते अछि जो ओ दृश्य उपस्थित कऽ देने आ एकदम से हृदय पर ओकर प्रभाव पड़ गेल हुए। तो कतेक अपना सब पहिने खिस्सा पिहानी सुनैत रही, ओहि खिस्सा में अपना सब एकदम से डूबि जाइ छलहुँ आ कतेक रास प्रेरणा भेटैत छल। तऽ आब कार्यक्रमक जे परम्परा रहल अछि शब्द विमर्श करबाक, तऽ बढ़ै छी आ एक गोट आग्रह जे कोनो प्रचलित शब्द जँ बुझल हुए तऽ ओकरा पत्रक माध्यमे शब्द विमर्शमे अवश्य पठाबी। तऽ हमर सभक कार्यक्रमक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड अछि 8460004 आ ईमेल के पता सेहो कहि दै छी akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ आब बढ़ै छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अबैत अछि अरबद्धल। एह की कहू, बरखा हेबाक जे समय रहैत अछि ने, हम जहाँ घरसँ निकलै छी कि अरबद्धल छै जे बरखा हुइए लगैए, गेनाइ बुझू एकदमसँ मुश्किल भऽ जाइत अछि। एकटा शब्द अछि अवचंक। तेहन की कहू, ध्यान रहै दोसर दिस, तेहन के औंठामे चोट लागल जे मोन एकदमसँ अवचंक भऽ गेल। एकटा शब्द अछि अरियातव। कनी दूर तक अरियाइत दै छनि, हुनका पहुँचा दै छनि, जे एक दोसरके जखन अरियातव होइ छै, जे एक दोसरके लग सङ्गे गेनाइ भऽ गेल अरियातव। एकटा शब्द अबैत अछि अकच्छ। ओह की कहू, तेहन ई जे नेना छथि ने, तखनसँ हिनका परतारैमे लागल छियनि, मुदा ई तेहनके ई अकच्छ केने रहै छथि जे हमर बाते नहि मानै छथि। तऽ एहि तरहके शब्द जे अछि जे अपन सबके दैनिक जीवनमे कतेको रास एहन शब्द अछि जे भुतिया गेलै, हरा गेल अछि, ओहि शब्दके अपना सब एहि शब्द विमर्शमे सम्मिलित करै छी। अहाँ सबसे इहो कहब जे कार्यक्रम हमर सबके केहन लगैत अछि, ओहि कार्यक्रमके लेल जे पता देल गेल अछि ओहि पताके

अवश्य अपने सब सूचित करी कार्यक्रम केहन लगैत अछि। तऽ जखन अपना सब शब्द विमर्श करै छी तऽ ओहि शब्द विमर्शमे एहन एहन शब्द अबैत अछि जे बिसरि गेल छी, ओकरा मोन पाड़ै छी। जेना एकटा शब्द अबैत अछि भम परब, एह की कहू, जहियासँ ओ गेलखिन हँ घरमे एकदम पूरा शून्य मसान लगै छनि, घरमे एकदमसँ भम पड़ै छनि, केओ नहि कोइ कतौ नहि। पहिने कतेक नीक लगै छलै, पूरा घर जे छै से एकदम रमनगर लगै छलै। एकटा होइ छै शब्द अबैत अछि उछटल, ओह की कहू, गर्मी मास जखन अबैत अछि तऽ मोन एकदमसँ उछटल लगैत रहैत अछि। आ बरखा अबैए तऽ कनि गर्मीके सँ तऽ त्राण जरूर भेटैए, मुदा चारू दिस देखबै एकदमसँ कपड़ासभ जे छै से भिजले रहै छै, समसल लगैत रहै छै। तऽ ऋतु जे छै से कोनो ऋतु अबैत अछि तऽ ओ ऋतुमे कनि देर नीक लगैत अछि, मुदा तकर बाद मोन एकदमसँ अकच्छ हुअ लगैत अछि ओहि मासमे। फेर अपनासभ ओहि ऋतुके अनुसारे अपना आपके अपना सबके स्वयंके ढालि लैत छी। आ जखन स्वास्थ्यपर विशेष रूपसँ कोनो मास हुए तऽ जखन स्वास्थ्यपर ध्यान दै छियै तखने ओहि ऋतुके अपनासभ आनन्द लऽ पबै छी। आ ऋतु अनुसारे जखन अपनासभ काज करैत रहै छी तऽ की होइ छै, ओहिमे आहारके सेहो विशेष महत्व अछि। जँ से जँ नहि करब तऽ अहाँ दुखित पड़ि जायब, आ दुखित जखने पड़ै छी तऽ कोनो टा काजमे मोन नहि लगैत अछि। मुदा हमर कार्यक्रम अहाँसभ श्रोतागण जँ सुनै छी तऽ अवश्य प्रयास रहैत अछि जे कार्यक्रममे अहाँसभके मोन लागय। तऽ इएह कहबाक अछि जे एहि कार्यक्रमसँ आब हमरा विदा लेबाक बेर भऽ रहल अछि। इएह आग्रह जे कार्यक्रम सुनैत रही आ अपन सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी। तऽ अगला भेंट धरिक लेल हमरा यानी नीतूके चलबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।

अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार

0: नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
0: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ

0: उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद लघु तथा मध्यम उद्यम नवाचार श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
3: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान

0: लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional ट्रस्ट।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.

0: पकड़ने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है। ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरतेहाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरतेहाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी। बेंच ने रियासत को हुक्म दिया है कि वो मजकूरा आराजी से एक खुली जगह फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है जब तक के मामले का हतमी फैसला नहीं हो जाता। बेंच ने दोनों फरीकों से तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया। भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उनवान है लचक, जिद्दत, तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत ये इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामिये को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामिये का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियाती रोजगार पर तआवुन को तकवीयत देना है। इसके अलावा एलामिये का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मस्नूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और प्रोग्रामों को नुमाया किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इस महीने की 24 तारीख तक घर घर जाएंगे। इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को कर्नाटक में BJP का एक अहम सुतून करार दिया जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जनाब मोदी ने सोगवार कुनबे और उनके हामियों से भी दिली ताज़ियत का इजहार किया। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आज़ाद तिजारती माहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी। कॉमर्स और तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफ़ैन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसीतर इत्तेफाक हुआ है। भारतीय महकमा मौसमी

IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा है कि कल तक बिहार में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि आइंदा दो रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सरायत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने मुल्क भर में 17 मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से 2 गोदामों में आग लग गई और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस की सालाना बेस्टिल डे तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं, ने कहा कि यूक्रेन और उसके बैन अल-अक़वामी साझेदार अगले एक साल के अंदर मुश्तका तौर पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा

0: शिक्षा दीक्षा दरभंगा में ही हुई। बचपन से ही मेरी रुचि अभिनय में थी। अभिनय की बारीकियों को समझने के लिए जीवन में संघर्ष में करता रहा और संघर्ष का ही परिणाम है कि मैं अभिनय की बारीकियों को छू पाया।
1: बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया है कि आप बचपन से ही अभिनय से अपना जुड़ाव महसूस करते थे, क्या वो अनुभव आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आपका झुकाव अभिनय की तरफ हुआ?
0: मैं जब सातवीं में था तो उसमें एक नाटक था, सिद्धार्थ का गृह त्याग।
1: जी,
0: सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का नाम है, बचपन हाँ। का नाम है। तो उसमें मुझे सिद्धार्थ की भूमिका निभाने का मौका मिला।
1: अरे वाह।
0: और इतनी कम उम्र में मैं उसको महसूस किया, उसकी बारीकियों को समझा, जिसकी वजह से मुझे उसी वक्त बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया।
1: अरे वाह।
0: और मुझे याद है कि मेरे साथ और करीब के जितने लोग थे, नाटक खत्म होने के बाद सबों ने तारीफ की, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया होगा। तो उसके बाद और भी मेरी प्रवृत्ति बढ़ती गई।
1: उस प्रोत्साहन ने आप में उत्साह भर दिया।
0: उसके बाद मैंने कृष्ण सुदामा और भी बहुत सारा समाज को बदल डालो, मैंने बहुत तरह का नाटक था। और मेरे गांव में विगत कम से कम 70 साल से ही नाटक चल रहा था।
1: हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आज के युवा अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना तो चाहते हैं मगर वो अभिनय की बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ जो हमारे श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे कि किस तरह वो इस क्षेत्र में प्रवेश करें, क्योंकि अब नाटक तो सुलभ है नहीं, नाटक आयोजन भी बहुत कम होता है। अब
0: देखिए क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है।
1: जी हाँ।
0: उसी तरह आप अगर देखेंगे अभिनय के क्षेत्र में तो आज टेक्निकल पार्ट जो है अभिनय का, उसको जानना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है।
0: और टेक्निकल पार्ट क्या है, सबसे पहले तो इंसान में रुचि होना चाहिए।
1: रुचि होना चाहिए।
0: अगर रुचि होगी तो इंसान कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है।
1: जी हाँ।
0: तो अगर आप में असीम इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो आपकी इच्छा आपको रास्ता दिखा देगी। और अगर आपको रास्ता नहीं दिखता है तो आप किसी न किसी से संपर्क करते हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो जिनको रुचि है, जिनमें ये पागलपन है, जिसमें ये जोश खरोश है कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में कामयाब होना है, तो उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग आज के डेट में बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जैसे हम मिथिला से हैं या बिहार के लोग जो बातें करते हैं, जो भाषा है उनकी, कई बार सौ को शौ बोल देते हैं, शौ बोल देते हैं, रौ को रौ बोल देते हैं, फिल्मों में धारावाहिकों में नहीं चलता है। आप कहेंगे कि मुझे शाम को जाना है तो गलत हो जाएगा। शाम को जाना है,
1: शाम को जाना है।
0: सड़क पर गुजर रहा था वो गलत हो जाएगा,
1: गलत हो जाएगा।
0: सड़क पर गुजर रहा था, ये भी तो टेक्निकल बात हो गई ना।
1: जी हाँ, एकदम।
0: अगर आपको पता नहीं होगा कि मेरी जबान साफ है या नहीं, अगर मेरी जबान ही साफ नहीं है तो आपको जो डायलॉग मिलेगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे। आप गलत बोलोगे तो डायरेक्टर आपको हटा देगा, भगा देगा। तो कहने का मतलब है कि आपके जबान तो साफ होने चाहिए। इसके लिए आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई टीचर से सहायता लेनी पड़ेगी, पहली बात ये। दूसरी बात, एक्सप्रेशन पे, जैसे मैं अभी बहुत नॉर्मल हूँ लेकिन जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो मैं डिफरेंट आदमी लगता हूँ।
1: जी,
0: मैं अंजनी कुमार नहीं लगता हूँ।
1: सही।
0: हजारों में जितना काम किया है,
1: जी हाँ,
0: उसमें आज तक इतिहास में ऐसा है ही नहीं कि मैं वो व्यक्ति लगा हूँ अंजनी कुमार।
1: असल अभिनेता तो वही होते हैं।
0: तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ।
1: जी,
0: आपका जो चेहरा है, मेकअप के बाद, ड्रेस के बाद, आप एक कैरेक्टर बन जाते हो।
1: जी हाँ।
0: और जब आप कैरेक्टर बन गए तो उसके जो डायलॉग हैं, उसकी जो आत्मा है, वो सब आपके अंदर, आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जब आप कुछ वो बात करते हो, जब वो अभिनय करते हो, जब उसके कैरेक्टर में आप घुस के कुछ उसके साथ बातचीत, रिएक्ट करते हो, एक्ट और रिएक्ट होता है, उस वक्त जो उसका एक्सप्रेशन है, उच्चारण के बाद एक्सप्रेशन, अगर आपके पास एक्सप्रेशन नहीं होगा तो आप किसी काम के एक्टर नहीं हो।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: आप अगर रोने की बात करते हैं, हंसने की बात करते हैं, सब में एक्सप्रेशन है। गुस्सा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, अफसोस की बात करते हैं, जितनी भी बहादुरी की बात करते हैं, सब

0: आकाशवाणी दरभंगा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आशुतोष कुमार झा की तरफ से स्वागत और नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर क्षेत्रीय सिनेमा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की फिल्मों, चर्चित वेब सीरीज और टीवी की दुनिया तक अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनय की उनकी यात्रा संघर्ष, समर्पण और सफलता की एक प्रेरक कहानी है। कैमरे के सामने निभाए गए उनके हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। आज हम जानेंगे उनकी इन शानदार यात्रा के अनसुने किस्से, अभिनय के पीछे की मेहनत, फिल्मों और वेब सीरीज के अनुभव और आने वाले समय की उनकी नई योजनाओं के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं आज हमारे विशेष अतिथि का और शुरू करते हैं एक खास यादगार बातचीत। नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें।
1: नमस्कार, मेरा नाम अंजनी कुमार है और मैं दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के बलौर गांव का रहने वाला हूं। मेरी

0: में एक्सप्रेशन है,
1: एक्सप्रेशन ही दर्शकों को जोड़ के रखता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका संवाद भी बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी।
0: उच्चारण हो गया, दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज जो कैरेक्टर का है, और वो कैरेक्टर को सही तरीके से निभाना, सामने वाला जो कैरेक्टर है उसके साथ जुड़ के संवाद करना,
1: संवाद करना,
0: आंखों में आंखें डाल के भाव प्रकट करना, इंटायरली दूसरा आदमी बन जाना, तभी अभिनय की बारीकियों को इंसान सीख पाएगा। और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आज के डेट में जरूरत है, लेकिन जो पारखी है, जो गुणी है, जो समझदार है, ये संघर्ष के बाद मिलता है,
1: संघर्ष के बाद मिलता है, सही कहा।
0: बिना संघर्ष का तो कुछ भी संभव नहीं है
1: जी। और जैसा कि आपने कहा कि अभिनय, तो आपने किन किन फिल्मों में और वेब सीरीज में काम किया है?
0: देखिए, मेरा पहला काम जो शुरू हुआ वो भोजपुरी फिल्म से शुरू हुआ 1987 में, और उस वक्त मैं पटना में था। उस फिल्म में सुजीत कुमार, राकेश पांडे, गौरी खुराना, मीरा माधुरी और जय तिलक जैसे स्टार थे भोजपुरी फिल्म में। तो मैं उन दिनों बहुत कम उम्र थी उस वक्त मेरी, मुझे एक इंस्पेक्टर का रोल मिला था। छपरा में शूटिंग हुई, एक महीने रहा मैं, और जय तिलक जी से मैं बहुत करीब था, उनके एक रिश्तेदार यहाँ दरभंगा में थे। उसके बाद मुझे ये काम करने का मौका मिला उनके साथ। पहला जो मैंने काम किया, सैया ले जा तू गवनमा में, जिसमें सुजीत कुमार, लेकिन वो फिल्म पूरी बन गई, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें जब मैंने काम किया तो मेरी एनर्जी जो है और रिचार्ज होती गई, मुझमें और आत्मबल बढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस और बढ़ा, क्योंकि मेरे जो शॉट्स हुए उसमें तालियां बजी। इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मैं एक शॉट परफॉर्म कर रहा हूं और उसमें भयंकर तालियां बजी, और जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे श्री गोपाल, इवन जो सारे अभिनेता थे, उन्होंने ये कहा कि आज के स्टार तुम हो।
1: अरे वाह,
0: आज जो आपने अभिनय किया है वो कमाल। तो मेरे अंदर जो है आत्मविश्वास और भी जगता गया। उसके बाद जो है मैला अंचल, एक अजब गजब मॉर्निंग सीरियल आता था दूरदर्शन पे,
1: जी हाँ,
0: उसमें मुझे काम मिला। उसमें कुछ NSDN भी थे और संयोग से वो डायलॉग नहीं बोल पाया था, तो मुझे ही बुलाया गया और मैं एक बार में ही बोल दिया एक्सप्रेशन के साथ। वहाँ भी मुझे वाहवाही मिली। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अशोक तलवार, जिन्होंने सिग्मा बनाया था, तो वो मुझे मैला अंचल के टीम के पास ले गए, डायरेक्टर से उन्होंने मिलवाया, अशोक तलवार जिन्होंने स्पेस सिटी बनाई थी। जाते ही जो हैदराबाद निजाम की नाती वगैरह हैं वो भी डायरेक्टर थी उसमें, तो उन्होंने कहा अरे अरे ये तो कालीचरण आ गया, कालीचरण का लुक था मेरा, इस तरह का उनको लगा। लेकिन बात हुई कि नहीं, कालीचरण तो और कोई प्रोड्यूसर ही कर रहा है। तो दूसरा रोल जो ट्राइबल लीडर का था, मुझे बुलाया गया, मुझे डायलॉग दिया गया, ऊपर वाले की ऐसी कृपा थी और मेरे अंदर में आत्मबल कूट कूट के भरा ही था। मेरा ऑडिशन पास हो गया। मुझे बताया गया कि आपको पूर्णिया चलना है, एक या दो महीने के लिए शूटिंग है आप। वहां मैं गया, ट्राइबल लीडर का रोल किया, और आई गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड। और इतनी ही नहीं, दूरदर्शन ने उस एपिसोड को देख के, मेरे एपिसोड को देख के, जो हल चलाता हूँ, हमारी लड़ाई होती है, तो उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ ट्राइबल लीडर का, वो बहुत सराहनीय हो गया।
1: अरे वाह,
0: मैं पूरी कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री कह दें या मीडिया में छा गया था।
1: इसके अलावा और किन किन फिल्मों और सीरियलों में आपने काम किया?
0: हाँ, उसके बाद जैसे डिटेक्टिव करण था किरण कुमार के साथ, उनके अपोजिट में मैं था। जैसे फूल और पत्थर था रोनित रॉय के साथ,
1: हाँ,
0: वो भी मैंने किया। जैसे आपको वापसी था, डैडी समझा करो माँ, ये सब बहुत सारे सीरियल्स थे उस जमाने के, उसमें सारे में मैंने काम किया। फिर मैं गंगा जल फिल्म में अजय देवगन जी के साथ काम किया, चतुर्भुज का मेरा कैरेक्टर था। उसके बाद बलचन्मा, एक धारावाहिक पटना से बनी थी, तो मुझे इनवाइट किया, PN सिंह जी थे, तो उसमें मैंने काम किया, लीडिंग रोल था, बलचन्मा को ट्रेन में ही करता हूँ।
1: उन दिनों की पृष्ठभूमि को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी कहानी में दिखलाया है,
0: दिखाया है बहुत सही। तो उन्होंने जो बलचन्मा लिखी, उसमें रामनंदन मिश्र जी के यहाँ वो जाते थे, और वो रामनंदन मिश्र का कैरेक्टर समझ लीजिए मैंने किया था।
1: अरे वाह,
0: और उसमें भी काफी मुझे तारीफ मिली। तो ये बलचन्मा हो गया। उसके बाद मेरी अभी एक फिल्म आई, द ताज स्टोरी
1: में भी आपने काम किया।
0: जी, परेश रावल के मुख पे कालिख मैं ही पोतता हूँ, और वो काफी चर्चित रहा। उससे कुछ दिन पहले राजा सलहेश में भी मैंने काम किया, गेस्ट रोल में किया। और फिर एक मेरी अभी फिल्म प्रेम तपस्या भोजपुरी है, और रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म में

0: गंगा तोहरे देश में जलोटा जी की फिल्म थी, उसमें मैंने किया निरहुआ के अगेंस्ट में विलेन था। सैया भय थानेदार में मेन विलेन था। वायरस में मैं तांत्रिक बना था, वो भी पॉजिटिव बहुत बड़ा रोल था। बहुत सारी फिल्में हैं, और ये है पंछी फिल्म में मनोज वाजपेयी का मैं जीजाज बना। सूर्या में मिलिंद सुमन का दोस्त का रोल में मैं था। तो इस तरह से पार्थो घोष की फिल्म।
1: इस क्षेत्र में अगर आज के युवा आते हैं तो किन संघर्षों का उनको सामना करना पड़ेगा? आपने भी संघर्षों को देखा होगा, इतनी आसानी से तो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते हैं, खासकर अभिनय के क्षेत्र में कोई भी।
0: देखिए, कहते हैं आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ए कैरेक्टर इज बिल्ट।
1: सही बात है,
0: 100 वर्षों के संघर्ष के बाद एक चरित्र का निर्माण होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस,
1: जी हाँ, बहुत बड़े
0: गांधी,
1: जी हाँ।
0: तो जो भी एक चर्चा की बात होती है, कैरेक्टर होता है
1: जी।
0: तो ऐसे तो बड़ी आसानी से कामयाबी नहीं मिल सकती है, लेकिन जिसके जहन में, जिसके दिल में एक लक्ष्य होगा, मुझे करना है, I have to achieve, तो वो अचीव कर सकता है,
1: अचीव कर ही सकता है।
0: नथिंग इज इम्पॉसिबल, ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। मैं इस पे एक शायरी करना चाहूंगा
1: जी।
0: मेरे सफर की क्या पूछते हो ऐ दोस्त
1: जी।
0: मेरे सफर की क्या पूछते हो ऐ दोस्त, जलते हुए परों से उड़ा हूं मैं तो। पंछी का पर चल गया है लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा।
1: सही कहा आपने।
0: जिसमें ये आत्मविश्वास हो कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन हम चलना नहीं छोड़ेंगे, संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे
1: जी हाँ,
0: तो उसी को कामयाबी मिल सकती है, उसी को इस इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। और दिन और रात जो एक करेगा उसे ही मंजिल मिलेगी, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सपने देखते रहिए।
1: तो ये थी हमारे विशेष अतिथि के साथ हुई दिलचस्प और प्रेरणादायक बातचीत का पहला भाग। समय की सीमा के कारण आज हम इस बातचीत का केवल आधा हिस्सा ही आपके लिए प्रस्तुत कर पाए हैं। इस साक्षात्कार का शेष भाग आप हमारे अगले प्रसारण में सुन सकेंगे, जहाँ बातचीत और भी रोचक मोड़ लेगी तथा उनके जीवन, अभिनय और आने वाली परियोजनाओं से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को भी जानने का अवसर मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट वार्ता का विषय था डिजिटल युग में अभिनय की कला, अवसर, चुनौतियां और भविष्य। भेंट वार्ताकार थे अंजनी कुमार, भेंटकर्ता थे आशुतोष कुमार झा, प्रस्तुति असद दाऊद की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए इंग्लिश टॉक। विषय है द ग्लोरी दैट वाज मिथिला। वार्ताकार हैं, टॉकर्स हैं बिंदु चौहान।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चालबाज का यह गीत, अमित कुमार एवं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चालबाज का यह गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म दो मतवाले का यह गीत सुनिए अलका याग्निक एवं सुदेश भोसले की आवाज में। बोल है समीर के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दो मतवाले फिल्म का एक और गीत सुनिए, मोहम्मद अजीज एवं अल्पना की आवाज में। बोल संतोष आनंद के हैं और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया फिल्म का यह गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। इसी गीत के साथ एक फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप एक फनकार कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया, और आज के फनकार थे महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब सुनिए कोई मिल गया फिल्म का यह गीत उदित नारायण एवं अलका याग्निक की आवाज।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए फिल्म आस का पंछी का यह गीत लता मंगेशकर एवं मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म परोसन का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, सदरचना राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत निर्देशन आर डी

किसी कारणवश हम आपको परोसन फिल्म का गीत नहीं सुनवा पाए। श्रोताओं, अब सुनिए शर्मीली फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता

0: वार्ता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special